सुप्रभात। मीडियावेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 जून सन 2026। श्रोताओं, हमारे इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 5:48 और 35 सेकंड हो रहे हैं। हम हाजिर हैं आपकी सेवा में पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव, कभी सुख तो कभी दुख। हमारे जीवन के दो प्रबल शत्रु हैं, क्रोध और चिंता। ये दोनों भाई बहन की तरह हमारे साथ रहते हैं। जिनके जीवन में क्रोध और चिंता नहीं है, उनका दिन तो चैन से बीतता ही है, उनकी रातें भी मंगलमय होती हैं। क्रोध से जहां व्यक्ति अपने आपे में नहीं रहता, उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर होता है और आपसी रिश्तों में खटास आती है। वहीं चिंता मानसिक संतुलन को आघात पहुंचाती है, स्वभाव को चिड़चिड़ाती है, व्यापार और व्यवसाय को प्रभावित करती है। मानसिक शांति और करियर दोनों ही क्षतिग्रस्त होते हैं। क्रोध से तो दूसरों पर बुरा असर अधिक होता है, लेकिन चिंता से स्वयं पर ही घातक प्रभाव पड़ता है। क्रोध से शांति का नाश होता है तो चिंता से सौंदर्य का। क्रोध से विवेक का विनाश होता है तो चिंता से मनोबल का। इस प्रकार ये दोनों ही हमारे दिलो दिमाग के दुश्मन हैं, रोगों के जनक हैं। वैसे सभी को कभी न कभी क्रोध आता है और चिंता भी सताती है। ये दोनों रोग हैं जो न केवल धार्मिक को बल्कि नास्तिक को भी परेशान करते हैं। धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चिंता और क्रोध मनुष्य मात्र को होते ही हैं। चिंता का पहला दुष्प्रभाव व्यक्ति के मन और सेहत पर होता है। मनुष्य का दिमाग उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन चिंताओं के बढ़ने के साथ तनाव बढ़ता है और मन अस्थिर होता चला जाता है। जिसके जीवन में तनाव ने अपना स्थान बना लिया है, उसका मन उस मिट्टी की तरह हो जाता है जो तालाब का पानी सूख जाने पर मिट्टी का होता है। चिंता से व्यक्ति की स्मरण शक्ति प्रभावित होती है। चिंता से स्वास्थ्य के साथ साथ व्यापार, व्यवसाय, परिवार, समाज में आपसी संबंधों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने क्रोध और चिंता पर विजय प्राप्त करे। जो क्रोध और चिंता से लड़ना नहीं जानते, जिन्हें इस पर विजय प्राप्त करने की कला नहीं आती, वे अकाल मृत्यु के शिकार बनते हैं। हम सभी को अपने मन को देखना चाहिए कि वहां किस प्रकार की उधेड़ बुन चल रही है। चिंता घुन है और चिंतन धुन। जैसे घुन गेहूं को भीतर ही भीतर खोखला कर देती है, वैसे ही चिंता जिसे लग जाती है, वो उसे चिता के रास्ते ले जाती है। चिंता और चिता में मात्र एक बिंदी का फर्क है, लेकिन चिता तो एक बार जलती है और चिंता जीवन भर जलाती रहती है। एक बार मरना आसान है, लेकिन रोज रोज का मरना और जलना व्यक्ति के लिए आत्मघातक है। चिंता से उबरना है तो अपने वर्तमान जीवन के मालिक बनकर इसी का आनंद लेना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया। क्या हम या आप बीते हुए समय को लौटा सकते हैं? नहीं ना। और जो आया नहीं है, उसके लिए भी कैसे चिंता? जिसे न किसी बात की चिंता है, न किसी बात की चाह और न किसी बात का डर है, उसे ही रात में चैन की नींद आती है। वो सहज जिएगा और सहज सोएगा। कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए ते शाहन के शाह।

0: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कृषि चर्चा। विषय है कद्दू के रोग।
1: किसान भाइयों नमस्कार। कद्दू के पौधे के ऊपर अनेक तरह के रोग लग जाते हैं। कद्दू इस मौसम में जो आपके खेत में है, जिसे आप लगाए हैं, उसमें मृदु रोमिलासिता रोग लग जाता है। इस रोग में सबसे पहले पत्तियों की ऊपरी सतह पर हल्के पीले रंग के कोणीय धब्बे दिखाई देते हैं। धब्बों के ठीक नीचे पत्ती की निचली सतह पर कवक की बढ़वार रूई के समान बैगनी रंग का दिखाई पड़ता है। रोग की तीव्रता में पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं। कभी कभी पूरा पौधा ही सूख जाता है। रोगी पौधे बौने रह जाते हैं। रोगी पौधे में फल अक्सर कच्चे रह जाते हैं और यदि किसी प्रकार पक भी गए तो उनका स्वाद अच्छा नहीं होता है। मृदु रोमिल

0: है। रोग की तीव्रता में पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं, कभी कभी पूरा पौधा ही सूख जाता है। रोगी पौधे बौने रह जाते हैं, रोगी पौधे में फल अक्सर कच्चे रह जाते हैं और यदि किसी प्रकार पक भी गए तो उनका स्वाद अच्छा नहीं होता है। मृदुरोमिल आसिता रोग जो कद्दू वर्गीय फसलों में होता है, उसे रोकने के लिए आप फसल चक्र अपनाएं। कद्दू कुल की सब्जियों को हर साल एक ही खेत में नहीं लगावें। फसल समाप्त हो जाने के बाद फसल के अवशेषों को जलाकर नष्ट कर दें। रोगी बेलों को काट देना चाहिए और खड़ी फसल पर मैंगोजेब या रिडोमिल MZ72 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से गोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। पहला छिड़काव रोग के लक्षण दिखाई पड़ने पर ही शुरू हो जाते हैं और 10-15 दिन के अंतर पर कुल 3 या 4 छिड़काव करने पड़ते हैं। उसके बाद एक और रोग है जिसका नाम है फल बिगलन रोग। इस रोग में लक्षण फलों पर पीले गहरे रंग के धब्बे के रूप में उत्पन्न होते हैं। ऐसे फल छूने पर काफी मुलायम मालूम पड़ते हैं। रोगी फल सड़ने लगता है। नम मौसम में रोगी स्थानों पर रुई जैसे सफेद कवक की बढ़वार दिखाई पड़ती है। फल बिगलन के कारण फलों में से एक प्रकार की दुर्गंध आती है। भूमि सतह के संपर्क में रहने वाले फलों में रोग लगने की संभावना अधिक होती है। भंडारण के समय यदि कोई रोगग्रस्त फल भूल से भंडार में पहुंच जाए तो अन्य स्वस्थ फलों में भी यह रोग लग जाता है। रोग प्रबंधन के लिए रोगी पौधों के अवशेषों को जलाकर दूर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। जल निकास का समुचित प्रबंध खेत में रखना चाहिए। बेलों को चढ़ाने के लिए सहारा देना चाहिए ताकि जमीन को फल नहीं छुए, क्योंकि उसके कारण भी सड़न उत्पन्न होता है। इसके अलावा भूमि पर बेलों एवं फलों के नीचे पुआल, सरकंडे या ऐसी ही अन्य चीजें बिछाकर रखना लाभकर होता है। फलों को तोड़ते समय या खेत से बाजार ले जाते समय ध्यान रखना चाहिए कि फलों पर घाव या खरोच न आवे। खड़ी फसल पर मैंगोजेब दवा का प्रयोग करना चाहिए। 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बनावे, उसका फिर छिड़काव करें। इसके अलावा चूर्णिल आसिता रोग भी होता है। इस रोग में लक्षण पहले पत्तियों की ऊपरी सतह एवं तनों पर सफेद चूर्ण के रूप में दिखाई देते हैं, बाद में ये धब्बे हो जाते हैं। धब्बों पर उपस्थित चूर्ण बिल्कुल टेलकम पाउडर से मिलते जुलते हैं। रोगी पौधों का ऊपरी भाग पीला पड़कर सूखने लगता है और चूर्णी धब्बों का रंग भूरा हो जाता है। चूर्णिल आसिता रोग में पुराने धब्बों के बीचों बीच में छोटे छोटे काले बिंदु के आकार के कवक की संरचना दिखाई पड़ती है। पौधों की वृद्धि रुक जाती है और फल को बहुत हानि होती है। चूर्णिल आसिता रोग जो कद्दू वर्गीय पौधों में होता है, इसे रोकने के लिए खेतों में या उसके समीप उपस्थित जंगली पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। रोगी पौधों के अवशेषों को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई पड़े सल्फेक्स 2 ग्राम दवा का प्रयोग करें या कैराथेन 0.6 मिलीलीटर दवा का प्रयोग करें। इनका घोल आप बनावें और घोल बनाने के बाद उसका छिड़काव करें। सामान्यतः 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव की जाती है। इसके अलावा फ्यूजेरियन मलानी रोग भी कद्दू वर्गीय पौधों में होता है। इस रोग में भी पौधों की बढ़वा रुक जाती है, पत्तियां पीली होने लगती है, रोगी पौधों की बेलें मर जाती हैं और जड़ें सड़ जाती हैं। रोगी पौधों के तने का भीतरी भाग भूरा हो जाता है। नम मौसम में रोगी तनों के ऊपर कवक की बढ़वार सफेद या गुलाबी रंग की दिखाई पड़ती है। फ्यूजेरियम मलानी रोग जो होता है, जिसे फ्यूजेरियम ब्लाइट भी कहते हैं, रोगी पौधों को इस रोग से जो ग्रसित पौधे हैं उन्हें उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। कम से कम 10 वर्षों के लिए फसल चक्र में इस वर्ग की फसलों को नहीं लगाना चाहिए। बीज को लगाते समय कवकनाशी दवा कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम से उपचारित करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम आप ले लें और 1 किलोग्राम बीज को उसमें मिलावें और फिर उसे जो है खेत में बोवें। इस तरह से उपचारित बीज की बुआई आप कर लेंगे। खड़ी फसल में कार्बेंडाजिम का घोल बनाकर भी रोगी के पौधों के तनों और जड़ों के पास आप छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से कद्दू वर्गीय पौधे जो हैं, कद्दू जो है उसमें जो रोग होते हैं, उन रोगों की पहचान करके उसका प्रबंधन करके आप अपनी फसल को इन रोगों से बचा सकते हैं।
1: कद्दू के रोग, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे श्रीनिवास सहाय। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है और ये समय है हिंदी में समाचार का। इसे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडे वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं देशवंदना।

श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर में विश्वास। और विश्वास में इतनी शक्ति है कि इससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है।

ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, लेकिन हाँ, उनको ढूंढना मत, सिर्फ पहचानना। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते।

जहाँ विश्वास है वहीं ईश्वर का वास है। भक्ति वो शक्ति है जो हर कठिनाई को सरल बना देती है। ईश्वर पर भरोसा रखें, समय आने पर हर प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलता है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

रानी कैकई ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है, ये सुनकर अयोध्या के महलों में विषाद का वातावरण छा गया है। किंतु श्री राम प्रसन्न है, उनका चित उल्लसित है। सब भाइयों को छोड़कर पिता ने उनका ही राज तिलक करने का निश्चय किया था, इस कारण जो विषाद उनके मन में उत्पन्न हुआ था वो अब मिट गया है। वो प्रसन्न मन माता कौशल्या के भवन में पहुंचे। श्री राम ने हाथ जोड़कर माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने गले लगाकर उन पर वस्त्राभूषण न्योछावर किए। वो उस शुभ लग्न की प्रतीक्षा में हैं जब राम का राज तिलक होगा। किंतु पुत्र के मुंह से ये सुनकर कि पिता ने उन्हें वन का राज्य दिया है और वो वन यात्रा के लिए माता का मंगलमय आशीर्वाद लेने आए हैं, माता कौशल्या के हृदय में जैसे वाण चुभ गया, जिसकी चुभन से वो तड़प उठी। पुत्र के वचन अत्यंत कोमल और शीतल थे, किंतु उन्हें सुनकर वो वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ते ही जवासा सूख जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज का विषय है बच्चों का टीकाकरण, ध्यान देने योग्य बातें। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान हैं डॉक्टर राकेश कुमार, जो NMCH के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, और ये हमें बताएंगे कि बच्चों के टीकाकरण में हम किन बातों का ध्यान रखें।
2: प्रसव हमारे यहाँ 80% प्रसव जो है संस्थानों में हो रहा है, तो बच्चे की छुट्टी से पहले जन्म पे 3 टीके लग जाने चाहिए और वहाँ पे MCP कार्ड बनता है, वो बनवा लेना चाहिए। और हमारे यहाँ ये भी प्रथा है कि पहले बच्चे जो हैं यूजुअली नानी घर होते हैं, तो कभी स्थान बदलने के बाद वो MCP कार्ड छूट जाता है, ये नहीं होना चाहिए। और बच्चे का जन्म से लेकर के 5 साल तक का टीकाकरण नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में भी होता है, ये सुनिश्चित करें कि हर बार आप अपना कार्ड ले जाएं और वहाँ सारे टीकाकरण कराएं। जन्म पे बच्चे को BCG, हेपेटाइटिस बी और पोलियो के ड्रॉप लगते हैं। फिर बच्चा जैसे ही 1.5 महीने का होता है तो उनको पेंटावैक, मतलब 5 रोग उसमें एक साथ होता है, DPT का, एक H इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो बच्चों में निमोनिया, गले नाक कान का इन्फेक्शन करता है वो, और हेपेटाइटिस बी, और साथ ही साथ इंजेक्टेबल पोलियो। पोलियो पहले ओरल देते थे, अब इंजेक्शन देते हैं पोलियो का, वो लगता है। और साथ में एक रोटा वायरस वैक्सीन जो दस्त का सबसे प्रमुख कारण है, उस वो दिया जाता है। और उसके बाद एक और इंजेक्शन जो लगता है वो निमोकोकल वैक्सीन, वो भी बच्चे में संक्रमण करता है इनकी। और बच्चा फिर तो 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, आप हर बार कार्ड ले जाएं और इसको छोड़े नहीं। अगर अभिभावक ये सारे प्रक्रियाएं करते हैं तो उनको एक अच्छा अभिभावक माना जाता है। तो कोशिश ये करना है कि अपने कार्ड हमेशा साथ रखें और जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाएं और टीके लगवाएं। उसके बाद 9वें महीने में MR का टीका लगता है, प्लस हमारे यहाँ पर्टिकुलरली जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का भी टीका लगता है। उसके बाद बच्चा जब 1.5 साल का होता है और 15 महीने का होता है तो MMR और DPT का टीका रिपीट होता है, और फिर वही 5 साल में भी रिपीट होता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जितनी भी टीकाएं हैं ये ऐसे बीमारियों के लिए हैं जो ठीक, मतलब अगर एक बार संक्रमण हो जाए तो बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। तो हमें ये कोशिश करना है कि हम पूरे अच्छे तरीके से टीकाकरण कराएँ। टीकाकरण कराने के दौरान बच्चे में साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें बुखार, सूजन या दर्द की संभावना होती है। तो आजकल पारासीटामोल का ड्रॉप, वो जो बहन या दीदी या सिस्टर्स जो आपको बताते हैं उसी तरीके से उसका इस्तेमाल करें। बुखार नहीं भी है लेकिन अगर बच्चा दर्द में है और दूध कम पी रहा है तब पर भी उसे दिया जा सकता है। इसके अलावा प्राइवेट में भी कुछ टीकाएं अभी मार्केट में आ रही हैं और शायद भविष्य में सरकार भी उसे लगाएंगे।
1: वो कौन कौन सी बीमारियां हैं?
2: जैसे आप देखते हैं कि बच्चे जो हैं तैयारी करने जाते हैं और वहां बाहर का दूषित खाना खाते हैं तो जॉन्डिस हो जाता है, टाइफाइड की संभावना बढ़ जाती है बाहर के खाने से, तो इसके भी टीकाकरण हैं। और साथ ही साथ एक मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के भी टीके अवेलेबल हैं, और कोशिश करना चाहिए कि वो करवा लिए जाएं।
1: जी, और डॉक्टर साहब कई बार होता है कि जिस दिन टीकाकरण की तारीख है या जिस दिन आपके आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण होना है जी, किसी कारण से आप उस दिन नहीं जा सके।
2: जी, कोशिश यही करनी है उस स्थिति में जब आपने अपने डोजेज मिस किए हैं तो 7 दिन के अंदर उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जा कर के लगवा लेना चाहिए। और मिस्ड डोजेज के भी उनके पास अपने शेड्यूल होते हैं, अगर मान लीजिए कोई जन्म पे ही नहीं लगाया तो भी वहाँ शेड्यूल बना होता है, आप वो बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन टीकाकरण छोड़ना नहीं है, ये आपको गांठ बांध लेना है,
1: हर हालत में टीकाकरण कराना जी। तो डॉक्टर साहब आपने हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

बच्चों में टीका, बच्चों का टीकाकरण ध्यान देने योग्य बातें, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राकेश कुमार। इनसे बातचीत कर रहे थे अनिल कुमार तिवारी। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, आपको बता दें, आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हाल

सुबह 7:15 पर प्रादेशिक लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुनील डांगी और रेखा निषाद से प्रादेशिक लोक संगीत। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे सुबह 7:25 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अनवर हुसैन से सारंगी वादन राग गुजरी तोड़ी।

9:10 पर पेश करेंगे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी आप सुन सकते हैं सुबह 10 बजे। अंग्रेजी वार्ता द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन बिल्डिंग इंक्लूसिव डेमोक्रेटिज आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। सुबह 10:45 पर प्रस्तुत करेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे भूपेंद्र और मिताली की आवाज में कुछ गजल। और दिन के 11 बजे से 12 बजे तक आप आनंद उठा सकते हैं फिल्म संगीत का। दोपहर 12 बजे का समय है कार्यक्रम बिहार के लोक संगीत का। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत कमलेश प्रसाद सिंह और धनंजय पांडे से सुरों का सफर। सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकारों पर आधारित कार्यक्रम सुरों का सफर प्रस्तुत करेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:05 पर आप सुनेंगे कानून की बातें। ओबी मोटर वाहन अधिनियम इस विषय पर एक जानकारी सुनेंगे हरिंद्र आजाद से।

सांधिकालीन सभा में शाम 4:30 पर प्रस्तुत करेंगे युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी। भोजपुरी कार्यक्रम आरती का प्रसारण होगा शाम 5:30 पर।

ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर, और खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं शाम 7:00।

रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत और आज रात्रि 8:30 पर प्रस्तुत करेंगे सुगम संगीत, जिसमें आप सुनेंगे चंद्रकांत पाठक से कुछ भजन। रात्रि 10 बजे आप सुन सकते हैं सोमवासरीय संगीत सभा में शास्त्रीय संगीत, इसमें आप सुनेंगे अनवर हुसैन से सारंगी वादन राग जोग। और रात्रि 10:30 से 11 बजे तक आप आनंद उठा सकते हैं पुनः फिल्म संगीत का। तो श्रोताओं, ये थे आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, इसे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: तासियात।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायी अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन संबलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी सेशल्स देशे ह्यः मारिशस् देशस्य समकक्षेन डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मारिशस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मारिशस् वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षि अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडी नगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षि अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीय व्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्कर समूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानां आरक्षि अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः 16 सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालना मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनीमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनीमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस देशस्य एथेन्स नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकं आर्थिक सहकार्यं च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है जो साझा

0: ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स की सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हाल चाल। श्रोताओं, हाल चाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वंदना और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे ऐतिहासिक बातों से। तो आज है 29 जून और आज का ये दिन भारत और विश्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कई ऐसी बड़ी घटनाएं घटी हैं आज के दिन। तो सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। आज ये दिन मनाया जाता है भारत में हर साल 29 जून को, क्योंकि इसी दिन भारत के महान वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद PC महालनोबिस की जयंती होती है। साथ ही सेशल्स का

सेशल्स कंट्री का आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 29 जून 1976 को सेशल्स देश को ब्रिटेन से पूरी तरह आजादी मिल गई थी। अन्य ऐतिहासिक घटनाओं पर नजर डालें तो 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया था। वहीं सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड रहा 2007 में, आज ही के दिन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान वनडे क्रिकेट में अपने 15,000 रन पूरे किए थे। 1893 में, जैसा कि हमने बताया, 29 जून 1893 में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद PC महालनोबिस का जन्म हुआ था। हिंदी के पहले तिलस्मी लेखक जिन्होंने मशहूर उपन्यास चंद्रकांता और भूतनाथ की रचना की थी देवकी नंदन खत्री का जन्म भी आज ही के दिन 1861 में हुआ था। वहीं 29 जून को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, जो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे और जो काकोरी कांड में शामिल थे, उनका भी जन्मदिन आज ही के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पूर्व डायरेक्टर PK अयंगर का जन्म दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। 29 जून को इनका जन्म हुआ था 1931 में। 29 जून को हुए कुछ प्रमुख व्यक्तियों के निधन की बात करें तो सरदार बलदेव सिंह, भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और आजाद भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। इनका निधन 29 जून 1961 को हुआ था। और गावरी देवी, राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका जिन्होंने लोक संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी, उनकी मृत्यु हुई थी 1988 में आज ही के दिन।

श्रोताओं, फिटनेस का अर्थ केवल वजन कम करना नहीं है। फिटनेस का मतलब है शरीर का स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जावान होना। नियमित रूप से टहलना, दौड़ना, साइकिल चलाना या किसी खेल में भाग लेना हमारे हृदय, फेफड़ों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। विशेषज्ञों की माने तो रोजाना कम से कम 30 मिनट का शारीरिक व्यायाम कई बीमारियों जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों के जोखिमों को कम कर सकता है। योग के कुछ सरल अभ्यास जैसे कि ताड़ासन, भुजंगासन, वज्रासन और अनुलोम विलोम सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक माने जाते हैं। तो श्रोताओं, याद रखिए, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय योग और फिटनेस के लिए निकालें तो न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा बल्कि हमारा मन भी प्रसन्न और ऊर्जावान बना रहेगा। तो इसी संदेश के साथ हालचाल का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आप स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, प्रांतीय भारत।

अभी आप सुन रहे थे प्रांतीय भाषाओं पर आधारित प्रादेशिक लोक संगीत, कलाकार थे सुनील डांगी और रेखा निषाद। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। आज सुनेंगे सारंगी वादन, कलाकार हैं अनवर हुसैन। इनसे हम सुनेंगे राग गुजरी तूड़ी। तबले पर इनका साथ दे रहे हैं नंदन कुमार ठाकुर, तानपुरे पर हैं विनोद कुमार पाठक। तो लीजिए सुनिए राग गुजरी तोड़ी। पहले प्रस्तुत है विलंबित एक ताल में और फिर प्रस्तुत करेंगे द्रुत तीन ताल में।

0: अभी आप सुन रहे थे सारंगी वादन अनवर हुसैन से। इनसे आप सुन रहे थे राग गुजरी तोड़ी। तबले पर साथ दे रहे थे नंदन कुमार ठाकुर और तानपुरा पर थे विनोद कुमार पाठक। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला कार्यक्रम दिल्ली से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
2: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी

0: और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल हैं। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4वां वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएससी विश्वविद्यालय

0: में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
1: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहाँ वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच पहाड़ी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317 और 0112314444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी

0: मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है। अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोक सत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड्स सेशल्स नेशनल डे सेलिब्रेशंस एज गेस्ट ऑफ ऑनर, ऑल्सो होल्ड्स टॉक्स विद हिज मॉरिशियस काउंटरपार्ट नवीन चंद्र रामगुलाम। United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital, Doha, tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defense Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish FIH Pro League campaign on a winning note. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of the independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honor, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honor. More from our correspondent.
3: An Indian marching contingent comprising Navy and Army

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम से भी बातचीत की। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अदा करेंगी। भारत के महकमा मौसमियात ने आज जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग की अपनी मुहिम जीत के इशारे के साथ मुकम्मल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर वहां के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने इस तकरीब में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की।

0: तरह वो भारत के पहले वजीर आजम हैं जिन्हें ये एजाज दिया गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस परेड में भारतीय बहरिया और फौज की टीमों पर मुश्तमिल एक दस्ते ने शिरकत की। भारत के एक बहरी बैंड ने भी शिरकत की है, जिससे भारत और सेशेल्स के दरमियान करीबी शराकतदारी का इजहार होता है। एक खसूसी इशारे के तौर पर INS तरकश और INS अक्षक को पोर्ट विक्टोरिया पर लंगरअंदाज किया गया है, जिससे सेशेल्स के साथ भारत की देरीना दोस्ती का अंदाजा होता है। वजीर आजम मोदी ने इस तारीखी मौके पर सेशेल्स के आवाम को भारत की नेक ख्वाहिशात पेश की। जनाब मोदी सेशेल्स के सदर पैट्रिक हरमनी की दावत पर हफ्ते के रोज सेशेल्स पहुंचे थे। वजीर खारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और मॉरिशस के वजीर आजम नवीन चंद्र राम गुलाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वजारत खारजा के मुताबिक भारत और सेशेल्स के दरमियान देरीना दोस्ती है, जिसकी जड़ें मुश्तरका तारीखी, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। भारतीय बहरे हिंद खित्ते में एक अहम समंदरी पड़ोसी के तौर पर सेशेल्स का मकाम भारत के विजन महासागर और आलमी जुनूब के तई भारत के अहद में खसूसी हैसियत का हामिल है। वजारत खारजा ने बताया कि जनाब मोदी के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती का इरादा होता है और मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताल्लुकात को फरोग देने में दोनों मुल्कों के मुश्तरका अहद का भी इरादा होता है। आशीष अब्राहम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शगुफ्ता यास्मीन।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के अपने हमनसब डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और मॉरिशस के दरमियान मौजूदा तआवुन और इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने भारत की जानिब से दिए गए खसूसी मुआशी पैकेज के निफाज में हुई पेशरफ्त का भी जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी मुकदम की पॉलिसी के तहत भारत मॉरिशस की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की अहमियत से इत्तेफाक किया और आलमी खित्ते जनूब के तई अपने मुश्तरका अहद से भी इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सेशल्स का माहौलियाती तहफ्फुज़ और मुस्तकिल तरक्की के मैदान में आला तरीन क़यादत पर गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड सेशल्स के सदर पैट्रिक हरमीनी के हाथों दिया गया है, जिसके तहत मुस्तकिल तरक्की और जनाब मोदी के माहौल के लिए साजगार तसव्वुर का एतराफ किया गया है। जनाब मोदी ने इस अवार्ड से नवाजे जाने के बाद सेशल्स के अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। अमरीका और ईरान कतर की राजधानी दोहा में इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि एक दूसरे के खिलाफ हमले रोक दिए जाएं और कल से बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए। इस कदम का मकसद कई दिन से जारी इस फौजी कार्रवाई को रोकना है, जिसकी वजह से जंगबंदी को खतरा लाहिक हो गया था और आबनाई हुरमुज से मुतालिक तनाजे को हल करना है। ये ऐलान आबनाए हुरमुज के आसपास कई हमलों के बाद किया गया है। अमरीका ने ईरान पर इल्जाम लगाया था कि उसने तजारती जहाजों पर हमला करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है, जिसके बाद उसने ईरान के फौजी ठिकानों पर हमले किए। इधर ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए। दोनों ही मुल्कों की तरफ से मजीद कशीदगी पैदा हो जाने के तई नए सिरे से खबरदार किया गया है। एक अमरीकी अफसर ने बताया कि अब दोनों ही मुल्क एक दूसरे पर हमले करने से बाज रहेंगे और मुजाकरात के दौरान इन जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त जारी रहेगी। सदर जम्हूरियत द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक 2026 की दिफा की दूसरी तकरीब में बहादुरी इनामात अदा करेंगी। वो दिफाई अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों और रियासतों मरकज के जेर इंतजाम पुलिस के अमले को बहादुरी के इनामात शाम 5 बजे अदा करेंगी। ये इनामात मुसल्ला दस्तों, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस और दीगर हिफाजती एजेंसियों के अमले के बहादुरी के गैर मामूली कारनामों को तस्लीम करते हुए दिए जाते हैं। इन इनामात से पूरे जम्मू और कश्मीर, शिमाल मशरक और मुल्क की सरहदों पर दहशतगर्दी, शोरिश पसंदी और मुखासिमाना धमकियों की रोकथाम के लिए भारत की लगातार जदोजहद की अक्कासी होती है। नीज एविएशन, समंदरी कार्रवाइयों और इंसानी हमदर्दी वाले मिशनों में गैर मामूली हौसले के इकदाम उजागर होते हैं। सदर मुर्मू ने इससे पहले इस तकरीब के पहले मरहले में भी बहादुरी इनामात अदा किए थे। ये तकरीब राष्ट्रपति भवन में इस माह की 8 तारीख को मुनक्किद की गई थी। गुजरात के वडोदरा शहर में आज GSFC यूनिवर्सिटी में 4थी दरख्शां गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा, जिसका उन्वान है रीजनल एस्पिरेशंस ग्लोबल एम्बिशन।

0: कजी वुजरा, राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर, मनसुख मांडविया, अहम रियासती वुजरा और आलमी सिफारतकार इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद वस्ती गुजरात के खत्ते में सनती तरक्की की रफ्तार तेज करना है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस में 30 से ज्यादा सेमिनार मुनाकिद किए जाएंगे, जिनमें जापान, सिंगापुर, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूक्रेन और रवांडा समेत शराकतदार मुल्कों के 151 माहरीन और मंदूबीन शिरकत करेंगे। मरकजी गुजरात की इकतसादी तरक्की पर मरकूज इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के लिए तैयार शोबों पर तवज्जो दी जाएगी, जिनमें सेमी कंडक्टर, लॉजिस्टिक्स, माहौलियात के लिए साजगार हाइड्रोजन, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ज़राअत, खला, दिफा और मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। 150 से ज्यादा स्टॉल्स पर मुश्तमिल इस बड़ी नुमाइश में इलाकाई MSMEs, तरक्की याफ्ता टेक स्टार्टअप्स और कुछ बड़ी कंपनियां जैसे अमूल और GSFC वगैरह हिस्सा लेंगी। वडोदरा से अपर्णा खुन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भिवंडी में एक सेशंस अदालत ने उन तीन मुलजिमों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जिन्हें महाराष्ट्र टीचर अहलियत इम्तिहान टेट के पेपर लीक केस में गिरफ्तार किया गया था। तफ्तीशकारों को शक है कि ये लोग इम्तिहान के बैन रियासती रैकेट में मुलव्वस हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: भिवंडी पुलिस ने अदालत को बताया कि मुलजिमीन इफ्शा किए गए TET सवालनामे को 1,50,00,000 रुपए में बेचने के लिए दिल्ली से भिवंडी गए थे। ये पेपर असल में कहां से इफ्शा हुआ, तफ्तीशकारों ने यह जानने के लिए इन लोगों को 10 दिन के लिए पुलिस हिरासत में तलब किया है। पुलिस इस सिलसिले में माली लेन देन के बारे में जानना चाहती है और ये जानना चाहती है कि आया ये पेपर महाराष्ट्र में किसी और जगह भी फरोख्त किया गया है। पुलिस रैकेट के दीगर अरकान की भी शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। पुलिस अफसरान ने बताया कि अब वो इस सिलसिले में दो मफरूर मुलजिमीन को तलाश कर रहे हैं। TET इम्तिहान इतवार 28 जून को होना था, लेकिन इस केस की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया। इस वाक़े के बाद महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हफ्ते को एक खसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील देने का हुक्म दिया है। मुंबई से शैलजा तिवाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शगुफ्ता यास्मीन।
0: ओडिशा में आज सुबह लाखों की तादाद में अकीदतमंद पुरी पहुंचे। आज श्री जगन्नाथ मंदिर में पवित्र देव स्नान यात्रा या स्नान यात्रा रिवायती शानो शौकत के साथ मुनक्किद की जा रही है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र स्नान यात्रा में शामिल होने के लिए अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में यकजा हुई। सदियों पुरानी रिवायत के मुताबिक तीनों देवताओं को रस्मी तौर पर स्नान बेड़ी तक लाया गया, जहां वैदिक मंत्रों के जाप, शंखों की आवाज और भजनों के साथ उन्हें स्नान कराया जाएगा। मजकूरा त्यौहार देव स्नान पूर्णिमा के पवित्र मौके पर मनाया जाता है और सालाना रथ यात्रा से कबल इन तीनों देवताओं के दर्शन किए जाते हैं। अजीम शान रथ यात्रा आइंदा महीने की 16 तारीख से शुरू होगी। इस दौरान सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी न्यूज भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज सिक्किम और मगरबी बंगाल के सैली हिमालयाई खित्ते में बहुत शदीद और कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक गुजरात के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान जनूबी मगरबी मानसून की मजीद पेशरफ्त के लिए हालात साजगार हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, आसाम, मेघालय, केरला और माहे में आइंदा 2 दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। आसाम के धेमाजी जिले में बड़े पैमाने पर सैलाब आ जाने के खतरात बढ़ गए हैं। खबरें हैं कि अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में गाई नदी के बहाव में आरजी तौर पर रुकावट आ गई है। समझा जाता है कि ये रुकावट बड़े पैमाने पर जमीनी तौदे खिसकने की वजह से आई है। खित्ते में तौदे खिसकने का ये हादसा कई दिन की शदीद बारिश की वजह से पेश आया है। एक रिपोर्ट।
1: धेमाजी जिला इंतजामिया ने लोगों के लिए एक फौरी हिदायत जारी की है और उन्हें खबरदार किया है कि जो पानी यहाँ जमा हो गया है, अगर उसे आगे जाने दिया जाए तो अचानक सैलाब आ सकता है। यहाँ दरिया, झरनों, दलदली जमीनों, पानी के जखीरों और दीगर नशेबी इलाकों के पास रहने वालों से कहा गया है कि वो चौकन्ना रहें। कुदरती आफत की सूरत में बंदोबस्त से मुतालिक जिला अथॉरिटी ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो सरकार की तरफ से जारी की गई हिदायत पर सख्ती से अमल करें, मकामी हुक्काम के साथ तआवुन करें और अगर जरूरी हो तो महफूज तर जगहों पर मुंतकिल हो जाएं। इसी दौरान पहाड़ी इलाकों पर मूसलाधार

0: बारिश की वजह से जिले के कुछ इलाके पानी में डूब गए हैं और यहाँ पानी कौमी शाहरा नंबर 515 के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमद रफ्त में रुकावट आ गई है। इस बढ़ते हुए सैलाब से घर और खेत पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से इमलाक और खड़ी फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे।
1: कल लंदन में खेले गए FIH हॉकी प्रो लीग के मुकाबले में भारत ने शानदार दिफाई मुजाहिमत का मुजाहिरा करते हुए इंग्लैंड को 3-2 से शिकस्त दी। इससे पहले मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ था, जिसके बाद मस्कुरा गोल पेनल्टी शूटआउट में किए गए। इस जीत के साथ ही आइंदा हॉकी आलमी कप से कबल भारतीय टीम के इतमाद में इजाफा हुआ है। फीफा आलमी कप के नॉकआउट मरहले में अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दी। ये कनाडा की किसी फीफा आलमी कप के किसी नॉकआउट मुकाबले में सबसे पहली जीत है। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे छोटे कारोबारियों के लिए बढ़ते हुए छोटे कारोबार और मौके के मौजू पर एक तफसीली मुजाकिरा नश्र करेगा। ये मुजाकिरा MSME की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर रजनीश के साथ किया जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन।
2: शुक्रिया नितिका। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले अहम उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे को अपने सफाई अव्वल की नुमाया खबर के तौर पर शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम मोदी के बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि बहरुल काहिर की सलामती और खुशहाली हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी। सेशल्स के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का वक्त, दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दद अहम माहदों पर दस्तखत। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, PM मोदी को सेशल्स ने मुल्क के आला तरीन एजाज से नवाजा। रोजनामा इनकलाब ने प्रोग्राम मन की बात के ताल्लुक से वजीर आजम के इस बयान को नुमाया अहमियत के साथ शाया किया है कि समंदर से आसमान तक हिंदुस्तान महफूज और आत्मनिर्भर बन रहा है। कुछ अहम बैन अलावा खबरें इस तरह हैं, जंगबंदी माहदे की दोबारा खिलाफ वर्जी, ईरान अमरीका फिर आमने सामने, कशीदगी में इजाफा, साबिक वजीर आजम शेख हसीना का बांग्लादेश वापसी का ऐलान, इबोला वायरस की वजह से सऊदी अरब ने 3 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद की।
1: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम से बातचीत की। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अता करेंगी। भारत के महकमाए मौसमियात ने आज सैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग की अपनी मुहिम जीत के इशारे के साथ मुकम्मल कर ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ है।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना साइंस कॉलेज परिसर में यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंसेज की स्थापना की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज 3 साल तक के बच्चों के लिए समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बिहार पुलिस में रेडियो सिपाही ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में कदाचार के आरोप में 12 अभ्यर्थी गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने आज भागलपुर, कटिहार और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। वहीं भभुआ, बक्सर और रोहतास में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना साइंस कॉलेज परिसर में यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंसेज स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए अधिकारियों को समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। कॉलेज के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय उच्च स्तरीय शिक्षा, अत्याधुनिक शोध और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा। श्री चौधरी ने आधुनिक प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केंद्रों, छात्रावास और खेल सुविधाओं के विकास पर जोर देते हुए कहा कि इस पहल से पटना साइंस कॉलेज का गौरव पुनर्स्थापित होगा और बिहार को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के 2रे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका उद्देश्य जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत नवजात और छोटे बच्चों की घर घर जाकर देखभाल की मौजूदा योजनाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम में बच्चों के शुरुआती विकास, माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच और डिजिटल माध्यम से निगरानी की भी व्यवस्था होगी। महिला हिंसा से जुड़े मामलों के त्वरित और संवेदनशील निपटारे के लिए राज्य

0: सभी अनुमंडल थानों में महिला कोषांग की स्थापना की जाएगी। इन कोषांगों के माध्यम से महिला उत्पीड़न और हिंसा से जुड़े मामलों की प्रभावी निगरानी, त्वरित कार्रवाई तथा पीड़िताओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। महिला एवं बाल विकास निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन कोषांगों के लिए महिला काउंसलरों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। राज्य के 1,14,718 आंगनवाड़ी केंद्रों की गतिविधियों की अब पोषण ट्रैकर के माध्यम से रियल टाइम निगरानी की जाएगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग मुख्यालय स्तर पर पोषण ट्रैकर कमांड सेंटर स्थापित करेगा। कमांड सेंटर के जरिए 6 साल तक के बच्चों की पोषण स्थिति, वजन, ऊंचाई और समग्र विकास से जुड़ी जानकारी की सतत निगरानी की जाएगी। ये आंकड़े सार्वजनिक डैशबोर्ड पर भी उपलब्ध होंगे, जिन्हें आम लोग देख सकेंगे। बिहार पुलिस रेडियो में सिपाही ऑपरेटर के 993 पदों के लिए आयोजित परीक्षा के दौरान कदाचार और गड़बड़ी के आरोप में 12 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती से प्राप्त जानकारी के अनुसार कदाचार के मामलों में कुल 17 प्राथमिकी दर्ज की गई है। सहरसा में पुलिस ने सॉल्वर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र, उत्तर पुस्तिकाएं, ब्लैंक चेकबुक और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ के आधार पर किशनगंज, गया, भागलपुर और खगड़िया समेत कई जिलों में छापेमारी की गई। वहीं दरभंगा के लहरियासराय स्थित परीक्षा केंद्र पर ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने के आरोप में एक महिला अभ्यर्थी और उसके भाई समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या के मामले में बिहार देश भर में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य के 54,14,000 से अधिक बेरोजगारों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिनमें लगभग 26,67,000 सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे हैं। पंजीकृत युवाओं में 25 से 34 वर्ष आयु वर्ग की संख्या सबसे अधिक है। रोजगार की तलाश करने वालों में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी डिग्रीधारी भी शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि सरकारी पेंशन भोगियों को अतिरिक्त भुगतान की राशि अब बिना पूर्व सूचना के पेंशन खाते से नहीं काटी जा सकेगी। आरबीआई ने इस संबंध में सभी बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि बैंक को रिकवरी से पहले नोटिस जारी कर अतिरिक्त भुगतान का कारण, पूरी गणना और वसूली की प्रक्रिया की जानकारी देना अनिवार्य होगा। नए निर्देशों के तहत पेंशन भोगियों को आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी मिलेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। राज्य के उत्तरी हिस्से में जहां बारिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर दक्षिणी हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। कल राज्य के 16 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 40.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। भागलपुर, कटिहार और किशनगंज में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं भभुआ, बक्सर और रोहतास में लू की चेतावनी जारी की गई है।
1: राज्य के समस्त उत्तर भाग एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की

0: संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं रोहतास जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: पूर्व मंत्री हरी सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली उच्च न्यायालय में जगदीश चंद्र की उप महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति पर बधाई दी है। उन्होंने इस नियुक्ति

पर्यटन विभाग की ओर से पटना के मनेर शरीफ दरगाह में सूफी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक भाई वीरेंद्र ने किया। इस अवसर पर जाने माने पार्श्व गायक सलमान अली ने सूफी संगीत की मनमोहक प्रस्तुति दी। बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र के अंग्रेजी ढाला के पास दो चार पहिया वाहनों के बीच हुई टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए। सभी मृतक पोखरिया गांव के रहने वाले थे और गंगा स्नान के लिए सिमरिया जा रहे थे। हादसे में घायल लोगों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के चोल्हा टोली में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस टीम पर आक्रोशित लोगों ने पथराव कर दिया। इस घटना में होमगार्ड के दो जवान घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने छह आरोपितों को हिरासत में लिया है। क्षेत्र में एहतियातन पुलिस बल की तैनाती की गई है और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। सिवान जिले के दरौली थाना क्षेत्र में बालू लदे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक दुकानदार की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस मामले में एक एएसआई और एक सिपाही घायल हो गए। सिवान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में पोखर में डूबने से एक किशोरी की मौत हो गई। किशोरी को बचाने के प्रयास में उसकी मां भी घायल हो गईं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सारण जिले के मकेर थाना क्षेत्र में एक किराना दुकान में हुए विस्फोट और आग लगने की घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य झुलस गया। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एफएसएल टीम के साथ पुलिस जांच में जुटी है। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र में शराब लदी तेज रफ्तार चार पहिया वाहन की चपेट में आने से दरवाजे पर बैठी एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने वाहन को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नवादा जिले के पकड़ी बरावा थाना क्षेत्र के रोहुआ गांव में एक युवक के साथ मारपीट कर उसकी आंख फोड़ देने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जमुई जिले के कुदरा थानाध्यक्ष नंदू कुमार को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि निलंबित पुलिसकर्मी पर जब्त ट्रकों से बालू उतरवाने और एक पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार का आरोप है। पटना के पुनपुन थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरी पुल के पास से पुलिस ने एक मिनी ट्रक से 10 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की है। मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अररिया जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के पास से एसएसबी और पुलिस की टीम ने एक ऑटो रिक्शा से 87 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध बौद्धिक विरासत का प्रतीक। हिंदुस्तान की सुर्खी है, साइंस कॉलेज में भौतिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय खुलेगा। मुख्यमंत्री ने पटना साइंस कॉलेज के निरीक्षण के दौरान ऐलान किया। प्रभात खबर ने पंचायत विकास दिवस की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, हर माह के अंतिम रविवार को साथ बैठेंगे पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण, सुलझेंगे समस्याएं। दैनिक भास्कर लिखता है, सूखा मॉनसून समय से पहले आया पर अब तक 50% कम बरसा पानी, 6 जिलों में हुई सामान्य या उससे अधिक बारिश। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड समस्तीपुर से गिरफ्तार। आज अखबार की सुर्खी है, भारत के क्रिकेट का काला रविवार, आयरलैंड के खिलाफ भारत ने पहली बार सीरीज कमाई, विश्व चैंपियन भारत विमेंस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना साइंस कॉलेज परिसर में यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स

साइंसेज की स्थापना की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज 3 साल तक के बच्चों के लिए समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बिहार पुलिस में रेडियो सिपाही ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में कदाचार के आरोप में 12 अभ्यर्थी गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने आज भागलपुर, कटिहार और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। वहीं भभुआ, बक्सर और रोहतास में लू का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: Democracy becomes meaningful when it is inclusive.
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। ये आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है। पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

शर्मिंदा जिससे चांद है। आप सुन रहे थे पंकज दास की आवाज में शेर नगमा के तहत ये कलाम। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेहत के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, सेहत हजार नेमत। दोस्तों जैसा कि हम हमेशा से कहते हैं कि सेहत हजार नेमत, ये सारे आलिम का कौल है। सेहत है हजार नेमत, ये सारे आलिम का कौल है। ये जर जमीन दौलत बेकार है इसके बगैर।

0: ये जर जमीन दौलत बेकार है इसके बगैर, तंदरुस्ती से बढ़कर नहीं और कोई शय, तंदरुस्ती से बढ़कर नहीं और कोई शय। सुबह की हल्की धूप थोड़ी सी कसरत से आओ इसे हम और बनाएं बेहतर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेहत के हवाले से। सामईन, कायनात गवाह है, राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सबसे पहले उसकी शनाख्त उसके रुतबे से पहले उसके जिस्मानी तंदरुस्ती से होती है। अगर राजा होते हुए भी वो बीमार और सेहतयाब नहीं है तो उसका राजा होना किसी काम का नहीं। धीरे धीरे आवाम तो नकार ही देगी, साथ ही अहलोयाल भी बीमार लोगों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। वहीं ये गरीबों नादार इंसान को अगर देखा जाए तो अगर वो सेहतयाब है तो उसकी ज़िंदगी शेर जैसी है, वहीं वह सेहतयाब नहीं तो और भी ज़्यादा वो गरीब है। गर्ज के कमज़ोर बीमार इंसान अगर कहा जाए तो वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। दोस्तों, इसलिए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग सेहत के मुतल्लिक बार बार आगाह करते रहते हैं। वे हमें वक्त वक्त पर वैसी चीज़ों से रोकते टोकते रहते हैं जिनसे हमारा सेहत ख़राब हो। और आपने कभी आजमाया होगा कि उनकी दुआओं में सेहत से मुतल्लिक दुआएं ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि वे बुढ़ापे की तरफ गामजन होते हैं और उन्हें इस बात का ख़ास अंदाज़ा होता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। इसलिए सामईन, हमारे आकाशवाणी के उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के तहत भी हमने आपके लिए बरोज़े इतवार को ख़ास प्रोग्राम सेहतनामा भी नज़्म किया है, ताकि सेहत से मुतल्लिक अहम जानकारियों से आप आगाह होते रहें और अपना ख्याल रखें। दोस्तों, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी ये कहना है कि अगर इंसान अच्छी ग़िज़ाओं के साथ साथ भरपूर नींद और थोड़ी सी एक्सरसाइज पर ध्यान देता है तो उसे तंदुरुस्त रहने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको पता ही है कि एक कामयाब इंसान वही है जो जिस्मानी और जहनी तौर पर तंदरुस्त है। सेहत से मुतल्लिक बाबाए कौम महात्मा गांधी का भी कहना है कि इट इज़ हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। यानी गांधी जी ने हमें ये समझाने की कोशिश करी है कि सेहत ही है जो दौलत है, ख्वाह वो सोने और चांदी के टुकड़ों से कहीं अफजल है। तो दोस्तों, गांधी जी की बातों को याद रखें, ख़ास तौर पर अभी के टाइम पर अपना ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि मौसम बरसात में बीमारियां ज़्यादा और जल्दी फैलती हैं। इसके लिए अपने घर के आसपास सफाई का भी ख्याल रखें, इधर उधर कचरा ना फैलाएं। मोहल्ले में आने वाले कचरे की गाड़ी में सूखा और गीला कचरा अलग अलग हिस्सों में रखें और सफाई का एहतमाम एक दिन नहीं बल्कि हर रोज कायम रखें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि एक कदम सफाई की तरफ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं महफिले सुकन। इसमें शिरकत है तबस्सुम फरहाना और शकील अख्तर की। निजामत करेंगे मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी।
1: सामाइन आदाब, आपका स्टूडियो मुशायरा महफिल सुखन में खैर मकदम है। जिन शोरा को आज हमने स्टूडियो मुशायरा में मदऊ किया है, चलिए उनसे आपका तारुफ कराते हैं। सहसराम से हैं जनाब शकील अख्तर। तो शकील साहब, आपका खैर मकदम है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: दूसरी शायरा हैं तबस्सुम फरहाना, जो गया से तशरीफ लाई हैं। मोहतरमा तबस्सुम फरहाना, आपका भी खैर मकदम है।
3: बहुत बहुत शुक्रिया मोइन भाई।
1: और मैं मोइन गिरी दिहवी इस महफिल सुखन की नजामत कर रहा हूँ। सामाइन, आज कोई सुना दे फसाने नए, आज कोई सुना दे फसाने नए, छेड़ दे साज दिल पे तराने नए, आज कोई सुना दे फसाने नए, छेड़ दे साज दिल पे तराने नए, नगमय हिंद ऐसा सुनाता रहे, नगमय हिंद ऐसा सुनाता रहे, देश की अजमतों को बढ़ाता रहे, देश की अजमतों को बढ़ाता रहे, आखिरी दम भी आए मेरे देश की, आखिरी दम भी आए मेरे देश की, मीठी मीठी सदाएं मेरे देश की। सबसे पहले दावते सुखन दे रहा हूँ इस शेर के साथ के दर गुजर से जो काम लेते हैं, दर गुजर से जो काम लेते हैं, नहीं रखते वो इंतकाम लेते हैं, दर गुजर से जो काम लेते हैं,

0: या नहीं होता।
1: अच्छा बहुत अच्छा, मतलब अच्छा
2: कि हम उसी को बुरा समझते हैं,
0: हम उसी को बुरा समझते हैं। वाह
2: मोइन साहब
1: क्या बात है।
2: हम

0: जिनसे मेरा भला नहीं होता।
1: वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जिनसे मेरा भला नहीं होता, बहुत अच्छे।
0: मेरा भला नहीं
2: होता
0: हो ता है। और आखिरी शेर गजल का समाप्त फरमाया,
1: अता हो
0: कि हो इरादा तो कुछ नहीं मुश्किल।
1: क्या बात है।
0: हो इरादा तो कुछ नहीं।

0: क्या
1: नहीं होता।
0: नहीं
1: वाह वाह,
2: चाह जाओ तो क्या नहीं होता।
0: चाह जाओ धो इरादा तो कुछ नहीं मुश्किल, चाह जाओ
2: तो क्या नहीं
0: क्या
2: होता।
0: और ये मक्ता का समाप्त फरमाया था
2: हाँ।
1: जी अता हो
0: कि हजरत मीर कह गए हैं शकील। हाँ। हजरत

0: कभी
1: शेर समाप्त फरमाए
0: इरशाद इरशाद
1: के सादा लफ्जों में शेर कहे देना,
2: सादा लफ्जों में शेर कहे
1: सादा।

0: किसने देखी अशर राजा हो
1: ऐसा अता हो
0: कि मैं

0: लुट गई लोगों में खुशी
1: वाह वाह,
0: में।
1: क्या
0: वाह
1: बात
0: वाह वाह,
1: है, लुट
0: क्या बात,
1: गई
0: लुट
1: लोगों में
0: गई,
1: खुशी
0: वाह
1: में।
0: वाह
1: बहुत
0: वाह,
1: अच्छा शेर है,
0: बहुत अच्छे, बहुत बहुत
1: माशाल्लाह
0: शुक्रिया, बहुत अच्छे,
1: माशाल्लाह।
0: बहुत खूब।
1: मेरे
0: हिस्से में रह गया मेरा गम, लुट गई लोगों में खुशी
1: खुशी मेरी,
0: मेरी,
1: वाह
0: जी
1: वाह
0: किसने देखी। और गजल का आखिरी शेर आप हजरत की
1: अता
0: नजर
1: हो,
0: है
1: अता हो।
0: कि मैंने हर तरह से सदाएं
1: मैंने
0: दी,
1: हर तरह
0: वाह,
1: से सदाएं दी,
0: मैंने हर

0: वाह वाह,
1: क्या
0: क्या बात
1: बात
0: है,
1: है।
0: बहुत अच्छे, बहुत
1: उसने
0: अच्छे,
1: फिर
0: बहुत
1: भी नहीं सुनी
0: बहुत
1: मेरी,
0: मुकर्रर मुकर्रर बहुत
1: फिर
0: खूब जनाब,
1: से
0: बहुत
1: मैंने हर तरह से सदाएं दी, उसने फिर

0: गुजर
1: वाह क्या
0: गई
1: बात है,
2: वाह वाह वाह वाह, क्या
0: जैसे
2: बात है, बहुत
0: जैसे
2: अच्छा,
0: तैसे
1: बहुत खूब, बहुत
0: गुजर
1: अच्छा,
0: गई
2: बहुत अच्छे, बहुत
0: मेरी
2: अच्छे,
0: सब
2: बहुत
0: पे
2: अच्छे।
0: जाहिर है बस।

0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जनाब, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब,
1: बहुत अच्छा।
0: मैंने हर तरह से सदाएं दी, उसने फिर भी नहीं सुनी मेरी। ये थे जनाब शकील अख्तर साहब। अब दावते सुखन दे रहा हूँ मोहतरमा तबसुम फरहाना साहबा को, उन्हीं के इस शेर के साथ कि ये दिल कब जाहो हशमत चाहता है, ये दिल कब जाहो हशमत चाहता है,

0: फकत हरफे मोहब्बत चाहता है, मोहतरमा
1: वाह
0: तबस्सुम फरहाना से कलाम
1: वाह,
0: समाअत फरमाए।
1: शुक्रिया मोइन भाई। मतला का शेर हाजिर है।
0: इरशाद।
1: ये दिल कभी जाहो हशे मती चाहता है,
0: ये दिल कब
1: ये दिल
0: जाश
1: कभी जाहो हशी मती चाहता है,
0: वाह
1: फकत हरफे मोहब्बत चाहता
0: वाह वाह वाह, क्या बात
1: है।
0: है क्या
1: वाह
0: बात है,
1: वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: खूब।
1: बहुत अच्छा भाई,
0: ये दिल कभी
1: बहुत अच्छा,
0: जाहो
1: बहुत खूब।
0: हश।

0: दिल कभी
1: फकत आपसे
0: जाहर
1: मोहब्बत चाहता है।
0: शेमती चाहता
1: वाह
0: है।
1: वाह वाह वाह, बहुत अच्छे।
0: ये शेर देखें,
1: अता
0: कहाँ पोशीदा है सोजे तमन्ना,
1: कहा, क्या बात है,
0: कहाँ
1: क्या बात है, बहुत अच्छे।
0: कहाँ

0: दिल हरारत
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है,
0: चाहता
1: बहुत
0: है,
1: अच्छे बहुत अच्छे,
2: ठुठरता दिल
1: बहुत
2: हरारत चाहता है,
0: ठुठरता
2: वाह वाह
0: दिल हरारत
1: चाहता है, वाह वाह वाह वाह,
0: चाहता
1: वाह
0: है,
1: वाह,
0: ये दिल कब जाहो हशीमती
1: वाह वाह,
0: चाहता
1: बहुत
0: है,
1: खूब बहुत खूब
2: बहुत खूब,
0: जुदाई में कई सदियां गुजारी,
2: जुदाई में कई
1: वाह
2: सदियां गुजारी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
0: जुदाई

मेरा दिल अब रफाकत चाहे।

0: बहुत अच्छी बहुत अच्छी।
1: मेरा दिल हबिर फगाहत चाहता है, ये दिल कभी जाहो हशीमत चाहता। आइए ये शेर देखें।
0: शाद हो
1: जुनू की कौन सी मंजिल है यार रब,
0: जुनू की कौन सी मंजिल है यार रब,

0: वाह
1: जहां दिल अस्तकामत
0: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत
1: चाहता।
0: खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह
1: शुक्रिया
0: वाह,
1: मोइन भाई,
0: बहुत अच्छे,
1: शुक्रिया।
0: वाह वाह,
1: जहां दिल अस्तकामत चाहता
0: वाह, क्या
1: है,
0: बात है, वाह।
1: जहां

0: कभी जाहु हशी मती
1: अच्छा,
0: चाहता
1: वाह
0: है।
1: वाह
0: अगर इजाजत हो तो और शेर पढूं मैं।
1: जी, अता जरूर पढ़िए।
0: बहुत तड़े पाहु जो दशते सितम में,
1: वाह क्या बात है, तड़पा है जो
0: बहुत
1: दशते सितम में।
0: तड़े पाहे जो दशते सितम
1: वाह वाह
0: में,
1: वाह क्या बात है,
0: बहुत तड़े पाहे जो

0: जाहो हशी मती चाहता है।
1: बहुत खूब मोहतरमा, बहुत
0: और
1: खूब।
0: इस शेर पर आप लोगों की तवज्जो चाहूंगी।
1: हाँ
0: हाँ,
1: बताओ।
0: जुबां की चाशनी के साथ हर शेर,
1: हाँ वाह वाह वाह वाह।
0: जुबां

0: अब आखिरी शेर है। नहीं है शायरी आसान तबस्सुम,
1: क्या
0: नहीं है
1: बात है, बहुत
0: शायरी
1: अच्छे।
0: आसान तबस्सुम।

0: फिर आज
1: ये फन काफी रियाजत
0: जा
1: चाहता है। वाह वाह वाह,
0: विदा है।
1: ये फन काफी रियाजत चाहता है। बहुत खूब, बहुत खूब।
0: बहुत खूब मोहतरमा, के बिजलियां किसको तबस्सुम ढूंढती हैं अब यहाँ, बिजलियां किसको तबस्सुम ढूंढती हैं अब यहाँ, चार तिनके बच रहे थे आंधिया। सामईन हजरात, मैं मोइन गिरिडीह भी चाहता हूँ कि चंद अशार मैं भी आप सामईन को गोश गुदास करूँ,
1: हाँ
0: तो पेश है गजल का
1: बता।
0: मतला समात फरमाएं।
1: हाँ शायद
0: कभी न आया मेरे इख्तियार का
1: वाह क्या
0: मौसम,
1: बात।

0: क्या कहने हैं, क्या कहने हैं
1: गुजर
0: भगवान।
1: चुका है तेरे तबार का
0: गुजर चुका
1: मौसम।
0: है तेरे
1: बहुत
0: अतबार
1: बहुत
0: का
1: शुक्रिया।
0: बहुत बहुत
1: बहुत
0: खूब।
1: परों को खोल दो अब तो सकूं के मतवालो,
0: परों को खोल दो अब तो सकूं के मतवालो।
1: परों

0: मौसम।
1: बहुत खूब जनाब,
0: कभी
1: बहुत
0: उलझते हैं हमसे कभी बिगड़ते हैं।
1: कभी उलझते हैं
0: वाह
1: हमसे
0: क्या
1: कभी
0: बात है।
1: बिगड़ते हैं, वाह वाह।
0: कभी

0: मौसम
1: अधीन
0: आया मेरे इख्तियार का मौसम।
2: मोइन भाई बहुत अच्छे,
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका,
1: बहुत अच्छा
0: दिलो।

0: मेरे नसीब में लिखा
1: बहुत
0: है
1: खूब, बहुत
0: ख्वाब।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आप
0: ख्वाब
2: सबका। मेरे
0: बहुत
2: नसीब में लिखा है खार
1: क्या
2: का
1: बात है, क्या बात है,
2: मौसम। और
1: बहुत
2: आखिरी
1: खूब।
2: शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त
1: हाँ
2: फरमाए।
1: अताओ
0: अता
2: फिजा उंडेल रही है शराब मस्ती में,
1: फजा उंडेल रही है शराब मस्ती।
2: फिजा

0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, एक बार
1: हमें
0: और,
1: आता जो
0: एक बार और
1: हमें
0: बताइए।
1: आता जो हुआ है
2: हाँ,
1: खुमार का
2: उसको एक बार और
0: मौसम, ये
2: दोहराइए,
0: शेर एक बार और आता कि
2: मक्ते का शेर।
1: फिजा उंडेल रही है शराब
2: मस्ती
1: मस्ती
2: में।
0: क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह,
1: फिजा उंडेल।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज में ये कलाम। आइए सुनते हैं अगला कलाम अख्तर का, लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज में।

आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं रसमंजरी।

श्रोता और रसमंजरी कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं पहला गाना सैम बहादुर फिल्म से श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाजें हैं, गीत गुलजार के और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

लीजिए सुनिए अगला गाना निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज में बर्फी फिल्म से। स्वानंद किरकिरे के इस बोल गाने के बोल पर धुन बनाई है प्रीतम ने।

0: बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख दो तरीके हैं, पहला आधी दाढ़ी करा ले
1: और दूसरा
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं रस मंजरी और कार्यक्रम में लीजिए आग लगाना पेश है। श्रेया घोषाल और सोना महापात्र की आवाज में आई हेट लव स्टोरी फिल्म से। कुमार के बोल और संगीत है विशाल शेखर का।

मोहित चौहान की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गाना तमाशा फिल्म से, इरशाद कामिल के बोल और संगीत ए आर रहमान का था। और लीजिए सुनिए अगला गाना वेक अप सिड फिल्म से, शंकर एहसान लॉय के संगीत है, गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं और आवाज़ है शंकर महादेवन का।

और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं पाप फिल्म का गाना सुनिधि चौहान की आवाज़ में। इस गाने को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत है इलैयाराजा का।

जो है पता वो ना बता, राज छुपाने में है सच्चा मजा। हिचक हिचक हिचक, कहना है जो कह दोगे ना, बातें बनाने को है कुछ ना बचा।

0: श्रोता, इस गाने के साथ ही रसमंजरी का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं अंग्रेजी वार्ता, द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन बिल्डिंग इंक्लूसिव डेमोक्रेसीज। वार्ताकार हैं मिठू दास।
1: डेमोक्रेसी बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन इट इज इंक्लूसिव, व्हेन एवरी सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, इकोनॉमिक स्टेटस, रीजन और फिजिकल एबिलिटी फील्स दैट दे हैव ए वॉइस एंड अ स्टैक इन द नेशंस फ्यूचर। इन अ कंट्री एज डाइवर्स एज इंडिया, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी इज बोथ अ चैलेंज एंड एन अपॉर्चुनिटी। इट इज हियर दैट पार्लियामेंट प्लेज अ वाइटल रोल। पार्लियामेंट इज नॉट मेयरली अ प्लेस where laws are passed. It is the institution through which the hopes, concerns and aspirations of millions of Indians find expression. It is where different opinions meet. Priorities are debated and decisions affecting everyday life are made. India is a land of diversity. We speak hundreds of languages, follow different faiths and celebrate variety of traditions. Despite these differences, India remains united, or as we call it, unity in diversity. The framers of our constitution understood this, and so we opted for a democracy. India is bound together by the constitutional values of justice, liberty, equality, and fraternity. The framers of

न्यूजीलैंड हैज साउट टू रिकॉग्नाइज इंडिजेनियस परस्पेक्टिव्स. साउथ अफ्रीका एम्फेसाइजेज इक्वालिटी एंड रिकॉन्सिलेशन एंड नॉर्डिक कंट्रीज हैव फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग सोशल इनइक्वालिटीज थ्रू वेलफेयर सिस्टम. दीज एग्जाम्पल्स रिमाइंडर्स दैट इंक्लूसिव डेमोक्रेसी इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. एट द सेम टाइम इंडिया हैज सस्टेन्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थ्रू रेगुलर इलेक्शंस एंड पीसफुल ट्रांसफर्स ऑफ पावर डिस्पाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाइवर्सिटी. दिस अचीवमेंट डिजर्व्स रिकॉग्निशन. येट इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस रिमेन. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल प्रेजुडाइज, पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स कंटिन्यू टू अफेक्ट इंक्लूजन. एड्रेसिंग दिस चैलेंजेस रिक्वायर्स कलेक्टिव एफर्ट. द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी डज नॉट बिलोंग टू पार्लियामेंट अलोन. सिटीजन्स ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले. डेमोक्रेसी इज नॉट कन्फाइंड टू इलेक्शन डेज. इट इंक्लूड्स स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, रिस्पेक्टिंग द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ अदर्स, रिजेक्टिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड पार्टिसिपेटिंग कंस्ट्रक्टिवली इन कम्युनिटी लाइफ. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन्स विद द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया. दीज वर्ड्स रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बिगिन्स इन एवरी लाइफ, इन फैमिलीज वेयर डॉटर्स आर इनकरेज्ड टू परस्यू देयर एस्पिरेशन, इन स्कूल्स वेयर चिल्ड्रन लर्न टू वैल्यू डाइवर्सिटी, एंड इन कम्युनिटीज वेयर पीपल ट्रीट वन अनदर विद रेस्पेक्ट. एज इंडिया मूव्स फॉरवर्ड, स्ट्रेंथनिंग इंक्लूसिव डेमोक्रेसी विल रिक्वायर कंटिन्यूड कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स. इंस्टीट्यूशंस मस्ट रिमेन ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल. सिविक एजुकेशन शुड एम्पावर सिटीजन्स एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज मस्ट इंश्योर दैट इकोनॉमिक प्रोग्रेस इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल. इंडियाज डेमोक्रेटिक जर्नी डेमोन्स्ट्रेट्स दैट प्रोग्रेस इज पॉसिबल. वेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स, मेनी क्वेश्चन whether such a diverse nation could sustain democracy. India proved them wrong. Parliament has been central to this journey. Through representation, legislation, accountability and dialogue, it has helped translate constitutional values into public action. Its true success lies not merely in the number of laws enacted, but in the extent to which those laws promote dignity, opportunity and justice. As citizens of India, we inherit a democratic tradition enriched by countless individuals who struggled to secure freedom, equality and justice. Their efforts laid the foundation upon which our institutions stand today. The responsibility of preserving and strengthening that legacy now rests with us. Parliament can provide leadership, enact laws and facilitate dialogue. But the broader project of building an inclusive democracy requires participation from every segment of society. Teachers who inspire critical thinking, journalists who promote informed discussion, civil society organizations that advocate for vulnerable communities, public servants who uphold integrity and citizens who engage constructively all contribute to this collective endeavor. In conclusion, the role of Parliament in building inclusive democracies is both profound and indispensable. Through representation, legislation, accountability, financial oversight and national dialogue, Parliament helps transform constitutional ideals into lived realities. Its effect

0: Effectiveness is measured not merely by the number of laws enacted by the extent to which those laws enhance human dignity, expand opportunities, and strengthen social cohesion. The true success of democracy lies in ensuring that every citizen feels seen, heard, and valued. It lies in creating a society where no child is denied opportunity because of circumstances of birth, where no individual faces exclusion because of identity, and where every person can participate with confidence in shaping the nation's future. As we continue our democratic journey, let us remember that inclusion is not an optional aspiration. It is the very essence of democratic life. May our parliament remain a forum where diversity finds expression, justice finds commitment, and hope find direction. And may each of us, in our own way, contribute to the realization of a more inclusive, compassionate, and democratic India.
1: अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी वार्ता द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन बिल्डिंग इंक्लूसिव डेमोक्रेसीज. वार्ताकार थी मिथुन दास.
2: क्या बात है, बड़े दिनों बाद.
3: हाय यार. अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया.
3: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है.
2: तो देख, दो तरीके हैं. पहला, आधी दाढ़ी करा ले.
3: और दूसरा?
2: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से.
3: ये लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया.
2: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना.
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान.
5: हर लेन देन अब है आसान.
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं. आइए सुनते हैं सुगम संगीत. कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ गजल. कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह.

0: भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बज रहे हैं। एक अंतराल के बाद सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
0: शुगा फिल्म संगीत में आइए सुनते हैं आप पहला गाना। राहत फतेह अली खान की आवाज में, जयदीप साहनी के बोल संगीत, सलीम सुलेमान का। फिल्म का नाम है आजा नचले।

लीजिए सुनिए अगला गाना गुरु फिल्म से, हरिहरन और अलका याग्निक की आवाज़ में। इस गाने को लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है AR रहमान ने।

गोपी सुंदर के साथ आप सुन रहे थे चिन्मय श्रीप्रता को फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में। धुन बनाई थी विशाल शेखर ने और बोल थे अमिताभ भट्टाचार्य के। श्रोताओं, आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: राजी में धुन बनाई थी शंकर अजान लॉय ने और बोल थे गुलजार के। बने रहे हमारे साथ आकाशवाणी पटना पर, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।
1: एक जमाने से का

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म ओम शांति ओम से। राहत फतेह अली खां के साथ आप सुन रहे थे ऋचा शर्मा को विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में। बोल थे जावेद अख्तर के। खुद को बनाए रखिए हमारे साथ आकाशवाणी पटना पर। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रद्धा, ये गीत हमने लिया था फिल्म रहना है तेरे दिल में, इस फिल्म से, और आवाज़ थी के की, धुन बनाई थी हरीश जयराज ने, बोल थे समीर के। आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए सुखविंदर सिंह को फिल्म कच्चे धागे में।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये गीत हमने लिया था फिल्म राजा हिंदुस्तानी से। आवाज थी अलका याग्निक की, धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने और लिखा था समीर ने। आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दिन के 12 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बिहार का लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कमलेश प्रसाद सिंह से भोजपुरी लोकगीत।

आकाशवाणी पटना पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बिहार का लोक संगीत, और अभी आप सुन रहे थे ये लोक भजन। कलाकार हैं कमलेश प्रसाद सिंह। लीजिए सुनिए इन्हीं के स्वर में ये झूमर गीत।

0: श्रोताओं बने रहे हमारे साथ आकाशवाणी पटना पर कार्यक्रम बिहार का लोक संगीत में। हम आपको सुनवाएंगे कुछ और लोकगीत इस संदेश के बाद।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। छतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यशस्वी मुखिया।
2: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि गाँव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। तो गाँव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है। चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बने, घाट बने या स्कूल बने, बिल्डिंग बने, अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है कि वो लोग सहयोगी बन करके सुचारू रूप से सफल बनाया।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
0: श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बिहार का लोक संगीत आकाशवाणी पटना पर। लीजिए सुनिए कमलेश प्रसाद सिंह से ये निर्गुण गीत।

आकाशवाणी पटना पर कार्यक्रम बिहार का लोक संगीत में आप सुन रहे हैं धनंजय पांडे के स्वर में भोजपुरी लोकगीत। लीजिए सुनिए इन्हीं के स्वर में ये पूर्वी गीत।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राजभासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आया तब से पढ़ते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला करके और बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

श्रोताओं, धनंजय पांडे के स्वर में इस झूमर गीत के साथ ही कार्यक्रम बिहार का लोक संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 12:31 होने को हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुरों का सफर।

0: मेरा तोड़ा, ओ मुझे कहीं कौन छोड़ा तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने।
1: यूं तो लता मंगेशकर की आवाज एक करिश्मा ही कही जाएगी, फिर भी आरंभ से ही उनकी आवाज को तराशने का काम कई संगीतकारों ने किया। अनिल विश्वास, हुसनलाल भगतराम, सी रामचंद्र, नौशाद आदि ऐसे ही नाम हैं। लेकिन जिस कंपोजर ने सबसे पहले लता की गायकी में विश्वास जताया था, वे थे गुलाम हैदर। बॉम्बे टॉकीज की 1948 में बनी मजबूर वो पहली फिल्म थी जिसके संगीत ने तो धूम मचाई ही, गुलाम हैदर को भी एक अलग प्रतिष्ठा दिलाने में फिल्म कामयाब रही। मजबूर ही वो फिल्म थी जिसमें लता को महत्वपूर्ण ब्रेक मिला था।
0: छोड़ा तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने, प्यार ने।
1: दरअसल 1947 से ही फिल्मिस्तान के शहीद के निर्माण की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही थी। इस फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी गुलाम हैदर को दी गई थी और उस जमाने में इस फिल्म के लिए उन्होंने 75,000 जैसी बड़ी रकम ली थी। गुलाम हैदर लता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने न सिर्फ मजबूर के गानों के लिए लता को चुना बल्कि शहीद के लिए भी वे लता को लेकर इस फिल्म के निर्माता शशिधर मुखर्जी के पास पहुंचे। इस फिल्म के लिए वे लता के साथ राय बहादुर चुन्नीलाल के सुपुत्र मदन मोहन, जो आगे चलकर मशहूर संगीतकार हुए, उनको लेना चाह रहे थे और उन्हें साथ ले गए थे। गुलाम हैदर ने लता और मदन मोहन की आवाज में पिंजड़े में बुलबुल नाम का दो गाना रिकॉर्ड किया था, लेकिन शशधर मुखर्जी ने लता की आवाज को बहुत पतली कहकर शहीद फिल्म के लिए मना कर दिया। साथ ही मदन मोहन को भी अस्वीकृत कर दिया।

0: हर मुखर्जी ने लता के बारे में कहा, ये आवाज चल ही नहीं सकती। गुलाम हैदर को लता पर अटूट विश्वास था, इसलिए उन्होंने शशधर मुखर्जी को जवाब में कहा, मुखर्जी साहब आप जो भी कहें पर यह आवाज चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी, और ऐसी दौड़ेगी कि एक दिन आप और अन्य निर्माता इसके पीछे पीछे दौड़ेंगे। और इस बात को सिद्ध किया लता ने मजबूर का सुपरहिट गाना गाके दिल मेरा तोड़ा, जिसकी धुन गुलाम हैदर ने शशधर मुखर्जी के यहाँ से लौटते वक्त लता के साथ में गोरेगांव स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए बनाई थी।
1: मुझे साथ ना हो, मुझे साथ ना।

लेकिन गुलाम हैदर और लता का साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। गुलाम हैदर ने लता के साथ जो अंतिम गीत रिकॉर्ड किया वो मेहंदी के लिए था, पर वो मेहंदी में इस्तेमाल न होकर 1948 में बनी फिल्म पद्मिनी में लिया गया। वो गीत था बेदर्द तेरे दर्द को।

अब हैदर की संगीत शैली रिदम आधारित थी। उन्होंने टोन, रिदम, मीटर और मेलोडी के नोट्स के जोड़ पर संगीत की एक नई शैली और अंदाज विकसित किया। गुलाम हैदर सिंध में हैदराबाद के रहने वाले थे, जो पेशे से डेंटिस्ट थे, लेकिन उनकी दुनिया दांतों में नहीं थिएटर में बसती थी, जहां वे हारमोनियम बजाया करते थे। बाबू गणेशलाल से शिक्षा प्राप्त कर गुलाम हैदर ने कलकत्ते में अल्फ्रेड और अलेक्जेंड्रा थिएटर में हारमोनियम वादक के रूप में काम किया और फिर लाहौर स्थित जीनोफोन कंपनी में भी काम किया। उस समय की उमराजिया बेगम जैसी गायिका से उन्होंने शादी की और शमशाद बेगम जैसी गायिका को प्रसिद्धि दिलाने में भी उनका हाथ रहा।

1941 में आई फिल्म खजांची के द्वारा गुलाम हैदर ने फिल्म संगीत की दुनिया में खलबली मचा दी, क्योंकि हिंदी फिल्म में पहली बार एक नए तरह के रिदम का प्रवेश हुआ। यह गुलाम हैदर का पंजाबी रिदम था, जो ढोलक के अद्भुत प्रयोग के साथ एक जादू सा जगा गया। इस फिल्म का गीत सावन के नजारे हैं आहा आहा नवयुवतियों के लिए लिबरेटिंग स्वर की नई शैली के साथ साथ घर घर का गीत बन गया, और इसके गीतों के जरिए शमशाद बेगम अग्रणी गायिका

0: गुलाम हैदर के बारे में संगीतकार अनिल विश्वास।
1: वही आदमी थे पहली मर्तबा जो हिंदी फिल्म के संसार में मुंबई में जब आए थे तो पंजाब के वो भंगड़ा वाली जो मस्ती है उसकी रिदम को लेके आए थे और फिर बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री। खजांची में वो गाना सावन के नजारे है, चंचल और शोक गाने में इसका मिसाल नहीं है। रमोला और लड़कियां साइकिल पे आती और फिर उधर से लड़के आते हैं और गाने में नोक झोंक चल रहा है। सावन के नजारे है, आहा आहा।

यूं तो इसके सारे गीत मकबूल हुए, पर उनमें सबसे अधिक चर्चित हुआ तू कौन सी बदली में है मेरे चांद आजा, जिसे गुलाम हैदर ने एक अलग अंदाज में राग पटदीप

गुलाम हैदर ने सुरैया के स्वर का भी बखूबी इस्तेमाल किया कि आसिफ की प्रथम निर्देशित फिल्म 1945 की फूल की कहानी प्रसिद्ध कहानीकार सादत हसन मंटो ने लिखी थी। इसमें गुलाम हैदर ने सुरैया से नैना बावरे, पी बिना भय उदास और कहीं दिल लेने वाला जैसे गीत गवाए थे। फिल्म शमा के मेहताब पर फिल्माए गीत शमशाद बेगम की आवाज में थी, लेकिन सुरैया की आवाज के जादू से सम्मोहित गुलाम हैदर ने उन्हीं गीतों को सुरैया की आवाज में भी रिकॉर्ड किया।

0: लेकिन गुलाम हैदर ने लता को लेकर जो गाने बनाए वे सभी बेमिसाल रहे।
1: दिल मेरा तोड़ा, वो मुझे कहीं कान छोड़ा तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने।
0: मेहंदी के गीतों के बाद है गुलाम हैदर पाकिस्तान चले गए, जिसके चलते उनकी कई फिल्में अधूरी रह गईं, जिनका संगीत दूसरे संगीतकारों द्वारा कंपोज किया गया। 1948 की फिल्म कनीज के कई गीतों को हंसराज बहल ने कंपोज किया, जबकि पार्श्व संगीत ओपी नैयर ने किया। पाकिस्तान में भी गुलाम हैदर का संगीत देने का सिलसिला रुका नहीं। वहां उन्होंने नूरजहां से कई हिट गाने गवाए, पर इसी बीच कैंसर ने उन्हें आ घेरा और 1953 में मात्र 45 वर्ष की उम्र में वे इस दुनिया से रुखसत हो गए। सुरों के सफर में आज का सफर था संगीतकार गुलाम हैदर के संगीत के साथ। अगली कड़ी में एक और मकबूल संगीतकार से आप रूबरू होंगे। तब तक के लिए किशोर सिन्हा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। बनियरपुर पंचायत से बेबी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: जैसे कि हमने जब चुनाव मैंने जीती थी उसके बाद हम अपने पंचायत में बहुत सारे काम किए थे जैसे स्वास्थ्य पर शिक्षा पर, लेकिन सबसे अधिक प्रेरणादायक मेरा जो काम है वो है बालिका वाटिका जो हम बनवाए अपने पंचायत में और छठ घाट का निर्माण करवाए थे। जो नई पीढ़ी आने वाली है उनके लिए जो भी संभव हो सके मैं उसे पूरा करूं और पिछले जो समय जो उन लोगों के साथ जो बीता है वो आगे ना बीते उसे आगे

0: उनका भविष्य सफल रहे।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पंदिल पंचायत से बबलू कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: हम अपने पंचायत में नौका विहार, ओपन जिम, पार्क, सरकार भवन, तीन तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशुपालन अस्पताल, फिर चिल्ड्रेन पार्क, स्टेडियम, बहुत पशुओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था, काफी तरह का बेहतर कार्य किया है। इसको लेकर के काफी गर्व महसूस हुआ है और हम बधाई देते हैं अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान के सभी टीमों को, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफर। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम

0: कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: हम अपने पंचायत में नौका विहार, ओपन जिम, पार्क, सरकार भवन, तीन तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशुपालन अस्पताल, फिर चिल्ड्रेन पार्क, स्टेडियम, बहुत पशुओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था, काफी तरह का बेहतर कार्य किया है। इसको लेकर के काफी गर्व महसूस हुआ है और हम बधाई देते हैं अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान के सभी टीमों को, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफर। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1 बजने को हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारण।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामक ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ

0: दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन जस्टाक्यो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दिन के 1:05 हो रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम कानून की बातें। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मोटर वाहन अधिनियम पर जानकारी। प्रस्तुति है हरेंद्र आजाद की।
2: स्वागत है कार्यक्रम कानून की बातें में। मैं हूं हरेंद्र आजाद और आज हम बातचीत करेंगे मोटर वाहन अधिनियम के बारे में। क्या है अधिनियम, क्या कुछ खास है इस अधिनियम में, कब कैसे बदलाव हुआ। हमारे साथ आज एज एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, आप हैं श्री शरद कुमार जी। आप इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर हैं, वर्तमान में आप वैशाली में पोस्टेड हैं। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: जी धन्यवाद जी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में आया था
2: जी, पहली बार।
3: जी, भारत में सड़क परिवहन यातायात नियम, वाहनों के पंजीकरण और लाइसेंस की व्यवस्था के लिए नियंत्रण करने के लिए ये मुख्य कानून है
2: जी। तो इसमें बदलाव कब हुआ है?
3: देखा गया कि सड़क सुरक्षा और यातायात को बेहतर बनाने के लिए 2019 में इस कानून में बड़े संशोधन किए गए थे। उस नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस अधिनियम में जुर्माने की जो राशि थी वो कई गुना बढ़ाई गई। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो पहले 100 रुपए तक हेलमेट का कटता था अगर कोई बिना हेलमेट बाइक चला रहा हो, अब उस जुर्माने को बढ़ा के 1000 रुपए तक कर दिया गया है
2: जी।
3: अभी भी वातावरण को देखते हुए, चूंकि हम लोग इतने सजग हैं, पॉल्यूशन का फाइन जो कि बहुत कम था उसे बढ़ा के 10,000 तक कर दिया गया था, जो कि अभी फिर अलग अलग वाहन कैटेगरी में उसे कम किया गया है, 5,000 से लेके 1,000 रुपए तक किया गया
2: जी। और भी जो अन्य है बदलाव कुछ विशेष
3: जी,
2: जो आप जोड़ना चाहते
3: हैं? मुख्यतः जो सड़क सुरक्षा की बात कही गई थी 2019 में, हम उस पे गौर करना चाहिए हमें कि अगर हम 2023 का डेटा जो पब्लिश है उसको अगर हम देखते हैं तो 480,000 पंजीकृत दुर्घटनाएं हुई थी, और ये वो जो FIR हुआ या पुलिस संज्ञान में है या जिसे रजिस्टर किया गया। बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जो कि रजिस्टर नहीं किया जाता है जिसे। अब इन सिर्फ 480,000 में से ही 172,000 मौतें हुई थी, कैजुअल्टी हुई थी, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, और 462,000 के लपेट में इंजरीज हुई थी। तो इसको देखते हुए ये बदलाव जरूरी था, और इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए जो हमारे चलान का राशि है, जो समन का राशि है, उसे कई गुना तक बढ़ाया गया।
2: तो सर, ये आपने जो घटनाओं के बारे में जिक्र किया, घटनाओं का डेटा आपने बताया कि 2023 में क्या स्थिति थी, तो इसमें ज्यादातर घटनाएं कहाँ होती हैं?
3: जी, हमें एक मिसकंसेप्शन है कि ज्यादातर अच्छे रोड हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, NH हैं, उस पर दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर हम आंकड़ों का देखें तो 46% तक जो दुर्घटनाएं होती है वो अदर रोड्स पे होती है, जो ग्रामीण इलाके के सड़क होती हैं, जो छोटी सड़क होती हैं, गली मोहल्ले की सड़क। ज्यादातर हम लोग अगर किसी बाजार में चले जाएं फाइन मारने के लिए तो लोगों का कंसर्न रहता है, अरे सर हम लोकल हैं, बस सब्जी लाने जा रहे थे। तो ज्यादातर दुर्घटनाएं इन्हीं कारणों, क्योंकि लोग तैयार नहीं रहते हैं दूर जाने के लिए, बिना हेलमेट लिए मोटरसाइकिल उठाते हैं और चले जाते हैं बाजार में, और वहीं दुर्घटनाएं हो जाती
2: हैं। मतलब छोटी यात्रा को लोग हल्के में लेते हैं, आसपास में जा रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है हेलमेट का और सीट बेल्ट का जी। अगर सड़क दुर्घटना के मुख्य कारणों पर बात किया जाए तो कौन कौन से हैं?
3: मानवीय भूल, जिसे हम ह्यूमन एरर करते हैं, सबसे मुख्य कारण यही है। उसके अलावा कारण है जो कि जैसे रोड एनवायरमेंट, अचानक से रोड धस गया जी, या व्हीकल कंडीशन, अचानक से गाड़ी टूट गई। लेकिन फिर हम देखें कि रोड धसा या व्हीकल खराब हुआ तो इसकी भी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, जो वाहन चालक है उसको आभास होना चाहिए कि हाँ लग रहा है रोड ठीक नहीं है, तो वो आराम से चलाए या गाड़ी का मेंटेनेंस करे। तो कुल मिला के कहिए तो इन दुर्घटनाओं का जो कारण है वो मानवीय भूल है।
2: इसके इतर अगर हम बात करें तो और कौन कौन से मुख्य कारण हो सकते हैं दुर्घटनाओं के?
3: जी,

0: इसी पे हम मैं आपके साथ एक आंकड़ा शेयर करना चाहूंगा। अगर हम देखें कि ओवर स्पीडिंग एक ऐसा कारण है जिसके कारण 68.1% मृत्यु हुई है
1: जी
0: 2023 की ही बात करें तो। और ये ओवर स्पीडिंग के बाद जो दूसरा मुख्य कारण है वो है रॉन्ग लेन ड्राइविंग का, और वो है 5.5%। मतलब समझ लीजिए कि 60% से ज्यादा जो डिफरेंस है वो भी मृत्यु में, वो सिर्फ किस लिए है? ओवर स्पीडिंग। तो अगर हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर लें, अपने स्पीड लिमिट में चलाएं, जिस एरिया में जितनी स्पीड लिमिट निर्धारित है उसमें चलाएं, तो हम व्हीकल को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, दुर्घटना होने के कारण शून्य।
1: अगर स्पीड कंट्रोल है तो हमें लगता है कि उसके कई फायदे हैं। एक तो आप दुर्घटनाओं से भी बच जाते हैं और गाड़ी का लाइफ भी बढ़ जाता है, ईंधन का भी बचत होता है। हमारे श्रोता इस बात को बेहतर समझ रहे होंगे कि उनके यातायात के समय सबसे बड़ा दुश्मन कुछ है तो ओवर स्पीडिंग। जब भी आप गाड़ी चलाएं ध्यान रखें कि जो निर्धारित स्पीड लिमिट है उसके बाहर न जाए। सर आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि आम लोग जो ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग के दौरान हमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए?
0: अगर हम तीन चीजों का ख्याल रखें
1: जी,
0: अब हम कैटेगरी वाइज बांट देते हैं कि हम तीन चीज क्या क्या मैं बोलना चाहता हूँ। पहला तो हम क्या पहन रहे हैं
1: जी,
0: क्या हम अच्छे हेलमेट पहन रहे हैं? लोग तो आजकल ट्रैफिक चालान से बनने के लिए टोपी नुमा कुप्पा पहन के चल देते हैं कि चालान नहीं, चालान तो नहीं होगा, लेकिन खुदा ना खास्ता आप गिर गए तो पहला वो हेलमेट गिरेगा, वो दूर, अगर आपके सर में भी वो चिपका रह गया तो पहले वो टूट जाएगा और आपका सर टूटेगा
1: जी।
0: अगर अच्छी क्वालिटी का हेलमेट है तो वो आपके सर को भी बचाता है, टूटता भी नहीं है, और लोग अच्छी क्वालिटी का हेलमेट भी पहनते हैं तो उसे टाइट नहीं बांधते हैं तो उसका फायदा नहीं।
1: मतलब हेलमेट का बेल्ट भी लगाना,
0: बेल्ट लगाना जरूरी है, टाइट लगाना जरूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि आप गिरे और हेलमेट भी गिरा है लेकिन आपके सर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, तो वैसे हेलमेट लगाने का क्या फायदा? आपने देखा होगा कि गाड़ी चलाते वक्त लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, पैसेंजर भी अब अनिवार्य है कि उनको भी सीट बेल्ट पहनना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि गाड़ी की दुर्घटना होती है तो ड्राइवर स्टीयरिंग के सहारे बच जाता है
1: जी।
0: लेकिन जो पीछे
1: सपोर्ट होता है
0: लेकिन जो पीछे लोग होते हैं वो मोमेंटम की वजह से शीशा के बाहर गिर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो सीट बेल्ट सभी को पहनना जरूरी होता है। एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आजकल महिलाएं क्लचर पहनती हैं, वो क्लचर आइवरी की भी होती हैं, हार्ड प्लास्टिक की भी होती हैं, वो क्लचर ऐसे जगह लगी रहती है दिमाग के एकदम पीछे
1: जी।
0: वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर अचानक से ब्रेक लगा या दुर्घटनाएं हुई तो वो ऐसे सेंसिटिव जगह पे क्लचर पहनती हैं कि वो अगर चुभ गया तो वो मौत का कारण बन सकता है।
1: काफी छोटी बात है लेकिन काफी फायदे की बात है कि जो भी महिला यात्री अपनी यात्रा के दौरान हो तो उम्मीद है कि इस बात से सहमत होंगी कि अपने क्लचर के स्थान पे रबर का प्रयोग कर लें, बाल को अन्य चीज से बांध लें, अन्यथा वो क्लचर जो है काफी हार्ड होता है और दुर्घटना के दौरान चूरने का ज्यादा खतरा हो सकता है
0: जी। दूसरा चीज कंट्रोल, चूंकि हमने पहले बात किया 68.1% लोगों की मौत जो हो रही है वो ओवर स्पीडिंग की वजह से हो रही है, तो अगर हमने कंट्रोल कर लिया अपनी स्पीड को तो दुर्घटनाओं में कमी आ जाएगी। और तीसरा मुख्य कारण है ट्रैफिक नियमों का पालन करना, और ट्रैफिक नियमों का पालन जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ ड्राइवर को ही, पेडेस्ट्रियन जो चल रहे हैं, खासकर देखा जाता है शहरों में लोग जैसे घर से बाहर निकले अपना जो मुख्य सड़क है उसे पार करना है तो बीच में ही हाथ उठा दिए तो लगा कि सामने वाला देख लिया, ऐसा नहीं होता है। वो किस मोमेंटम में आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, उसका ध्यान है कि नहीं है आप पे, वो आपके ऊपर चढ़ा कर निकल जाएगा। तो कोशिश करना चाहिए कि जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करें, और जो ड्राइवर हैं उन्हें खास ध्यान रखना चाहिए कि आप जो जेब्रा क्रॉसिंग है उससे पीछे ही गाड़ी खड़ी करें, इससे आप चालान से भी बच सकते हैं और दूसरा जो पेडेस्ट्रियन है उनके लिए आसानी होती है पास करने में। पहला हो गया कि हम क्या पहन रहे हैं उसका ध्यान रखें, दूसरा कंट्रोल, हमारी स्पीड पे कंट्रोल होना चाहिए, और तीसरा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। अगर ये तीनों चीजें कर लें तो मैं बता रहा हूँ कि दुर्घटनाओं में बिल्कुल कमी हो जाएगी
1: जी।
0: और आजकल तो जो भी हमारे हाई रेजोल्यूशन कैमरा होते हैं, विश्वास मानिए आप अगर आधा किलोमीटर दूर भी हैं तो हम अपने कंट्रोल रूम से पता लगा लेंगे कि हाँ आप ट्रैफिक रूल अनफॉलो कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, और हम आपका चालान काट सकते हैं।
1: बहुत सही बात आपने बताया, कई लोग ये सोचते हैं कि हम कैमरा के पास जाएंगे तो स्पीड स्लो कर लेंगे। तो वहां बजे वहां ग्रीन दिखा दे, बस सिर्फ बोर्ड पर ग्रीन नहीं देखना है, पूरे जीवन को ग्रीन बना के रखना है। हम एक चीज और जानना चाहेंगे उत्सुकता।

0: बस क्या मौसम का भी इसमें कुछ योगदान है दुर्घटनाओं में?
1: जी, लोगों को लगता है कि खराब मौसम में दुर्घटनाएं होती हैं,
0: जी
1: बारिश हुई तो ज्यादा दुर्घटनाएं होती, लेकिन फिर डेटा की बात माने तो मैं आपको बता दूं, खराब मौसम या बारिश के में एक साल में अगर 37,000 दुर्घटनाएं होती हैं, तो जिस दिन आसमान साफ रहता है, मौसम सुहाना रहता है, उस दिन 3,65,000 दुर्घटनाएं होती हैं।
0: क्या बात है, सीधे विपरीत है।
1: विपरीत, और अगर आंधी तूफान हो, ओलावृष्टि हो रही है, तो उसमें 3,300 लपेट में दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये इस आंकड़े से ये बिल्कुल लेना देना नहीं है कि मौसम खराब होता है तो लोग सचेत हो जाते हैं। क्लियर मौसम में लोग लापरवाह हो जाते हैं, वो अपनी स्पीड पे कंट्रोल नहीं कर पाते और इसी कारण से दुर्घटनाएं होती हैं।
0: अब हम थोड़ी बात करते हैं कि यातायात सुरक्षित कैसे हो, इसको लेकर के सरकार क्या कदम उठा रही है, किस तरह से प्रावधान किए जा रहे हैं नए नए?
1: जी, अभी तक जो भी डिस्कशन हुआ हमारा, उसमें हमें एक चीज तो ये लगा कि जो ड्राइविंग कर रहा है उसकी एक अहम भूमिका हो जाती है इन दुर्घटनाओं में। तो जो हमारी सरकार है वो दुर्घटनाओं में कमी के लिए जो अपने ड्राइवर्स हैं उनकी ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। कई जगह कैंप लगते हैं, ट्रेनिंग कैंप लगते हैं, और एक विस्तृत ट्रेनिंग के लिए IDTR है हमारे पास, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग टेस्टिंग रिसर्च, जो कि औरंगाबाद में है। वहाँ 2 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक का कोर्स है जो कि ड्राइवर्स कर सकते हैं। साथ ही जो भी ड्राइवर्स ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड फैसिलिटीज हैं उसे सरकार ने फेसलेस कर दिया है। फेसलेस मतलब आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आपका लर्नर परमिट बन जाएगा, आप गाड़ी सीखने के बाद जब टेस्ट के लिए जाएंगे तो वहाँ भी कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, वो ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर है जहाँ आप गाड़ी पे बैठिए, लॉगिन कीजिए, गाड़ी चला के आइए, कैमरा अपने आप बता देगा कि आपने कहाँ कहाँ गलती की, कहाँ कहाँ नहीं गलती की, क्या अच्छा रहा आपका, और वो स्कोर कैलकुलेट करके आपको पास किया।
0: तो बड़ी फेल अच्छी और नई जानकारी है कि ये पूरे प्रांत में लागू है।
1: अभी ये औरंगाबाद और पटना में लागू है और जिला में इसकी व्यवस्था की जा रही है। एक ब्लैक स्पॉट का कंसेप्ट है। ब्लैक स्पॉट वो स्थान है जो कि 3 साल के अंदर अगर उस स्थान पे 5 से ज्यादा इंजरीज हो गई या एक्सीडेंट्स हो गए तो उसको ब्लैक स्पॉट कहते हैं। फिर उसके कारणों को देखा जाता है, क्या वहाँ लाइट नहीं थी इसलिए हुआ, या तीखा मोड़ था इसलिए हो गया, तो इन सब को दूर किया जाता है, तो सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है। तीसरा गोल्डन आवर का माना जाता है कि जो पहला घंटा है एक्सीडेंट के बाद वो जान बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो लोगों को प्रेरित करने के लिए, जो लोग पहले डर जाते थे एक्सीडेंट देख के भागते थे, लोगों को प्रेरित करने के लिए गुड सैमरिटन स्कीम लागू की गई है सरकार द्वारा। अगर आप मदद करते हैं उनकी तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि पुलिस परेशान करेगी, आपका सिर्फ काम इतना रहेगा कि जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए तब तक इंतजार करें, या उसको हॉस्पिटल जब तक आप पहुंचा नहीं देते तब तक आपकी जिम्मेदारी है, उसके बाद आपको कोई तंग नहीं करने वाला।
0: जी, थोड़ा सा गुड सैमरिटन के बारे में बताएं।
1: जी, गुड सैमरिटन को हम लोग एक टर्म दिए हैं, राहवीर, सरकार ने राहवीर, राह में जो वीर है वो उनका काम है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसे उसकी सूचना दें, एम्बुलेंस बुलाएं, उसकी मदद करें, हर संभव मदद करें। उसके प्रोत्साहन के लिए उन्हें 25,000 तक का इनाम दिया जाता है प्रोत्साहन राशि, और उन्हें 15 अगस्त या 26 जनवरी या किसी और अन्य इम्पोर्टेंट मौके पे उन्हें
0: सम्मानित
1: किया जाता है। साथ ही उसका जो एक्सीडेंट हुआ है उसके इलाज के लिए सरकार ने कैशलेस व्यवस्था PM राहत स्कीम के तहत कैशलेस ट्रीटमेंट का, तो
0: मतलब दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को लेकर के ये सोचने और डरने की बात नहीं है कि हम हॉस्पिटल ले जाएंगे तो हमें पैसा।
1: जी जी जी, बिल्कुल नहीं,
0: बिल्कुल मतलब ये सरकार के कानून है, गाइडलाइंस में है,
1: गाइडलाइंस
0: दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति पहुंचाता है तो अस्पताल उसकी निःशुल्क चिकित्सा करेगा और उसकी भरपाई सरकार करेगी।
1: बिल्कुल, उस नियम में यही है कि अगर आप 1.5 लाख तक जो ट्रीटमेंट का स्कीम है वो तो एट इंस्टेंट मिलेगा पर एक्सीडेंट, ठीक है, सरकार उसको बढ़ाती भी रहती है। अगर आपको एक्सीडेंट होता है, मान लीजिए किसी के पास एक्सीडेंट हो गया तो उसको क्या करना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। हमारे यहाँ MAC ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स, इनका काम ही है कि जो भी एक्सीडेंट हुए हैं उनको, उन केसेस को लाकर, चूंकि हमारे कचहरी कोर्ट कचहरी में बहुत लंबी लिस्ट है, वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है, तो इनको हटाकर और हम लोग ट्रिब्यूनल बना दिया गया। तो जब भी एक्सीडेंट हो तो पहला काम करें कि उस एक्सीडेंट व्यक्ति को जल्द से जल्द प्राथमिक उपचार मिले, हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और FIR रजिस्टर की जाए। FIR जब पुलिस रजिस्टर करती है तो EDAR करके एक एप्लीकेशन है, वहां पे वो लोग डाल देते हैं, और फिर वो ऑटोमेटिक प्रोसेस

0: चालू हो जाता है। वहाँ से जाएगा सिविल सर्जन के पास भी जाएगा, वहाँ पोस्टमार्टम करना जरूरी रहता है, पोस्टमार्टम की डिटेल उसमें डलेगी, फिर परिवहन विभाग के पास आएगा, यहाँ से उसे ट्रिब्यूनल में भेजा जाएगा। अगर मार कर व्यक्ति भाग गया जिसकी गाड़ी का नहीं पता, तो उसको 1-2 लाख तक का कंपनसेशन अमाउंट दे दिया जाता है। अगर वो अच्छा आदमी है, वो रुक गया, तो इंश्योरेंस कंपनी जो उस गाड़ी की इंश्योरेंस जिसने किया उसमें ये प्रावधान होता है कि वो उसको कंपनसेट करेगा।
1: मोटर वाहन अधिनियम के बारे में, सड़क सुरक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आप हमसे जुड़े, श्री शरद कुमार जी। आपने आकाशवाणी को अपने बहुमूल्य समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद।
2: कार्यक्रम कानून की बातें में अभी आप सुन रहे थे मोटर वाहन अधिनियम पर जानकारी, प्रस्तुति थी हरेंद्र आजाद की। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के 1:20 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अगला प्रसारण बस कुछ ही देर में।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। बनी है वैसी पंचायत से, गुड़िया देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: कर्ज किए हैं, बच्चा का खेल मैदान वाला बनवाए, उसके बाद गली बनवाए नाली, उसके बाद सरकार भवन बनवाए, उसके बाद रोड बनवाए, उसके बाद कचरा वाला। तो बहुत अच्छा लगा। पहले भी हमको भागलपुर में मिला था, फिर हम गया गए थे, हैदराबाद गए थे, वहाँ भी हमको सम्मान मिला। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 1:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म नो एंट्री के इस गीत से। आवाज है के और सुनिधि चौहान की, धुन बनाई अनु मलिक ने, बोल है समीर के।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पठिया पंचायत से ज्योति कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं ज्योति कुमारी, ग्राम पंचायत राज मठिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जितने सारे कार्यों का वर्णन हम सभी मुखिया जी इस प्लेटफॉर्म पे आके वर्णन कर रहे हैं, यह सारी की सारी छुपी रह जाती अगर अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान सहयोग करके हमारे धरातल को, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को यहाँ उभार कर एक मंच प्रदान नहीं करती। तो आज इस मंच पे आके हम सभी प्रतिभागी यहाँ पर अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस कर रहे हैं, और इसके लिए फिर से एक बार अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे फिल्म आजाद में। धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने और लिखा था आनंद बख्शी ने। आकाशवाणी पटना पर आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं लीजिए सुनिए कुमार सानू के साथ अलका याग्निक को फिल्म कसूर में। धुन बनाई है नदीम श्रवण ने और बोल हैं सबीर के।

आकाशवाणी पटना पर आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है फिल्म जब प्यार किसी से होता है। लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज, जतिन ललित का संगीत और बोल हैं आनंद बख्शी के।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

सुखेंदर सिंह, शेखर राव जियानी और हिमानी कपूर की आवाजों में आप सुन रहे थे फिल्म बचना है हसीनों से लिया गया ये गीत। धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने और बोल थे मजरूह सुल्तानपुरी के। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता, स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 2 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए हैं। श्री चौधरी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। जानकारी के अनुसार वे राज्य में प्रस्तावित विभिन्न सड़क परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री का पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना मेट्रो परियोजना की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने परियोजना से जुड़े अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ ही प्रत्येक चरण के लिए स्पष्ट समय सीमा तय करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग और प्रगति की लगातार समीक्षा पर भी जोर दिया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। श्री पासवान ने महाराष्ट्र के परभणी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवाओं से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को नौकरी मांगने की बजाय रोजगार देने वाला बनना चाहिए। श्री पासवान ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और भारतीय खाद्य उत्पादों को वैश्विक गुणवत्ता के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर आज देश प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की क्षेत्रीय इकाई की ओर से पटना के कर्पूरी सदन में आयोजित विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन उप महानिदेशक रोशन साहू ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री साहू ने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य के अधिकतर भागों में मॉनसून की सक्रियता से मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में अनेक स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान मधुबनी, सुपौल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, सारण, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण समेत कई जिलों में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश की आशंका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इधर पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी सुबह से बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही में सबसे अधिक 196.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। हमारे अररिया संवाददाता ने बताया है कि जिले में विभिन्न स्थानों पर देर रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई स्थानों पर जल जमाव की भीषण स्थिति बन गई है। साथ ही शहर में बीएसएनएल सेवा भी प्रभावित हुई है। केंद्रीय चयन परिषद की कल संपन्न सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान कदाचार के आरोप में मुंगेर पुलिस ने सॉल्वर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जिले के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवागढ़ी उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र में छापेमारी के दौरान यह सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पकड़े गए आरोपित राहुल से पूछताछ की जा रही है। शिवहर जिले के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत छपरा सिरहा टोला में सिलेंडर विस्फोट की घटना में 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। विस्फोट से लगी आग ने आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इधर पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत करमली चक स्थित एक वेयर हाउस में आज सुबह अगलगी की घटना में 50 लाख रुपए मूल्य से अधिक की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। अग्निशमन दस्ते की 21 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र अंतर्गत अंग्रेजी ढाला के पास राष्ट्रीय उच्च

0: पथ संख्या 31 पर दो चार पहिया वाहनों के आमने सामने टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई, वहीं पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला सम्राट चौधरी आज दिल्ली के दौरे पर रवाना हो गए हैं। जनाब चौधरी मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान वो रियासत में मुजवजा मुख्तलिफ सड़क प्रोजेक्टों के सिलसिले में मरकजी वजीर से गुफ्तगु करेंगे। वजीर आला का पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ भी मुलाकात का प्रोग्राम है। वज़ीराला सम्राट चौधरी ने आज पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की पेश रफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीराला ने प्रोजेक्ट से वाबस्ता अफसरान को तामीराती कामों में तेज़ी लाने के साथ ही हर मरहले के लिए वाज़ह मुद्दत तय करने की हिदायत दी। वज़ीराला ने प्रोजेक्ट की मुस्तकिल निगरानी और पेश रफ्त के जायज़े पर जोर दिया। मरकजी वजीर फूड प्रोसेसिंग चिराग पासवान ने कहा है कि फूड प्रोसेसिंग की सनअत किसानों की आमदनी बढ़ाने, देही इक्तसादी निज़ाम को मजबूत करने और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने में अहम किरदार अदा कर रही है। जनाब पासवान ने महाराष्ट्र के परभनी में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए नौजवानों से फूड प्रोसेसिंग सनअत से वाबस्ता होने की अपील की। उन्होंने कहा कि और नौजवानों को नौकरी मांगने की बजाय रोजगार देने वाला बनना चाहिए। जनाब पासवान ने कुदरती खेती को फ़रोग देने और हिंदुस्तानी खुरदनी पैदावार को आलमी मेयार के मुताबिक बनाने पर भी जोर दिया। कौमी योम शुमारियात के मौके पर आज रियासत में कई प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। कौमी शुमारियात दफ्तर की रीजनल इकाई की तरफ से पटना के कर्पूरी सदन में मुनक़िद खसूसी प्रोग्राम का इफ्तिताह डिप्टी डायरेक्टर जनरल रोशन लाल साहू ने किया। इस मौके पर जनाब साहू ने अपने खिताब में कहा कि कौमी शुमारियात मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से कल हुए सिपाही भर्ती इम्तहान के दौरान बदनवानी के इल्ज़ाम में मुंगेर पुलिस ने सॉल्वर गैंग के एक रुकन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ज़िले के रामनगर थाना इलाके के तहत नवागढ़ी हाई स्कूल इम्तहान मरकज पर छापेमारी के दौरान ये गिरफ्तारी की। पुलिस सुपरिटेंडेंट सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पकड़े गए मुलजिम राहुल से पूछताछ की जा रही है। रियासत के बेशतर हिस्सों में मानसून के सरगर्म होने से दरमियाना और शदीद बारिश दर्ज की गई। महकमा मौसमियात ने अगले तीन दिनों तक रियासत के शुमाल मगरिब, शुमाल वस्त, जुनूब मगरिब और जुनूब वस्त हिस्सों में मुतअद्दद मुकामात पर तेज़ हवा के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इस दौरान मधुबनी, सुपौल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, सारण, गोपालगंज, मगरबी चंपारण समेत कई ज़िलों में मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इधर पटना और आसपास के इलाकों में भी सुबह से बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। महकमे से मिली इतला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही में सबसे ज़्यादा 196.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हमारे अररिया नुमाइंदा ने बताया है कि ज़िले में मुख्तलिफ मकामात पर देर रात हुई मूसलाधार बारिश से कई मकामात पर आबी जमाव हो गया है। बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना इलाके के तहत अंग्रेजी ढाला के पास कौमी शाहरा नंबर 31 पर दो गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई, वहीं पांच लोग शदीद तौर से जख्मी हो गए। इन सभी का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने हादसे का शिकार हुई गाड़ियों को सड़क से हटाकर आमदोरफ्त बहाल कर दी है। शिवहर जिले के तरियानी छपरा थाना इलाके के तहत छपरा सिराहट टोला में सिलेंडर ब्लास्ट के वाके में चार लोग झुलस गए। इस वाके में आग लगने से कई घर आग की जद में आ गए। इधर पटना के दीदारगंज थाना इलाके के तहत करमली चक वाके एक वेयर हाउस में आज सुबह आग लग जाने से 50 लाख रुपए से ज्यादा का कीमती सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की 21 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के सबब का पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दिन के दोपहर के 2:10 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना।

कर्मचारी चयन आयोग SSC 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के कुल 3,522 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL अप्रेंटिस के कुल 550 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जून 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bfsissc.com से प्राप्त किया जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर PO के कुल 1500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.sbi.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अगला प्रसारण बस कुछ ही देर में है।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दिन के 2:15 होने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है।
1: दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजंस से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
4: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध

0: कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकट के क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। उच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के M नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से NCP नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से AIADMK विधायक MR विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष JCD प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले AIADMK विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
3: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें BLOs एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं वो सभी पे BLOs अपॉइंटेड हैं, तो सभी BLOs को उनके इनूमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा से GSFC विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर

0: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
1: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @iirnewshindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
2: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव

80.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 2:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत की शुरुआत हम कर रहे हैं सोनू निगम के इस गीत से, जिसे हमने लिया है फिल्म कोई आपसा से। धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने और बोल हैं समीर के।

आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं लीजिए सुनिए अलका याग्निक को कुमार सानू के साथ फिल्म गुलाम में।

0: कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

शता हूं अगला गीत हमने लिया है फिल्म एहसास से। आवाज है शंकर महादेवन की, धुन बनाई है आनंद राज आनंद ने, और बोल हैं प्रवीण भारद्वाज के।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

जावेद अख्तर के बोल, अनु मलिक का संगीत, अभिजीत और श्रेया घोषाल की आवाजों में आप सुन रहे थे फिल्म मैं हूं ना से लिया गया ये गीत। आकाशवाणी पटना पर आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है फिल्म जन्नत से, आवाज है के की।

सईद कादरी के बोल, प्रीतम का संगीत, केके की आवाज और फिल्म जन्नत के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दिन के 3 बजने को हैं। इसी के साथ हमारी आज की प्रथम सभा समाप्त होती है। हम पुनः आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे।

0: सखी सहेली सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है नेहा शर्मा। तो नेहा, तुम्हें भी बहुत प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, है ना।
1: मंजरी जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार। बहुत दिनों के बाद तो मिल ही रहे, जैसे बारिश बहुत दिनों के बाद हमसे मिल रही है।
0: बिल्कुल। और देखो, कहीं कहीं पे देखो बारिश अभी भी नहीं हुई है, तो वो लोग गर्मी से परेशान है। तो बस लगता है कि यही प्रार्थना रहती कि सब जगह पे बारिश हो, जिससे सबको आराम मिले
1: जी,
0: है ना। और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी पानी उन्हें मिले, वो स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, हरे भरे रहें। और आज तुमने देखा नेहा कि सुबह सुबह हमारी कितनी सारी, हमने देखा कितनी सारी लेडीज जो थी वो एकदम तैयार होके जा रही थी और हाथ में पूजा की थाल भी थी
1: जी।
0: तो तुम समझ गई होगी कि आज क्या विशेष खास दिन था उन लोग के लिए।
1: बिल्कुल, आज वट सावित्री का व्रत है जिसमें बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, बरगद के वृक्ष की। और कह सकते हैं प्रकृति से जुड़ सकते हैं हम इस तरह, जैसे बरगद के जो पेड़ हैं वो सालों साल रहते हैं, उनकी जड़ें इतनी ज्यादा धरती पे के साथ समाई होती हैं कि सालों साल रहते हैं। तो एक तरह से प्रकृति को पूछकर अपने पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है आमतौर पर। और गुजरात में भी ये पूजा, महाराष्ट्र और गुजरात में ये पूजा पूर्णिमा के दिन में की जाती है, बाकी जगह अमावस्या, मतलब 15 दिन पहले हो चुकी है।
0: हाँ, उस साइड में अमावस्या में होती है, यहाँ पर आज के दिन होती है। तो पेड़ों का जो महत्व है वो तो देखो, बरगद की जो जटाएं होती हैं उनसे भी कई सारे वृक्ष उनके निकलते हैं, पनपते हैं पौधों में, और ऑक्सीजन देता है ये पेड़। तो पहले के कहा जाता कि घर से निकल के औरतें जाएंगी तो वहाँ पूजा करेंगी, तो जब हम किसी पेड़ की पूजा करते हैं तो उसको काटा नहीं जाता है, तो इस तरह से पेड़ की रक्षा भी होती है। तो कहना चाहिए कि आज के दिन हम अपनी सभी बहनों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, है ना नेहा
1: जी। बिल्कुल, बधाइयां हमारी ओर से। और क्या क्या विषय हम लेकर आए हैं आज, ये भी बता दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो प्रादेशिक व्यंजन में जो हम आज लेके आए हैं, प्रयाग उत्तर प्रदेश की दाल की कचौड़ी और आलू की रसेदार पतली पतली सब्जी जो होती है वो, और समोसा छोले चाट।
1: देखिए, तुरंत बधाई देने के बाद, व्रत की बधाई देने के बाद जब व्यंजन की बात कर दी गई है तो सखियां थोड़ा हमें माफ कर देंगी। और इसके साथ साथ विषय है विवाह बंधन नहीं रिश्तों को समझें, इस विषय पर भी हम बात करने वाले हैं। और एक गंभीर मुद्दे पर भी बात करने वाले हैं, वो है व्यसन, जो कि एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है।
0: और कथा सुधा के अंतर्गत आज हम सुनेंगे एक आज की कसर, ये कहानी सुनेंगे। लेकिन जैसे कि मौसम ने करवट ली है, यहाँ पर ले ली है और जहाँ पे अभी नहीं ली वहाँ पर भी लेगी, तो क्यों ना पहले एक गीत सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं।
1: ये गीतों के माध्यम से हम हर जगह बरसात को न्योता दे रहे हैं।

0: तो मंजरी जी, ये बात तो हमने कर ली कि बरसे फुहार हर जगह, और अब क्या किया जाए?
1: अब हम सबको कथा सुधा में कहानी जो है हमारी वो सुनाएंगे, एक आज की कसर।
0: जी
1: तो लीजिए सब लोग कहानी सुनिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें,

0: कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक आज की कसर।
2: सारे नगर में महाशय यशोदा नंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थीं, मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसे कहते हैं। उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्ज्वल कर दिया। अब कौन ये कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं हैं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपए दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने ना किया था। आज हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं।

0: महाशय यशोदा नंद के दो पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था, और आप सब समझ चुके कि बिना कुछ दहेज लिए। आज तिलक था, शाहजहांपुर से स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे, लोग जमा हो गए थे, महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदा नंद को बधाइयां दे रहे थे।
1: वाह भाई यशोदा नंद, तुमने तो कमाल कर दिया।
2: अरे जनाब, ये कहिए कि झंडे गाड़ दिए?
1: हाँ,
2: अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम लगा लेते थे।
1: हाँ, और कैसे कैसे बहाने गाड़े जाते हैं। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है, ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं, बच्चे की मां नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है तो कोई और किसी खर्राट पर।
2: अजी, कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए। मानो उन्होंने ये रुपए किसी बैंक में जमा किए थे।
1: खूब समझ रहा हूं, आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ है?
2: अरे भाई साहब, लड़की वालों का क्या दोष है सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है।
1: सारा दोष ईश्वर का, जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों?
2: मैं ये नहीं कहता न सारा दोष लड़की वालों का है न सारा दोष लड़कों वालों का, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ न दे तो उसे यह शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए, बताइए।
1: हाँ, आपका ये प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से ये शिकायत नहीं होनी चाहिए।
2: तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है।
1: हाँ हाँ, सही है।
3: ये भी लेम एक्सक्यूज है। मैंने

0: भेज नहीं लिया है, लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा?
1: महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है।
2: 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है।
0: हाँ, मेरा तो ये निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक भी नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूं। मैं उसे तोड़ना चाहूं भी तो आत्मा तोड़ने न देगी। मैं सत्य कहता हूं, ये रुपये लूं तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच भी ना सकूं।
1: आपके कॉन्फ्रेंस आपको सभापति न बनाए तो उसका घोर अन्याय है।
0: हाँ, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्निशन हो या ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं।
3: इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने के लिए तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ठाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहां महफिल में महाशय यशोदा नंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की।
0: पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था महाशयों। कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरोनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरोनी क्या चीज है, पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। ये वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रणक्षेत्र भेजती थीं। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूं, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए।
4: मेरे मन में एक शंका है, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे?
0: अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता। और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। ये ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर ये सब बुर्द फरोश हैं।
3: व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने लड़के परमानंद को मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और एक जेब से कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा।
5: प्रिय बंधुवर नमस्कार, आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुंचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह ना होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता कर

0: सकता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनित अनुरोध है कि 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय किया जाए।
1: महाशय यशोदा नंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परसने का आदेश करने गए थे, निकले तो ये वाक्य उनके कानों में पड़ा। चेहरा फक हो गया, झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले,
2: नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? ये तो किसी वकील का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। ये तू कहां से उठा लाया? शैतान जा वो कागज ला जो मैंने तुझे लिख कर दिया था।
3: पढ़ने दीजिए, इस तहरीर में जो लुत्फ है वो किसी दूसरी तकरीर में ना होगा।
4: सही बात है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले।
3: भाई अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला।
4: वाह वाह वाह वाह, यहाँ भी चलते हुए।
2: अरे बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। अरे बैठिए ना आप लोग, बैठिए बैठिए।
4: बेटा परमानंद, जरा यहाँ तो आना। सुनो, तुमने ये कागज कहाँ पाया?
0: बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख गए थे, मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना, अब बेकार मुझसे खफा हो रहे हैं।
2: वो ये कागज था, मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था। तूने ड्रॉर में से क्यों निकाला इस कागज को?
0: मुझे मेज पर नहीं मिला।
2: तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉर क्यों खोला? देखो आज मैं तुम्हारी कैसे खबर लेता हूँ, तुम भी याद करोगे।
3: अरे भाई ये और क्या है, इसी को तो लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक नाम भी बनो।
4: शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, समझे? धोखाधड़ी से नहीं।
3: मिल तो गया था पर बस एक आंच की कसर रह गई।
4: सच बताऊं, ईश्वर पाखंडियों को यों ही दंड देता है।
1: ये कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदा नंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते और डंडा तौलकर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी जो खो दी थी। मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया, गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूं टिप्पणियां करते जा रहे थे,
3: ईश्वर ने मुंह में कैसी काली मां लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत ना दिखाएगा।
5: ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं, मुझे यही आश्चर्य है। लीना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? ये क्या कि माल चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ।
4: मक्कार का मुंह काला।
3: हाँ, यशोदानंद पर बड़ी दया आ रही है, बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलाई खुल ही गई, बस एक आंच की कसर रह गई।
6: एक आज की कसर, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आपने सुनी कथा सुधा में। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकार रेणु चतुर्वेदी, जी श्याम, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो मंजरी जी, क्या संदेश प्रद कहानी थी?
7: बहुत अच्छी लग रही थी सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमारे सभी साथियों को भी बहुत पसंद आई होगी, है ना? तो अब सुनते हैं गीत, उसके बाद हम अपने विषयों पर चर्चा करेंगे।
6: जी।

0: तो मंजरी जी, सब गीत सुन लिए, कहानी सुन ली, लेकिन बातें कब होंगी ये बताइए।
1: भाई बातें तो हमारे जो विषय है व्यसन एक गंभीर समस्या है नेहा, और आज के समय में जो ये नशा है केवल एक बुरी आदत नहीं बल्कि समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है,
0: जी।
1: और विशेष रूप से युवाओं युवतियों में कुछ लोग इस आदत को जो है वो आधुनिकता स्टाइल और फैशन का प्रतीक मानने लगे हैं, और नई पीढ़ी जिसे जेंजी का नाम दिया गया है वो इन आदतों को हाई सोसाइटी के संग स्टेटस सिंबल मान रही है। उसे लगता है कि ये जो आदत है इसको करने में कोई बुराई नहीं है, ये तो मॉडर्न समाज का फैशन है। देर रात तक पार्टी क्लब रिसॉर्ट्स में दोस्तों संग मादक पदार्थों का नशीले पदार्थों का सेवन करना, डांस करना, जश्न मनाना, उनको लगता है कि बस एक तो ये तो एक जस्ट एक एंजॉयमेंट है, फन है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस आदत को कभी फैशन नहीं माना जा सकता है, ना ही ये हो सकता है, और ये एक ऐसा व्यसन है जो धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, करियर और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में तो कई लोग दोस्त के दबाव में आके या फिर दिखावा होता है या कोई कभी कभी जिज्ञासा होती है या तनाव हो जाता है तो उससे बचने के लिए मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तम्बाकू या अन्य नशीले पदार्थों का वो सेवन करते हैं, और लगता है कि उनका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक इससे दिखाई देगा और स्वीकार किए जाएंगे लोगों के बीच, जैसे लोगों के बीच वो रह रहे हैं। लेकिन तथाकथित ये जो फैशन है धीरे धीरे आदत और फिर लत में बदल जाता है, और ये जो लत है वो बड़ी नुकसान करती है, जैसे कि आपने कहा स्वास्थ्य पर नुकसान है, शरीर के साथ साथ मानसिक संतुलन भी इससे प्रभावित होता है, निर्णय लेने में बहुत ही परेशानियां आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, आर्थिक समस्याएं भी पड़ती हैं, परिवार में हो तो तनाव पैदा हो जाता है, कई बार इसकी वजह से अपराध, सड़क दुर्घटना और हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इससे संबंधित और बातें करेंगे, लेकिन एक अंतराल ले लें।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम
1: सखी सहेली, और बातें चल रही थी कि हम ये जो गंभीर समस्या है व्यसन की, हाँ। तो नेहा, इसमें क्या होता है कि जब ऐसी लत को आप लेकर के चलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसके साथ साथ आप रील बनाने लग जाते हैं, वीडियो बनाकर, हाँ। ब्लैकमेल करना भी एक आदत शुमार हो जाती है लोगों की, और शोषण करना जैसी बातें कितनी आए दिन होती रहती है, हम खबरों में भी देखते हैं, और इससे वो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठ हैं। लेकिन हमारे जो युवा युवतियां हैं, वो इतनी न्यूज सुनने के बाद भी, समाचार सुनने के बाद भी, वो लोग जागते नहीं, जागरूक नहीं होते, सतर्क नहीं होते कि उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए, हाँ। और सोचो उन माता पिता पर क्या बीतती होगी जब इस स्थिति में उनका बेटा या बेटी फंस जाते हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है, उनके अच्छा नहीं लगता है कि परिवार की इस तरह से सब जगह वैसी बातें हो रही हैं उनके बारे में। तो बच्चों को ये चीज़ सोचना चाहिए, और इसके लिए क्या है कि आप इसको फैशन, मतलब अगर मानते हैं तो बहुत ही गलत बात है, ये फैशन नहीं है, फैशन आप और चीज़ों का कीजिए, लेकिन ये चीज़, इन चीज़ों से आप दूर रहिए, और अपनी अपनी जो अच्छी शिक्षा है, जो आपको पिता माता चाहते हैं कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, तो उस तरफ ध्यान दीजिए, आप अच्छी शिक्षा लीजिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, खेल संगीत साहित्य और रचनात्मक कार्य कीजिए, जिससे कि आपका नाम रोशन है, ना कि आप इस वजह से आपके नाम को कहा जाए कि ये बच्चा गलत लत का शिकार है, ऐसा ना करें।
0: और कई बार इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि परिवार में, विद्यालय में, समाज में, सब हम मिलकर अगर युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के बारे में अगर हम बताएं, या मित्रों का सही चुनाव कैसे करना चाहिए, या उनका जो तनाव है, तनाव तो सभी को होता है, तो तनाव का सकारात्मक रूप से कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे खुद को आत्मसंयमित हो सकते हैं कि नहीं, जो अगर हमारे साथी नशा कर रहे हैं या ऐसे लोगों के आसपास हम हैं या ऐसी चीजें हमें आकर्षित करनी है, तो कैसे खुद को हम ये बताएं कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, तो हमें इससे बचना है। तो इसके लिए आत्मसंयम बहुत ज़रूरी है। और जब हम देखते हैं कि क्या आजकल अगर हम देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो ये व्यसन है, नशा है, वो एक नई पहचान की तरह आते जा रहा है, कि मान लीजिए सिगरेट है या नशीले पदार्थ हैं, तो उनका सेवन करना आधुनिकता मानी जाती है, ऐसा लगता है कि वह कितनी अच्छी तरह से, कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा युवाओं का जो नज़रिया बदल रहा है, उसके लिए ही वो उस तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फिर अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके तो पैकेट्स में ही सारी लिखे होते हैं क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके, और अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम ही हैं जो आसपास भी दिख जाएंगे अगर वो देखते हैं, तो बहुत सी गंभीर समस्याएं होती हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि स्टेटस है या कूल दिखते हैं हम इससे, तो ये जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया के जरिए या फिल्मों के जरिए कई बार, क्योंकि फिल्मों में भी बताया जाता है कि किसी खास किरदार को दिखाने के लिए उस तरह की चीजें करना लगता है उन्हें जरूरी, तो इस वजह से वो पूरा जो एक शुरुआत में बताया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी काम वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, एक किरदार को दिखाया जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो इस किरदार में आपको क्यों ढलना है,
1: क्यों ढलना है? और नेहा, जब कोई इस तरह की चीजों को लेता है, तो उसका जो धुआं है वो सामने वाला अगर नहीं लेता है, तो उसके वो सांस तो ले रहा है ना, तो उसके लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके फेफड़ों को भी नुकसान हो रहा है, आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ दूसरे को भी नुकसान हो रहा है। अब घर में आप अगर आप ले रहे हैं, तो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चों को भी लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को इससे क्षति होती है। तो हमारे जो युवा बच्चे युवतियां हैं, उनको कहना चाहिए कि वो सतर्क रहें, इस तरह की आदतों से दूर रहें। और हमारे साथी भी देखो लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन गंभीर मानसिक बीमारी है, जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बाधित करता है। किसी को धूम्रपान, तंबाकू सेवन या कैफी पदार्थ पीने का व्यसन हो जाता है, जो शरीर और दिमाग को काफी नुकसानदायी होता है। आजकल एक नया व्यसन चल रहा है मोबाइल का, जिसका ज्यादा उपयोग करने से आंखों के साथ गर्दन के लिए भी काफी नुकसानदेह हो सकता है। व्यसन कोई भी हो, उनके अधीन होने में खुद का नुकसान ही होता है, इसीलिए इससे दूरी बनाने में ही समझदारी है। अगर आपको व्यसन रखना है, तो रेडियो का रखिए विद भारती पर मनभावन गीत संगीत, सुनना सबसे बड़ा फायदेमंद।

0: होगा। तो बहुत अच्छी सी बात आपने अंत में लिख दी है, तो बच्चों को सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो कुछ अच्छी चीज़ों का हम, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर लत लगती है तो वो ऐसे, हालांकि लत को बुरी चीज़ों बुरी आदतों के साथ ज़्यादा जोड़ा जाता है, फिर भी अगर हम जोड़ रहे हैं हमारे साथी कि संगीत के साथ आप कर सकते हैं या पढ़ने के साथ अलग अलग किताबों का आप शौक पाल सकते हैं, उसके प्रति आप उतने ज़्यादा दीवानगी पाल सकते हैं कि बस
0: बिल्कुल
1: उसको आप, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो फिर भी आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा।
0: बिल्कुल
1: हमारे एक साथी लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन समस्या है जो आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, जिनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर शामिल है, और इसमें मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित विकार, ये दो मुख्य प्रकार उन्होंने बताया व्यसन के, और व्यवहार संबंधी व्यसन। तो इसका इलाज लेकिन संभव है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इलाज कर लेना चाहिए, यानी कि व्यसन मुक्ति के भी बहुत से केंद्र हैं वहां अगर आप जाकर, क्योंकि अगर आपको आदत हो गई तो उसे छुड़ाना भी आवश्यक है, तो
0: बिल्कुल
1: एक अच्छी तरह से अगर आप छुड़ाते हैं तो आसानी से आप उससे बच सकते हैं। वहीं वो कह रहे हैं कि मस्तिष्क का एक दीर्घकालिक रोग है जो सीखने और बार बार होने वाले व्यवहारों को प्रभावित करता है, इसे आमतौर पर किसी विशेष पदार्थ पर निर्भरता के रूप में पहचाना जाता है जो आदतन उपयोग को प्रेरित करता है, लेकिन अन्य बाहरी कारकों जैसे घटनाओं से भी संबंधित ये हो सकता है। जैसे इसके लक्षण उन्होंने बताते हुए लिखा है कि तीव्र लालसा होती है, आत्मनियंत्रण खो सकते हैं, वापसी के लक्षण होते हैं, यानी कि अगर एक बार आपने छोड़ दिया, उनका जो भी मूल
0: बिल्कुल
1: तत्व जो कहना चाह रहे हैं, तो एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो खुद को उसी स्थिति में बनाए रखना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि आपके मन में फिर से वो लालसा हो सकती है कि एक बार फिर से क्यों ना उसे चखा जाए या फिर से क्यों ना उस ओर बढ़ा जाए, तो
0: हाँ
1: वहां आत्मसंयम रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: छोड़ना फिर भी आसान है लेकिन छोड़े रहना
0: छोड़े
1: थोड़ा
0: रहना
1: मुश्किल है, तो
0: मुश्किल
1: वहां
0: है
1: संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। और अगर आप मन में ठान लेंगे तो आप कर भी सकते हैं, उससे दूरी
1: जी
0: बना भी सकते हैं। हमारे साथी और लिखते हैं कि व्यसन एक गंभीर समस्या है, स्मार्टफोन का व्यसन एक बड़ी चुनौती है। स्वयं स्वयं शिस्त और सेल्फ कंट्रोल एक ही उपाय है। जिन्होंने ये फोन बनाया था उनको भी ये बात पता थी, उन्होंने एक राक्षस बना दिया है। 3-4 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देखता हूं तो दुख होता है। चर्चा के इंतजार में इन्होंने लिखा है। कथा सुधा एक आज की कसर सुनेंगे इन्होंने, तो वो तो हमने सुना
1: बिल्कुल,
0: ही दी
1: तो ये सब
0: है
1: तो
0: ना।
1: हमने सुन लिया, लेकिन एक गीत भी तो सुने।

0: तो देखो
1: जीवन
0: भाई,
1: की बात बताता है ये गीत कितना अच्छा मंजे जी है ना
0: बिल्कुल, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना ये बहुत बड़ी बात है। इस
1: जी।
0: गीत से भी संदेश मिलता है। और देखो, जब विवाह जो है वो बंधन नहीं, रिश्तों को समझने का सबसे सुंदर एक सफर है। अक्सर लोग विवाह को बंधन कह देते हैं नेहा, लेकिन सच तो
1: हाँ
0: ये है कि विवाह किसी को बांधने का नहीं, बल्कि दो अलग अलग व्यक्तियों को समझने और स्वीकार करने का नाम है। ये ऐसा रिश्ता है जहाँ केवल दो लोग ही नहीं, बल्कि दो परिवार, दो संस्कृतियां, दो आत्मीय और दो सोच एक साथ चलना सीखती हैं। और विवाह का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं, बल्कि एक दूसरे की पहचान का सम्मान करना है। जहां प्रेम हो, भरोसा हो, विश्वास हो और संवाद हो, वहां विवाह कभी बंधन नहीं लगता है। बंधन तो तब महसूस होता है जब रिश्ते में अधिकार अधिक और अपनापन कम हो जाए, है
1: वाकई
0: ना?
1: मंजरी जी। और एक सफल वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो उसकी नींव ही इस बात पर है कि जो पति पत्नी हैं वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें बल्कि एक दूसरे को समझने की और स्वीकार करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति अपनी परवरिश, अपनी सोच और अनुभवों के साथ ही आता है और इसलिए मतभेद होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। कहीं हो
0: बिल्कुल,
1: सकता है वो कुछ अलग काम करते हो, आप कुछ अलग तरह से जीवन जी रहे हो, तो ये समझिए कि उनकी उनकी वो आदतें हैं। एक खास
0: बिल्कुल,
1: उम्र तक आप पहुंच चुके हैं और वो भी, तो एक जो आदतें हैं वो नहीं बदलती हैं, तो उन्हें
0: बिल्कुल,
1: स्वीकार जितनी जल्दी किया जाए
0: वो
1: वही
0: भी अच्छा
1: सब
0: है। और
1: है
0: दोनों को
1: जी।
0: पहल करनी पड़ती है इस
1: हाँ
0: रिश्ते में। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब छोटी-छोटी बातों पर संवाद होता है, जब गलती होने पर अहंकार नहीं बल्कि क्षमा आगे आती है, और जब वो खुशी के साथ साथ कठिन समय भी में नेहा एक दूसरे का हाथ
1: हाँ
0: थामे रहते हैं, कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाए, झूठ नहीं बोले, हमेशा सच बोले। यदि कोई अपनी लाइफ में तीसरा दखल देने की सोच रहा है तो उसके बारे में पति को बताए, जिससे मुसीबतों से बचा जा सकता है। यानी कि विवाह को कोई कोई जो है वो कैद नहीं है, बल्कि एक ऐसी साझेदारी है जहां दोनों का सम्मान समान सम्मान होता है, समान अधिकार है, और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। इसमें मैं से अधिक हम का भाव होता है, लेकिन हम बनाते हुए किसी को मैं खोना भी नहीं चाहिए। यानी
1: जी
0: जब शादी के लिए वो समय आए, तो जब शादी कर रहे हैं तो उसको निभाने के बारे में सोचना चाहिए। ये
1: जी
0: नहीं कि आज किया और कल हम अलग हो रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है
1: जी
0: ना?
1: जहां तक संभव हो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक छोटी सी
0: हाँ,
1: बात पर आपने इसे बहुत बड़ा बना लिया। आपको हर पहलू का, हर नजरिए को देखना
0: बिल्कुल,
1: जरूरी है और उसे उस सोच के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा हुआ जड़तारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है। उसे तहे दिल से निभाना पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है। दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। और उन्होंने तो वो भी कहा, वट पूर्णिमा की पूजा भी आज है जो प्रेम, समर्पण, त्याग और आत्मविश्वास की पवित्र सीख देती है
0: क्या बात
1: और
0: है
1: वैवाहिक बंधन से जुड़ी हुई ये
0: जी,
1: बहुत ही अच्छी परंपरा है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी एक लिखते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि दो दिलों, दो परिवारों और दो जीवन यात्राओं का सुंदर मिलन है। इसे बंधन कहना उचित नहीं, क्योंकि सच्चा विवाह प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर टिका होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, सपनों और परिस्थितियों को समझते हैं, तभी उनका रिश्ता मजबूत बनता है। जीवन में मतभेद आ सकते हैं, लेकिन संवाद, धैर्य और सहयोग हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ एक दूसरे को बदलना नहीं, बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना है। इसलिए विवाह बंधन नहीं, बल्कि रिश्तों को समझने, संजोने और प्रेम से निभाने की एक खूबसूरत यात्रा है नेहा।
1: वही हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह का बंधन का मतलब बंधन नहीं है, अपने रिश्ते को समझें। कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं पर शादी के बाद नए रिश्तों को अपना नहीं पाते, खासकर कन्या। वो लोग शादी कर लेती हैं ससुराल को और ना ही अपने सास ससुर को जल्दी अपना पाती हैं, समय लगता है। रिश्ते नहीं समझती बल्कि एक बंधन समझती हैं, अब हम इस रिश्ते से बन चुके हैं। लेकिन वो सच्चे दिल के रिश्ते हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये नहीं समझते कि अरे अभी हमें रिश्ता

0: भावना ही बंधन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि अपने माता पिता की तरह ही उन्हें माने और उनके साथ रहें। और वो आगे कहते हैं कि ससुराल वालों से भी ये कहना चाहेंगे कि लड़के के ससुराल वाले हों या लड़की के ससुराल वाले, दोनों को ही टाइम दें। लड़के के लिए भी नया होता है दामाद बनना, और नए लोगों को माता पिता का दर्जा देना थोड़ा समय लगता है। ये लड़कियों के लिए भी नया होता है, ये नहीं कि आज आप थोप दें कि हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो आप हमारे अनुसार, हमारे नियमों के अनुसार रहें, तो इसमें समय लगता है। तो ये बहुत ही
1: बिल्कुल
0: अच्छी तरह से इन्होंने दोनों नजरिया पेश किया, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: आमतौर पर लड़कियों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर नए घर में जा रही हैं और उन्हें तो पूरे समय वहां
1: पूरे
0: रहना है,
1: समय देना
0: जबकि जो नए दामाद बने हैं उन्हें तो कभी कभी ही आना है।
1: जी
0: तो कभी कभी आने में तो इंसान 2-3 दिन तो फिर भी चला सकता है, लेकिन अगर आपको पूरे दिन वहां रहना है तो बहुत सारे नियम कानून अगर नए तुरंत ही दे दिए जाए
1: दे
0: उन
1: दिए
0: पर,
1: जाए तो वो घबरा
0: तो एक
1: जाते हैं।
0: घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि क्या ये मेरा घर नहीं है। वो जो
1: बिल्कुल,
0: एक मन में स्थिति आती है ना कि भाई ये मेरा घर नहीं है, क्या इतनी सारी चीजें ये सब करना है।
1: और सब लोग देखो उम्मीद भी
0: हाँ
1: लगा लेते हैं उस नई लड़की से कि
0: जी
1: ये तो आएगी तो हर काम कर लेगी, सबकी उम्मीदों
0: जी
1: पे
0: जी
1: खरी
0: जी जी
1: उतरेगी। तो ऐसा नहीं है, आप लोग मिलके काम करिए तो उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा।
0: जी
1: और हमारे साथी लिखते हैं, विवाह बंधन नहीं रिश्तों को समझे, आज की युवा पीढ़ी विवाह के पवित्र रिश्ते को जिस सरलता से ले रही है, आज हर माता पिता और परिवार के बड़ों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि नई पीढ़ी को विवाह के पवित्र रिश्ते का महत्व समझाए। विवाह पति पत्नी का रिश्ता अंतिम सांस तक का होता है, पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि दोनों में प्रेम बढ़े। और हम सोचते हैं एक गीत सुन लिया जाए नेहा।
0: हम्म,

0: तो
1: तो ये
0: नेहा,
1: जब शादी ब्याह की बातें होती है तो नाच गाने की और सब बातें भी हो जाती हैं, लेकिन
0: बिल्कुल
1: असली जो भी होता है मौका तो उसके बाद ही होता है, क्योंकि निभाना तो उसके बाद ही है।
0: बिल्कुल है, और बहुत खुशी खुशी निभाइए अपने रिश्ते को, है ना। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा युवा जर तारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है, उसे तहे दिल से निभा पति पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य निभाना, मतलब दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। देखो ना, आज की सती सावित्री वाली वट पूर्णिमा की पूजा भी है, ये तुमने मेरे ख्याल से ये वाला
1: जी,
0: संदेश लिया
1: और
0: था।
1: हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विवाह को एक समझौता या बोझ मानने के बजाय इसे जीवन को सुंदर बनाने का एक जरिया समझना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझने का प्रयास करते हैं, तब विवाह बंधन नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाता है।
0: बिल्कुल, और एक लिखते हैं, विवाह दो आत्माओं का स्वैच्छिक मिलन है, ये कोई बंधन नहीं है, ये दो लोगों के बीच बराबरी और सम्मान का रिश्ता है। एक अच्छा विवाह दोनों पार्टनर्स को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में मदद करता है। वाकई में जब आपकी शादी होती है, आपका पार्टनर है, तो एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं, और हम कहीं मुसीबत में होते हैं तो वो हमें संभालता है, उसको परेशानी होती है तो हम संभालते हैं। तो
1: जी
0: कहना चाहिए सुख दुख तो देखो आते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन हमें उन्हें कैसे निभाना है वो हमें सीखना चाहिए शादी के बाद। वही बहुत जरूरी होता है कि एक दूसरे की बातों को समझे और कुछ भी ना छुपाएं। आप
1: जी
0: सच बोले तो हमेशा आपकी बात को वो समझेंगे कि हाँ ये हमेशा सच बोलती है,
1: जी
0: तो इससे आपका एक विश्वास भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर।
1: इससे एक आपकी जो एक आपका एक व्यक्तित्व है उनके सामने क्लियर सही तरीके से आएगा कि ये जो भी बोलना है, चाहे वो बात अच्छी लग रही हो ना लग रही हो, या वो बात कैसी भी हो, ये सच हमें बता देंगे, या
0: बिल्कुल
1: ये सच हमें बता देंगे जो भी है दोनों के लिए। तो एक तरह से देखिए, हमारे साथियों ने इतने सारे कमेंट्स किए तो सब में उन्होंने यही कहा है कि मिलजुल कर अगर रहें और आपसी सामंजस्य बिताएं, एक दूसरे को वक्त दें, और एक दूसरे के साथ जो दूसरा साथी अगर थोड़ा बदल भी रहा है वक्त के साथ, तो उसे स्वीकार करें, क्योंकि हर व्यक्ति बदलता है।
0: बिल्कुल
1: तो बस समझ कर चलने से एक दूसरे के साथ ही यही विवाह का एक कह सकते हैं कि मूल मंत्र है।
0: मूल मंत्र
1: विवाह को अच्छी
0: है
1: तरह से
0: जी।
1: बंधन नहीं है, लेकिन साथ चलने का नाम है विवाह, जिसमें
0: अब देखो, विवाह जब कर ही लिया है तो पति को क्या पसंद है वो भी समझे, क्योंकि कहते हैं कि अगर दिल जीतना है तो खाना वाना अच्छा सा बनाइए और दिल जीत लीजिए। तो
1: खाना तो बनाएंगे लेकिन गाना कब सुनाएंगे?
0: चलो पहले गाना सुना देते
1: बिल्कुल।
0: हैं।

0: चलो फिर बना देते हैं दाल की कचौड़ी। हाँ? इसके लिए मैदा लेंगे और 2 कप मैदा लेंगे और इसमें घी या तेल जो है वो मोयन के लिए डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको हम गूथ लेंगे। हाँ? और जो भरने की सामग्री है उसके लिए हाँ? उड़द की दाल बिना छिलके वाली 1/2 कप, ये करीब 3-4 घंटे भीगी हुई और इसको पीस के रख लें जब भीग जाए अच्छे से। और बेसन इसमें लगेगा 2 चम्मच, सौंफ दरदरी और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार आप लीजिए, और तलने के लिए तेल। और बस जो आपने आटा गूंथ कर रखा है मैदा वगैरह उसको उसको एक बार वापस गूंथ लीजिए। और इधर जो आपने भरावन था उसको आपको भीगी हुई उड़द की दाल को बिना पानी डाले दरदरा पीस लीजिए। एक पैन में तेल गर्म करिए, इसमें हींग, जीरा, सौंफ, धनिया और बेसन डालकर भूनिए। इसके बाद पिसी हुई दाल डालें और सभी मसाले जो हैं वो मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर डालकर धीमी आंच पर इसको तब तक भूने जब तक मिश्रण पूरी तरह से सूखा और भुरभुरा ना हो जाए। और इसमें आप नमक भी डाल दीजिएगा, नहीं मालूम पड़ा नमक भूल गए है ना। और जब ये अच्छे से भुन जाए तो आपने जो मैदे का आटा तैयार किया था उसकी लोई बनाइए, दाल को भरिए और कचौड़ी को धीमी धीमी आंच पर आप तल लीजिए है ना। और इसको खाया जाता है आलू की रसेदार सब्जी के साथ।
1: हम रेसिपी बताएंगे, पर एक बात यह है कि आपने कहा ना कि कहीं नमक डालना भूल गए, अगर भरावन में आप नमक डालना भूल गए तो बिल्कुल भी बुरा मत नहीं, जिसको IBP हो उसे आप खिला सकते हैं बड़ी आसानी से।
0: हाँ, लेकिन जिसको जिसको फीकी लगेगी वो कहेगा ये क्या बना दिया।
1: तो आलू की सब्जी के लिए उबले हुए आलू चाहिए 4 से 5, हाथ से आप उसको बड़े टुकड़े कर सकते हैं। टमाटर 2 बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच, हींग 1/2 छोटा चम्मच, मसाले चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और मेथी का दाना 1/2 छोटा चम्मच, और पाउडर जो मसाले चाहिए वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बाकी दोनों 1-1 छोटा चम्मच आप डाल सकते हैं। और नमक का आपके स्वाद के अनुसार, अमचूर पाउडर भी इसमें डालिए 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला तेल आपको 2 बड़े चम्मच लगेंगे। सरसों का तेल अगर डालें तो बहुत अच्छा लगेगा। हरा धनिया बारीक कटा हुआ चाहिए। तो तेल गरम किए कढ़ाई में, हींग, जीरा, सौंफ और मेथी दाना डालकर उसको तड़काइए, और इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और कटे हुए टमाटर डाल दीजिए, और टमाटर थोड़ा नरम होते तक इसको पकाना है। फिर हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए और मसालों को तब तक भूनिए जब तक तेल ना छोड़ दें। फिर इसमें आलू डालिए हाथ से फोड़कर, और आलू डालने के बाद थोड़ी देर 1-2 मिनट तक उसको अच्छे से चलाइए, और उसके बाद 2-3 कप पानी डालिए। अंत में आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए, और गरम मसाला डालना है तो भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालें, गर्मा गर्म आलू की सब्जी तैयार है। कचौड़ियां तो बन ही चुकी हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो आप दोनों ये सारी चीजें खाइए, और देखिए समय ऐसा बता रहा है कि आप समोसा और जो छोले की जो रेसिपी थी ना, समोसा बना हुआ लाइए, छोले अपने घर में अपने हिसाब से बनाइए, दोनों को मिलाकर खाइए।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: तो बस कार्यक्रम से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: नेहा शर्मा का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ

0: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लिवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो IBS के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारी जांच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूँ फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
1: हाँ, तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज़्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता
0: जी।
1: एक दूसरी बात ये भी हमारा है कि हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट। अगर कुछ नहीं ठीक हुआ तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं। एसिडिटी से भी किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था IBS, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज़ अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, 2 से 3 दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है। तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द, 1-2 दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए।
0: जी, तो ये आपने बड़ी ज़रूरी बात कही है और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं। घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था। आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहाँ मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं। क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज़ पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज़ फटने लगती है, ख़राब होने लगती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है, और गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। स्पेशली जब हम रात को सो जाएं, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है। कई पेशेंट्स कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज़ बदल जाती है। तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ENT को जाके देखते हैं, ये गला ख़राब है। ENT जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहाँ से खाने की पाइप शुरू होती है वहाँ पे काफ़ी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है। तो एसिड रिफ्लक्स से गला ख़राब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज़ जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा कि गले में कुछ अटका हुआ है। तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स।
0: तो मतलब आवाज़ की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और बात आवाज़ की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर ये गाना आप कहें तो हम सुनवाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए।
0: सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था, और पेट के अल्सर के हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है?
1: नहीं, आज के ज़माने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं हैं,
0: जी
1: क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयाँ निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के ज़माने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं
0: क्यों हो
1: अल्सर।
0: रहा है?
1: ज़्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयाँ लेते रहते हैं,
0: जी
1: तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते
0: जी
1: हैं। एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीज़न हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे, क्योंकि जो एसिडी की दवाइयाँ हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने ज़माने में ये दवाइयाँ नहीं होती थी, तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के ज़माने में अल्सर की सर्जरी इज़ ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
0: जी, तो ये बहुत सही बात आपने बताई है, लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खासतौर से?
1: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा। कभी कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है,
0: जी,
1: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है। काला कलर का अगर मोशन हो गया, मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफ़ी हाई है।
0: जी और एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है, कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं बहुत टेंशन में, तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
1: हाँ, बिल्कुल सही।

0: बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करते हैं। सुबह उठते हैं, मोशन होता है, और फिर पेट खाली होता है, फिर पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट दिन मोशन होता है। चूँकि स्लीप साइकिल खराब हो, या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज़्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूँ कल रात को, ठीक से सोया हूँ कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तो ये मुझे कहेगी कि मैं नेक्स्ट दिन मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूँ अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें, तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
1: तो ये तो बहुत ज़रूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज़्यादा होती है कुछ ऐसा?
0: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफ़ी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट ख़त्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क। तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
1: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है?
0: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है। जो हमारा पेट इंटेस्टाइन होता है, उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते
1: जी
0: हैं। तो हम सिंपल टर्म्स में, देर इज गुड बैक्टीरिया एंड देर इज बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हो, अगर ज़्यादा हो, तो डाइजेशन ईजी हो जाता है। गुड बैक्टीरिया ज़्यादा हो, तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है। तो
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं, तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज़्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई हैं, गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं
1: जी
0: इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर, बट ऑल्सो इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया।
1: जी तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना
0: तो मैं तो
1: कारगर?
0: कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही,
1: दही?
0: दही से अच्छा कोई प्रोबायोटिक नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू टेक, यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली।
1: जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब, बताइए कौन सा गाना सुनवाया?
0: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्ज का, दर्दे दिल दर्दे जिगर, ये गाना एक
1: क्या
0: मुझे
1: बात
0: बहुत
1: है,
0: पसंद है।
1: आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या? किस तरह के एक्सरसाइज करनी
1: बिल्कुल, जैसे
0: चाहिए?
1: मैंने कहा कि अगेन पेशेंट जब हमारे पास आता है, दवाई नहीं देनी है, हमने हमने पहले एक्सरसाइज देनी है। तो एक्सरसाइज इंक्लूड योगा,
0: जी
1: योगा के साथ एक्सरसाइज है जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज है जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइज है जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, तो एरोबिक एक्सरसाइज जो बोलते हैं हम
0: जी
1: ना,
0: जी
1: साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है। तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
0: जी बिल्कुल। क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता
1: हाँ
0: है?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और
0: डेंजरस
1: नुकसान डेंजरस होता है,
0: होता
1: उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
0: जी
1: पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज़्यादा हो उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफ़ी पतले हैं, पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज़्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जो
0: जी
1: हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, मेरे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन एमआरआई, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
0: जी। और पेट के इन्फेक्शन के बारे में

0: बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है? किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: और अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। बट अगर ये इमोशन दोबारा दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन्स में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है। कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने
0: जी
1: कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटिन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।
0: जी और एक बात डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज, खास तौर से जो योगा करते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
1: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत रिगरस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट की जो हमारी लाइनिंग है उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं और मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्निया होने के रिस्क होते हैं, पेट बाहर आ जाता है ज़्यादा उल्टा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज़्यादा जोर लगाओगे पेट पे, तो हर्निया होने का रिस्क ज़्यादा होता है।
0: जी, तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है।
1: बिल्कुल पढ़ सकता है।
0: जी, और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के, क्योंकि हर कोई वो कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
1: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है, इसके लिए पूछना पड़ता है पेशेंट को क्यों नहीं पच रहा है।
0: हाँ
1: बोलते हैं हमको खाना पचता नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है। जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं, तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ,
0: जी
1: पेशेंट
0: जी
1: का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में, स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो
0: जी
1: पानी
0: जी
1: नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की, वो कलरफुल होनी चाहिए।
0: ओके
1: मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियाँ हो जाएं, एक रेड हो जाए, एक ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी गेहूं की ले लो, ज्वार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
0: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए मेरे
1: बिल्कुल,
0: ख्याल।
1: इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाए आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
0: तो बिल्कुल, और डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
1: एक और गाना जो मुझे काफी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है। ये गाना वाज क्वाइट फेमस
0: जी
1: मेरे स्कूल के टाइम पे
0: जी
1: और
0: क्या
1: काफी
0: बात
1: सुना है
0: है
1: हमने।
0: जी,

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की संध्याकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। जजुआर मध्य पंचायत से ओम सुमंत नाथ ठाकुर बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मेरे यहाँ अस्पताल बनाया, मेरा ग्राम पंचायत तो कुपोषण मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, टीबी मुक्त हमारा।

0: हमारा ग्राम पंचायत है, एनीमिया मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है। किसी भी गर्भवती महिलाएं की प्रसव के दौरान हमारे ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत का खुद का अपना एम्बुलेंस है, जो कोई भी व्यक्ति को इलाज के लिए समय रहते गाड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बनेगा।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोहनपुर पंचायत से ओम रानी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मेरा नाम है रानी देवी, मैं भागलपुर जिला का हूँ। मेरे गाँव में तो पहले मैं 13 नंबर वार्ड का हूँ। मेरा गाँव है सरैया, मोहनपुर पंचायत है। एक काम है उनकी, वही गली नली है वहाँ पानी फंस रहा है, वो पानी निकलना की जरूरी है उसका, यही काम बेसी खास बच्चे हैं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
3: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका युवाओं के मन पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में, और मैं हूं आपकी दोस्त भारती।
4: नमस्कार दोस्तों, और मैं हूं सुनंदनी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में होगी ज्ञान की बातें, प्रेरणा की सौगात, रोचक जानकारियां, खेल और रोजगार की ताजा अपडेट्स, साथ ही आपके पसंदीदा गीत की शानदार शाम भी होगी।
3: बिल्कुल सुनंदनी, आज के कार्यक्रम में हम शुरुआत करेंगे प्रेरणादायक पंक्ति के साथ, जो हमारे भीतर सकारात्मक सोच और नए उत्साह का संचार करेंगी।
4: इसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की। हम जानेंगे कि आंकड़े केवल संख्याएं नहीं होती, बल्कि किसी भी देश की प्रगति, योजनाओं और विकास की दिशा तय करते हैं, और बात करेंगे कि ये कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे देश के लिए।
3: बिल्कुल दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स के बारे में। ये जानेंगे हम कि प्रकृति के ये कितनी अनमोल धरोहर है, जहाँ जैव विविधता, वन, जलवायु और मानव जीवन का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है।
4: खेल जगत और रोजगार से जुड़ी ताजा अपडेट्स भी जानेंगे, साथ ही कुछ रोचक तथ्य भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम इस प्यारे से गाने के साथ।

0: तो दोस्तों अभी हम सुन रहे थे फिल्म टशन से महालक्ष्मी अय्यर और उदित नारायण की आवाज में ये प्यारा सा गाना। और सुनंदिनी आपको पता है अभी हम बात कर रहे थे प्रेरक पंक्ति के बारे में, तो पता है मुझे एक प्रेरक पंक्ति भी याद आ रही है कि जीवन में हमेशा ये याद रखना चाहिए कि किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है।
1: यही हम अपने विचारों के सकारात्मक रखें, अपने व्यवहार में विविधता रखें और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं।
0: बिल्कुल, अपने लक्ष्य की ओर पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ें और कभी हार ना माने, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कठिन रास्तों पर भी अपने हौसले और विश्वास को बनाए रखते हैं। और पता है सुनंदिनी, मुझे इसके साथ ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में याद आ रहा है।
1: भारती, तुम ये क्या पढ़ रही हो? आज सुबह से देख रही हूँ कि तुम कुछ आंकड़ों और ये चार्ट्स में डूबी हुई हो।
0: सुनंदिनी, मैं आज के दिन के बारे में पढ़ रही हूँ। पता है कि आज 29 जून है और आज पूरे देश में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जा रहा है।
1: अच्छा, सांख्यिकी दिवस। सुनने में तो यह नाम बड़ा कठिन लग रहा है, और गणित

0: जैसा लगता भी है, पर सच बताओ मुझे नहीं पता कि ये क्या होता है और हम इसे क्यों मनाते हैं। क्या तुम मुझे इसे आसान शब्दों में समझा सकती हो?
1: बिल्कुल सुनंदनी, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। सांख्यिकी का सीधा सा मतलब होता है आंकड़े या डेटा। जब हम किसी चीज के बारे में बहुत सारी जानकारी या नंबर इकट्ठा करते हैं और फिर उसे समझकर कोई फैसला लेते हैं तो उसे ही सांख्यिकी कहते हैं।
0: अच्छा, लेकिन वो क्या है ना, मैं थोड़ी गणित में कमजोर हूँ, थोड़ा और साफ शब्दों में समझाओ, जिसे हम रोजमर्रा के जीवन में इसका क्या काम होता है, इसके बारे में बताओ।
1: बिल्कुल सुनंदनी, हम इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे तुम अपने घर का बजट बनाती हो और तुम देखती हो कि पिछले महीने राशन पर कितना खर्च हुआ, बिजली का बिल कितना आया और अगले महीने कितने पैसों की जरूरत होगी। ये जो तुम पिछले महीनों का खर्चों का जो आंकड़ा जोड़कर अगले महीनों की प्लानिंग करती हो ना, यही है सांख्यिकी।
0: अरे वाह, ये तो बहुत आसान उदाहरण था। इसका मतलब हम सब आन जाने में रोज ही इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारती, इस दिन को आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है, यानी 29 जून को ही क्यों मनाया जाता है?
1: बहुत अच्छा सवाल किया तुमने सुनंदी। आज भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक और गणितज्ञ प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, उनका जन्मदिन है। उन्हें भारत में सांख्यिकी का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स कहा जाता है। उन्होंने हमारे देश की तरक्की और प्लानिंग के लिए आंकड़ों के इस्तेमाल को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। उन्हीं के सम्मान में सरकार ने उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस घोषित किया।
0: अच्छा, अब समझी। महान नोबिस जी का नाम तो मैंने भी सुना है, पर यह नहीं पता था कि उनका योगदान इतना बड़ा था। लेकिन देश के स्तर पर सरकार इन आंकड़ों का क्या करती है?
1: देखो सुनंदी, सरकार के लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी है कि मान लो सरकार को देश से गरीबी मिटानी है या नए स्कूल या अस्पताल खोलने हैं, तो सरकार को पहले आंकड़े चाहिए होंगे। जैसे किसी किस इलाके में कितने बच्चे हैं, कहाँ अस्पताल की सबसे ज्यादा कमी है या कितने लोगों के पास रोजगार नहीं है। बिना इन आंकड़ों के सरकार कोई भी सही योजना या पॉलिसी नहीं बना सकती। अगर बिना सोचे समझे पैसे खर्च किए जाएंगे तो वो बर्बाद हो जाएंगे, है ना?
0: हाँ, ये तो तुमने सही कही। बिना सही जानकारी के ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। मुझे याद आया, जब हमारे देश में जनगणना होती है, तब लोग आते हैं, घर घर आते हैं, पूछते हैं कि कितने लोग हैं, आपने कितनी पढ़ाई की है, वह भी इसी का हिस्सा है ना?
1: बिल्कुल, जनगणना सांख्यिकी का सबसे बड़ा उदाहरण है सुनंदिनी। उसी से पता चलता है कि हमारे देश की आबादी कितनी है और हमें आने वाले समय में कितने अनाज, पानी, नौकरियों और घरों की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ तक कि मौसम का अंदाजा लगाना या बीमारियों के फैलने की रफ्तार को रोकना, इन सब में भी सांख्यिकी का बहुत बड़ा हाथ होता है।
0: हाँ भारती, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि जिसे मैं केवल एक उबाऊ गणित समझ रही थी, वह तो असल में हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना तो देश का विकास ही नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सुनंदनी तुमने, कि सही शब्द का जो तुमने इस्तेमाल किया कि रीढ़ की हड्डी, बहुत सही बात कही आपने कि हर साल इस दिन की एक खास थीम भी इसलिए ही रखी जाती है ताकि लोगों को किसी खास मुद्दे जैसे भुखमरी मिटाना, अच्छी शिक्षा या स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सके और उससे जुड़े आंकड़ों पर काम किया जा सके।
0: आज तुमने मेरी आंखें खोल दी भारती। अब मुझे समझ आया कि आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते, बल्कि उनके पीछे हमारे देश के लोगों की जिंदगी और उनका भविष्य छुपा होता है। इस बातचीत के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भारती।
1: कोई बात नहीं सुनंदनी, मुझे भी तुम्हारे साथ ये जानकारी बांटकर और हमारे श्रोताओं को के साथ ये जानकारी को साझा करके बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। तो चल के अब थोड़ी सी चाय वाय आप लोग भी पीजिए श्रोताओं, और आइए सुनते हैं एक गाना।

देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित

0: हिंदुस्तान के सहयोग से, किशनपुर लोअर पंचायत से ओम राकेश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: यशस्वी मुखिया राकेश कुमार साहब, ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं था, जिसके चलते मेरे यहाँ नागरिकों को बहुत कठिनाई होती थी, प्रखंड जाकर काम कराना पड़ता था। मैंने ग्राम पंचायत में, अपने ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया। अब पंचायत सरकार भवन के एक छत के नीचे ही मेरे पंचायत के लोगों का सारा काम हो जाता है। अब प्रखंड जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित। हिंदुस्तान के सहयोग से, परुणा पंचायत से आशा देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। मैं जब 2016 में जीती थी तो हम लोग के गाँव में बहुत कठिनाई आती थी कि गली में बहुत कचरा और पानी भर जाता था, रोड नहीं था, नली नहीं था। पहले हम लोग वो काम किए, इसके बाद देखे कि बहुत लाचार और गरीब जो झोपड़ी में रहते थे उसको रहने का जगह नहीं था और गरीब था, उसको कमाने का कोई, खाने का कोई अथी नहीं था। उन लोग हम लोग काम दिए हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज में ये प्यारा सा गाना। और श्रोताओं, आज हमारा सेगमेंट, जो विशेष सेगमेंट होता है तकनीकी सोमवार, आज उसमें भी कुछ विशेष है। तो आइए आपको सुनाते हैं हमारी ओर से विज्ञान की उड़ान। साइलेंस, खामोश हो जाइए सब लोग। आज का दिन हमारे स्कूल के लिए बहुत बड़ा है। हर साल की तरह इस साल भी नेशनल साइंस कांग्रेस का ऐलान हो चुका है। इस बार का थीम है साइंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर।
4: सना, फिर से मतलब वही वाटर प्यूरिफायर एंड वाटर कूलर वाला बोरिंग प्रोजेक्ट? यार एकदम बोर हो जाएंगे हम लोग। मिसेस राव देख रही हैं। वैसे भी हमें कौन सा नेशनल लेवल तक जाना है?
3: इस बार मैं चाहती हूँ कि हमारी गर्ल्स लीड करें, अनन्या, सना और मीरा। आप तीनों मेरे केबिन में मिलेंगी ब्रेक में। हमने एक स्पेशल मेंटर को रिक्वेस्ट किया है जो आपको गाइड करेंगी।
5: ओके मैम। मे आई कम इन मैम?
3: यस कम इन। आओ गर्ल्स, मिलिए डॉक्टर ईशानी से। ये एक जूनियर साइंटिस्ट है और हमारे शहर की प्राइड है।
6: हाय टीम, मैंने तुम्हारी पुरानी रिपोर्ट्स देखी हैं। तुम तीनों के पास दिमाग तो है, पर क्या फायर है?
7: मैम फायर तो है, पर हमें सही रास्ता नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि हम किसानों के लिए कुछ करें। जैसे मेरे अब्बू खेत में काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मिट्टी की बीमारी उन्हें समझ ही में नहीं आती।
6: ग्रेट स्टार्ट मीरा। तुमने विज्ञान ज्योति स्कीम का नाम सुना है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे खास रूरल एरिया की लड़कियों के लिए शुरू किया है, ताकि वो स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में आगे बढ़ सकें। और हम वही स्पिरिट यहाँ लाएंगे। हम ऐसा कुछ बनाएंगे जो एक स्मार्ट सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, जो एआई की मदद से बनाएंगे।
5: पर मैम, एक महीने में एआई, ये तो नामुमकिन है।
6: नामुमकिन तब तक है जब तक हम कोशिश नहीं करते। गवर्नमेंट की किरण यानी नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग स्कीम जैसी चीजें हैं जो वुमेन साइंटिस्ट को सपोर्ट करती हैं। हम उनका रेफरेंस लेंगे। अब जल्दी से डायरी निकालो और 4 हफ्तों का प्लान लिख लो।
5: ये पाइथन कोड फिर से क्रैश हो गया। मीरा, तुम्हारे सेंसर का डेटा करप्ट आ रहा है।
7: सना, मिट्टी गीली है ना, शायद ह्यूमिडिटी की वजह से सेंसर का भी वैल्यू गलत दे रहा है। मैंने केमिस्ट्री लैब में चेक किया था, पीएच वैल्यू 6.5 थी, पर पता नहीं क्यों सॉफ्टवेयर में 4 ही दिखा रहा है।
8: सना, तुम्हारी ये कोडिंग और मेरा तुम्हारी ये टेस्टिंग, मैं तो थक गई हूँ। कल मैथ्स का टेस्ट भी है यार, और यहाँ हम मिट्टी और कोडिंग में फंसे हैं। मैम, हमें क्या सच में फंडिंग मिलेगी?
6: हाँ जरूर मिलेगी। तुम्हें पता है इंस्पायर अवार्ड्स मानक के बारे में? अगर तुम्हारे मॉडल सेलेक्ट होता है तो सरकार तुम्हें पैसे भी देगी और मेंटोर भी। और अनन्या

0: डरो मत, क्या तुमने प्रगति स्कॉलरशिप के बारे में पढ़ा है? वो लड़कियों को टेक्निकल एजुकेशन के लिए साल के 50,000 रुपए तक देती है। तुम्हें बस अपना विजन क्लियर रखना है।
1: क्या 50,000? मैम तब तो मैं नया लैपटॉप खरीदूंगी रिसर्च के लिए।
2: लैपटॉप बाद में, पहले इस एरर को सॉल्व करो। डॉक्टर ईशानी, क्या हम इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग जोड़ सकते हैं?
0: अब आया ना मजा, चलो लेट्स डीबग दिस टुगेदर।
1: कितनी गर्मी है यहाँ पर देखो किसान काकी खेत में कितनी मेहनत कर रही है और कितनी उम्मीद लगा करके देख रही है हमारे बॉक्स को।
3: बिटिया, इटाप्पा बताएगा कि मेरी फसल क्यों सूख रही है?
4: हाँ काकी, देखिए इसमें जो लाइट लगी है ना, वो लाल हो गई है। इसका मतलब है कि मिट्टी में नाइट्रोजन कम हो गया है और आपको खाद डालनी होगी, पर थोड़ी सी।
2: और काकी, ये डेटा सीधे हमारे ऐप पर जा रहा है। हमने इसे गति यानी जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस के फ्रेमवर्क पर डिजाइन किया है ताकि उसे यूज करने में आसान हो।
1: तो गर्ल्स देखो, साइंस का मतलब लैब में बैठना नहीं, लोगों की मुश्किल हल करना है। तुम्हें पता है गवर्नमेंट की एक और स्कीम है, वॉस्बी यानी वुमेन साइंटिस्ट स्कीम, जो उन महिलाओं के लिए है जो सोसाइटी के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाती हैं। तुम अभी से साइंटिस्ट बन चुकी हो।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द 108th नेशनल साइंस कांग्रेस। आवर फाइनल फाइनलिस्ट्स आर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन स्कूल, प्रोजेक्ट धरती माँ की पुकार।
6: यार सना, मेरे हाथ कांप रहे हैं।
2: घबरा मत, याद कर डॉक्टर ईशानी ने क्या कहा था, कॉन्फिडेंस हमारा सबसे बड़ा टूल है।
4: हाँ, और याद रखना, हम सिर्फ जीतने के लिए नहीं आए हैं, हम किसानों की आवाज बनने आए हैं।
1: नमस्ते, क्या आप जानते हैं भारत की 60% मिट्टी बीमार है। हमने बनाया है एक ऐसा डिवाइस जो AI और सेंसर्स की मदद से मिट्टी का MRI करता है। इसका खर्चा सिर्फ 500 रुपए है।
7: इम्प्रेसिव, पर MRI सोइल का? एक बार एक्सप्लेन करना, और क्या ये स्केलेबल है?
0: सर, एज अ मेंटोर मैं कह सकती हूँ कि इन लड़कियों ने QD यानी कि कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सलेंस इन वुमेन यूनिवर्सिटीज के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है। ये मॉडल पूरी तरीके से वर्किंग है, और MRI का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी बिना मिट्टी खोदे हुए हाई रेजोल्यूशन इमेजेस के जरिए 3D दिखाने वाली टेक्नोलॉजी है।
1: I'm so proud of you. तुम तीनों ने नेशनल अवार्ड जीत लिया।
8: मैम, ये सिर्फ ट्रॉफी नहीं है, ये हमारे सपनों की एक नई उड़ान है।
0: याद रखना गर्ल्स, स्टेम फील्ड में लड़कियों की संख्या अब बढ़ रही है, चाहे वो सर पावर फेलोशिप्स हो या स्पेस मिशन, हर जगह हम हैं। आज नेशनल साइंस कांग्रेस जीता है, कल देश संभालना है।

0: सुनंदिनी, आप क्या पढ़ रही हैं? ये आपके हाथ में एक किताब है, उस पे पृथ्वी का नक्शा भी बना हुआ है और चारों तरफ हरे भरे जंगलों की तस्वीरें। ये क्या है?
1: भारती, मैं आपको बता देती हूँ कि दरअसल आज 29 जून है और आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स मनाया जा रहा है। मैं इसी के बारे में पढ़ रही थी।
0: उष्णकटिबंधीय दिवस, ये नाम सुनने में थोड़ा सा भारी और भूगोल के किसी कठिन पाठ जैसा लग रहा है। ये उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिक्स का असल में मतलब क्या होता है? मुझे जरा आसान शब्दों में समझाइए।
1: बिल्कुल, मैं तुम्हें बहुत सीधे शब्दों में बताती हूँ। हमारी पृथ्वी के बीच का जो हिस्सा है, जहाँ साल भर अच्छी धूप पड़ती है और खूब बारिश होती है, उस पूरे इलाके को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिक्स कहते हैं। अगर भूगोल की भाषा में कहें तो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर और मकर रेखा ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो पूरा हिस्सा है वही ट्रॉपिक्स है। हमारा भारत देश भी काफी हद तक इसी क्षेत्र में आता है।
0: अच्छा, यानी जहाँ अच्छी गर्मी और अच्छी बारिश होती है। पर सुनंदिनी, इस खास हिस्से के लिए एक पूरा दिन, मतलब आज का दिवस मनाने की क्या जरूरत पड़ गई? इसमें ऐसा क्या खास है?
1: भारती, यह हिस्सा हमारी पूरी पृथ्वी के लिए एक वरदान की तरह है। दुनिया के जितने भी सबसे घने और सुंदर जंगल हैं, जैसे अमेज़न के जंगल, वो सभी इसी इलाके में पाए जाते हैं। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के लगभग 80% पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जीव जंतु इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं। इसे हम पृथ्वी की जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का घर भी कह सकते हैं।
0: अरे वाह, इसका मतलब दुनिया के सबसे ज्यादा जीव और पौधे इसी हिस्से में रहते हैं। तभी तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका हुआ।
1: हाँ, सिर्फ जीव जंतु ही नहीं, बल्कि दुनिया की लगभग आधी आबादी जो कि ह्यूमंस हैं, वो भी इसी क्षेत्र में रहती हैं। यहाँ के जंगल पूरी दुनिया को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं और मौसम को संतुलित रखते हैं, जो कि एक बड़ी भूमिका निभाने को भी कहा जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इन्हें एक तरह से पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जा सकता है।
0: ये तो बहुत बड़ी बात है सुनंदनी। लेकिन अगर ये हिस्सा इतना अच्छा और जरूरी है, तो फिर इसे इस दिन

0: मना कर हम दुनिया को क्या बताना चाहते हैं? क्या यहाँ कोई परेशानी चल रही है?
1: हाँ बिल्कुल सही इस पहचाना है आपने भारती। आज इस क्षेत्र में के सामने बहुत ही बड़ी चुनौती आई हुई है। पहली बात तो यह है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का असर बहुत तेजी से हो रहा है। लोग अपने फायदे के लिए यहाँ के जंगलों को बहुत तेजी से काट रहे हैं। जंगल कटने की वजह से कई अनोखे पशु पक्षी हमेशा के लिए खत्म यानी विलुप्त हो रहे हैं।
0: ये तो सचमुच बहुत चिंता की विषय है। अगर यहाँ के जंगल खत्म हो गए तो पूरी पृथ्वी का मौसम बिगड़ जाएगा। आजकल तो इतनी गर्मी बढ़ रही है, आप देख ही रही हैं, और बिना मौसम के बारिश या सूखा भी पड़ जा रहा है। क्या उसका कारण भी यही है?
1: बिल्कुल भारती। इसके अलावा इस इलाके में रहने वाले बहुत से लोग आज भी गरीबी, कुपोषण और बीमारियों से जूझ रहे हैं। यहाँ शहर का विकास तो हो रहा है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुँचाकर। इसलिए संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 29 जून को यह दिवस मनाने का फैसला किया, ताकि पूरी दुनिया का ध्यान इस इलाके की सुरक्षा और यहाँ रहने वाले लोगों के विकास पर जा सके।
0: सुनंदिनी, तुम्हारी बातें सुन के मुझे ये समझ आया कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र को बचाना कितना जरूरी है। हम अपने स्तर पर इसके लिए क्या सोच सकते हैं?
1: हम यह समझ सकते हैं कि प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। अगर दूर किसी देश का जंगल कटता है, तो उसका असर हमारे यहाँ के मौसम पर भी पड़ता है। हमें पेड़ों को बचाने, पानी की बर्बादी रोकने और प्रदूषण कम करने का संकल्प लेना चाहिए।
0: सच में सुनंदनी, आज तुमने श्रोताओं को और मुझे भी बहुत ही सुंदर और जरूरी विषय के बारे में बताया। अब जब मैं हरे भरे जंगलों को देखूंगी ना, तो मुझे इस ट्रॉपिक्स दिवस की बात हमेशा ही याद रहेगी। चलो अब इसी अच्छी जानकारी के साथ एक अच्छा सा गाना सुनते हैं।
1: हाँ बिल्कुल।

0: अभी आप सुन रहे थे सजदा गाना माय नेम इज़ खान फिल्म से राहत फतेह अली खान की आवाज़ में। भारती, आज कुछ खास है क्या? क्योंकि सुबह जब मैं मंदिर के पास से गुजर रही थी, वहां बहुत भीड़ और रौनक दिखाई दे रही थी।
1: अरे तुम्हें याद नहीं है, आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है, जिसे हम देव स्नान पूर्णिमा या स्नान यात्रा भी कहते हैं। आज के दिन ही भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का दिव्य महास्नान होता है।
0: अच्छा, तभी मैं सोचूं आज इतनी भीड़ क्यों है। मैंने सुना है कि यह त्योहार विशेष रूप से उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में बहुत ही बड़े पैमाने पे मनाया जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। मान्यता है कि आज के दिन ही प्रभु जगन्नाथ का प्राकट्य हुआ था, यानी उनका आज जन्मदिन है। आज उन्हें 108 कलशों के सुगंधित जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद भगवान गजवेश यानी गणेश जी के रूप में दर्शन देते हैं।
0: वाह, ये तो बहुत ही सुंदर परंपरा है। लेकिन भारती, मैंने एक बात और सुनी है कि स्नान के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं। क्या ये सच है?
1: हाँ सुनंदिनी, ये बहुत ही दिलचस्प है। इतने भारी स्नान के बाद भगवान को तेज बुखार आ जाता है, इसे अनासर काल कहा जाता है। अगले 15 दिनों तक भगवान को एकांत कक्ष में विश्राम कराया जाता है, जहाँ उन्हें केवल जड़ी

0: बूटियों का काढ़ा और विशेष भोग दिया जाता है। इस दौरान मंदिर के कपाट आम जनता के लिए बंद रहते हैं।
1: कितनी अनोखी और मानवीय परंपरा है। ईश्वर को भी हमारी तरह विश्राम की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल। और ठीक 15 दिन बाद जब भगवान जगन्नाथ पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं, तब वे नव यौवन रूप में दर्शन देते हैं और उसके अगले दिन ही प्रसिद्ध, जो आप जानती हैं, रथ यात्रा, वो शुरू होती है।
1: सच में भारती, हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। तुम्हें आज बहुत अच्छी जानकारी दी मुझे। चलो मैं भी घर जाकर भगवान जगन्नाथ का ध्यान करूंगी।
0: और पता है, उसी से रिलेटेड मुझे एक गाना याद आ रहा है कि भगवान के लिए हम कहते हैं ना, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा। तो आइए सुनते हैं ऐसा ही एक गाना।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म कॉकटेल से नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज़ में ये प्यारा सा गाना। तो दोस्तों, बातें तो अच्छी हैं लेकिन रोजगार भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए सुनते हैं रोजगार सूचना। 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के कुल 3,522 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवार से आवेदन है आमंत्रित करना, आवेदन आमंत्रित करता है।
1: बिल्कुल, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देख सकते हैं और इसकी आयु सीमा है 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी।
0: आवेदन ऑनलाइन भी भरा जाएगा। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि है 18 जुलाई 2026। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए www.ssc.government.in पे प्राप्त किया जा सकता है।
1: इसके साथ ही न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL अप्रेंटिस के कुल 550 पदों पर भी भर्ती हेतु आवेदन आप आमंत्रित कर सकते हैं।
0: तो दोस्तों, बातें तो होती रहेंगी, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे आतिफ असलम की आवाज़ में ये प्यारा सा गाना। और दोस्तों, आज हमने जाना बहुत सारी जानकारी भरी बातें और बहुत सारे प्रेरक जो पंक्ति थी वो भी हमने जान लिया। इसके साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अपनी रेडियो दोस्त भारती
1: और सुनंदनी,
0: को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
1: नमस्कार।

युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। श्रोताओं, प्रस्तुत है भोजपुरी कार्यक्रम आरती।

आरती के सुनियार लोगिन के संगीता के प्रणाम। कहीं सभी का हाल चाल बा। जैसन कि रुआ सभी जानत नहीं कि आज संत कबीर जयंती है और कवि जोन कहल जाला कि यहाँ के आज के दिन प्रकट भई रही और 15वीं सदी के महान रहस्यवादी कवि समाज सुधारक और दार्शनिक संत कबीर दास के जन्म उत्सव के रूप में हमने के आज के दिन के मनाई ले। ये दिन उनकर शिक्षा मानवता के संदेश और इस समाज से

प्रकृति के दूर करके योगदान के याद करके हमने के मनाई ले। यहाँ के प्रेम भाईचारा और समानता के भावना जेबा स्थापित के लिए रही और यहाँ के छुआछूत अंधविश्वास कर्मकांड जैसन जे चीज बा ओकरा खिलाफ जोन बा यहाँ के आवाज़ उठैले रही। कबीरदास कवि साहब जेकरा के हमने के कहिला जा 15वीं सदी के एक कहल जा सकता कि रहस्यवादी कवि और संत रही। उनकर जन्म जोन बा 1398 में काशी में भई रहे और इहे के जोन एक यहाँ के कहल जाला कि बड़ा ही मस्त मौला जोन यहाँ के छवि रहे वो एकदम समझ ली मस्त मौला। और कहल जाला कि कई ऐसन बोलचाल के भाषा में भी हमने के यहाँ के कहल जाला कि जे कविता बा जे हमने के हमेशा मन में और जेहन में रहेला। और हम तो बस यही कहब रुआ सबे से कि भाई हमने के अभी जोन बा एक बात पर आओ चर्चा करब जा कि अभी जे मौसम बा यह मौसम के लिहाज से जोन हमने के साग सब्जी बा जोन हमने के फल बा ओकरा के का कुछ खाइब जे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी जोन बा वो सही होके और हमने के पौष्टिकता भी मिले। जैसे अभी के मौसम में जोन बा सब्जी हमने के खा सकते नहीं भिंडी बा लौकी बा तुरई बा केरला बा कद्दू बा खीरा बा ककड़ी बा और परवल बा। बरसात के देखिए अब तो मतलब अभी कई जगह ऐसा नहीं है कि झमाझम जे बारिशें होता अभी गर्मी भी बहुते बा तो ऐसा में पत्तेदार सब्जी भी हमने के खाई ला जा अरबी बा कुंदरुम बा है ना फली लुबिया हर हरी मिर्च वगैरह भी हमने के टमाटर ई कुल हरियर हरियर सब्जी जे बा हमने के खाई ले। और साथे साथे एक बात आऊ कहब कि जोन फल बा मौसमी फल के बड़ा फायदा होला हमने के स्वास्थ्य पर। जैसे फल के बात कहनी है तो जैसे अमरूद बा जामुन बा है ना नाशपाती बा हाँ नींबू बा खास करके अमरूद तो खाए के ही खाए चाहिए कहे कि ऐसे पेट बहुत दुरुस्त रहेला। और साथे साथ एक और हम कहल चाहब कि भाई देसी खान पान के हमने के जीवन में बहुत महत्व बा। देसी खान पान से हमार मतलब बा कि घर के शुद्ध पारंपरिक जो देसी खान पान बा एकरा से जैसे स्वाद में भी लाजवाब होके और हमने के सेहत भी जोन बा वो दुरुस्त रहे। ई मौसम में जैसे दाल जोन बा वो घर के बनल होके ताज़ा खाना हमने के अपना खाना में शामिल करी जाए हमने के देसी थाली के मुख्य पहचाने होकेला दाल चावल और रोटी देसी खान पान के जान कहल जाला। जैसे कि रहर के दाल बा मसूर बा चना बा मूंग बा और चावल भइल बाजरा के रोटी भइल ई कुल स्वास्थ्य खातिर बहुत ही जोन बा दुरुस्त रखे वाला ये उपाय बा। बिहार और उत्तर प्रदेश के पारंपरिक स्वाद अगर कही तो भाई अभी याद आ गई ला मौसम भी बा लिट्टी चोखा और सत्तू के तो कोनो जवाबे नहीं के। सत्तू तो समझ लें कि हमने के स्वास्थ्य खातिर बहुत ही उत्तम बा और कहल जाला पेट के भी ठंडा रखेला। तो चली फिर हम गपशप करब यह विषय पर और बीच बीच में भाई मन करेला कि भाई कुछ हमने के चेंज होके के चाहिए तो चल आज हम एगो गीत हमने के सुनल जाओ। आज आज के कलाकार बने सोहराई कुमार निराला तो आई सुनल जाओ यहाँ से लोक भजन।

अभी हमने के गीत सुनत रही जा, लोक भजन रहे, कलाकार सोहराई कुमार निराला से सुनत रही जा। सचमुच बहुत ही सुंदर ये भजन रहे। और जैसन कि हमने के जानत नहीं कि आज जोन बा वो कबीर जयंती है, तो उनकर कुछ वाणी बा, कुछ बोल बा, कुछ दोहा बा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। तो सही में वाणी में मधुरता, और जो हमनी के सुने में निमन लागे ठीक उसने वाणी बोले के चाहिए दूसरा खाती भी। तो चलिए आज यही बात पर एगो हमनी की कविता।

0: पाठ सुनब जा कवि वाणी गोरख प्रसाद। तो आई सुनल जाओ यहाँ से कविता पाठ।
1: भोजपुरी के कविता बा जमुना के मथेला बा माई, सुनल जाओ एक आनंद लहल जाओ कि सपन

तर नहाली बाबू के रोले छने छन पीराली आचरा।

आई बचाऊ के ओठ जाबे तनिको झुराला माई के छाती में दूध उतराला दाहे।

आई। आखिरी बंद बा के रूई के फाहा पर राखेली देहिया मखमल बिछवना हा उनकर सनहिया कि बाहर।

के अंगना सजावेली माई, सूतल ही आके जगावेली माई। अब एगो रचना और बा जवना के मथेला बा बिहान, अब एक सुनल जा। के रेशम के डोर पर आँखी

फुहरिया अड़हुल के फुनगी पर कनइल के कनखी पर लिखलस हवा मुस्कान लवे लवे उतरल बिहान गवे गवे बिहसल परान काटल पहाड़ भइल चार पहर रतिया सालेली अस जैसे कौनो सवतिया अखुआइल भाव में छछनत हियाओ में गूंजल कोइलिया के तान लवे लवे उतरल बिहान गवे गवे बिहसल परान सनन सनन सन के पवनवा के छाती भोरे

प्राण गोमे गोमे बीसल प्राण। अब एगो रचना बा अर्जी मथेला बाय कर सुन जावी। अर्जी कर तरी पोती अपना दादा से का कह तरी कि नेह

0: हंसित अजो रहो, जिंदगी में भी हंसित अजो रहो।
1: बाबा, बहुत ही सुंदर। एक पोती अपना दादा से गुहार करत रही है, बहुत ही सुंदर एक कविता। एक कविता खाती गोरख प्रसाद के बहुत बहुत धन्यवाद कहतनी। और जैसन की रुआ सब से कहनी भाई कि गीत गवनई से कबो मन ना भरे, तो चली एगो औरी हमनी के गीत सुनल जाओ कलाकार सोहराई कुमार निराला से।

वाह वाह, अभी सुनत रहनी जा हमने के पूर्वी सुनत रही जा निर्मोहिया भैला। देखें एक औरी हमने के यहाँ से गीत सुनब जा सोहराई कुमार निराला जी से, त आई सुमल जा यहाँ से एगो झूमर।

अभी हमने के तीनों गीत सुनने जा कलाकार सोहराई कुमार निराला से, तो तीनों गीत खाती बहुत बहुत धन्यवाद कहतनी। और अब देखिए समय भी और आता तब हम चलब, और फिर आगे भी हमने के मिलब जा, कई गो बात होगी है ना। तो चली संगीता के दिव्य विदा, सभी के ओके प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी कार्यक्रम आरती। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब आपको अवगत करा दें हमारे केंद्र से आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों से।

अब से कुछ देर बाद शाम के 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे शाम के 6:20 पर। प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम के 7:30 पर और जिले की हलचल शाम के 7:47 पर प्रसारित होगा।

सुगम संगीत आप सुनेंगे शाम के 7:52 पर। सुगम संगीत में आप सुनेंगे गजल नंदिता चक्रवर्ती की आवाज में। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात के 8 बजे और रात के 10:30 पर।

सुगम संगीत आप सुनेंगे रात के 8:30 पर। सुगम संगीत में आप सुनेंगे भजन चंद्रकांत पाठक की आवाज में। सोमवासरीय संगीत सभा आप सुनेंगे रात के 10:00। कार्यक्रम में आप सुनेंगे अनवर हुसैन का सारंगी वादन राग जोग।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब सुनिए भोजपुरी बुलेटिन।

प्रणाम, ये आकाशवाणी के पटना केंद्र है। अब रउआ चंद्रमोहन से भोजपुरी में समाचार सुनी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज दिल्ली दौरा पर रवाना हो गई है। श्री चौधरी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करी हैं। जानकारी के मुताबिक वो राज्य में प्रस्तावित अलग अलग सड़क परियोजना के लेके केंद्रीय मंत्री से चर्चा करी हैं। मुख्यमंत्री के पार्टी के वरिष्ठ नेता लोगन के साथ भी मुलाकात करे के कार्यक्रम बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 2 जुलाई के पटना मेट्रो परियोजना के तहत मलाही पकड़ी स्टेशन तक मेट्रो रेलवे चलावे के घोषणा कैले बाड़न। आज पटना मेट्रो परियोजना के प्रगति के उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री परियोजना से जुड़ल अधिकारी लोगन के निर्माण कार्य में तेजी लावे के साथ ही हर चरण खातिर साफ समय सीमा तय करे के आदेश देले बाड़न। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान कहले बाड़न कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसान लोगन के आमदनी बढ़ावे, देहाती अर्थव्यवस्था के मजबूत करे और युवा लोगन खातिर रोजगार के अवसर पैदा करे में बड़ भूमिका निभा रहल बा। श्री पासवान महाराष्ट्र के परभनी में एगो कार्यक्रम के संबोधित करत युवा लोगन से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े के अपील कैले। उ कहले कि आज युवा लोगन के नौकरी मांगे के बजाय रोजगार देवे वाला बने के चाही। श्री पासवान प्राकृतिक खेती के बढ़ावा देवे और भारतीय खाद्य उत्पाद सबके वैश्विक गुणवत्ता के मुताबिक बनावे पर भी जोर दिले। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के मौका पर आज देश प्रदेश में कईन गो कार्यक्रम आयोजित कई जा रहल बा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के क्षेत्रीय इकाई के ओर से पटना के कर्पूरी सदन में आयोजित विशेष कार्यक्रम के उद्घाटन पर उप महानिदेशक रोशन लाल साहू कैले। इस मौका पर संबोधन में श्री साहू कहले कि राष्ट्रीय सांख्यिकी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभावेले। राज्य के ज्यादातर हिस्सा में मॉनसून के सक्रियता से माध्यम से भारी बरखा रिकॉर्ड कैल गई बा। मौसम विभाग अगला 3 दिन तक राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य हिस्सा

0: में कईयन जगह पर तेज हवा के साथे पानी बरसे के अनुमान जतवले बा। इस दौरान मधुबनी, सुपौल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, सारण, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण समेत कईयन जिला में अलग अलग जगह पर भारी बरखा के आशंका के लेके ऑरेंज अलर्ट जारी कल गिल बा। इहे ना पटना और आसपास के इलाका में भी सवेरे से बादल लागल बा और रुक रुक के बरखा हो रहल बा। विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक पिछला 24 घंटा के दौरान सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही में सबसे बेसी 196.4 मिलीमीटर बरखा रिकॉर्ड कइल बा। हमार अररिया संवाददाता बतौले कि जिला में अलग अलग जगह पर रात में भइल मूसलाधार बरखा के कारण कईयन जगह पर भीषण जल जमाव की स्थिति बन गइल बा। साथ ही शहर में BSNL सेवा भी प्रभावित भइल बा। केंद्रीय चयन पर्षद के कल खत्म भइल सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान चोरी के आरोप में मुंगेर पुलिस सॉल्वर गैंग के एगो सदस्य के गिरफ्तार कइले बा। पुलिस जिला के रामनगर थाना क्षेत्र के तहत नवागढ़ी उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र में छापेमारी के दौरान इस सफलता पौले बा। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद बतौले कि पकड़ाइल आरोपी राहुल से पूछताछ कल जा रहल बा। शिवहर जिला के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र के तहत छपरा सिराहा टोला में सिलेंडर ब्लास्ट के घटना में 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गई बा। ब्लास्ट से लागल आग आसपास के कईयन गो घर के अपना चपेट में ले ललक। एने पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र के करमली चक में स्थित एगो वियर हाउस में आज सवेरे लागल आग में 50 लाख रुपया से बेसी के संपत्ति जर के नष्ट हो गई। दमकल के 27 गो गाड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आगी पर काबू पौलस। आगी लगे के कारण जांच कल जा रहा बा। बेगूसराय जिला के सिंघौल थाना क्षेत्र के तहत अंग्रेजी ढाला के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 पर 2 गो 4 पहिया गाड़ी के आमने सामने के टक्कर में 4 लोग के मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बाड़न। इस सब लोग के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा बा। पुलिस क्षतिग्रस्त गाड़ी के सबके सड़क से हटा के आवागमन सुचारू करावल दिले बा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी कैलस। बोर्ड कहलस कि 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच के नया भाषा नीति के पालन ना करे के पड़ी। बोर्ड ई भी कहलस कि 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ रहल वर्तमान बैच के छात्र लोग के भी 10वीं कक्षा में पहुँचला पर तीसरी भाषा के बोर्ड परीक्षा देवे के जरूरत ना हुई। बोर्ड कहलस कि कक्षा के मुताबिक संसाधन सामग्री समय से उपलब्ध करा दिहल जाय। एकरे साथे ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक के हिजा समाप्त भइल।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में सागर फिल्म के गीत को। संगीत RD बर्मन का है और गीतकार हैं जावेद अख्तर।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म है कर्मा, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब संस्कृत में समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी दिल्ली से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: टीएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने शौर्य पुरस्कारान् प्रायच्छत्। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षणेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला आदयश्च पुरस्कृताः। हरियाणा राजस्थानयोर्मध्ये दशकत्रयेभ्यः विलंबितायाः यमुना जलविभाजन विवादस्य अद्य समाधानं जातम्। सर्वोच्च न्यायालयेन राममंदिर दान प्रकरणस्य कथित वित्तीय अनियमिततायाः न्यायालय निरीक्षण अन्वेषणस्य त्वरा याचिका निराकृता। सीबीएसई इत्यनेन साम्प्रतिकाय दशम वर्गाय त्रिभाषा नीतिः नानिवार्येति घोषिता। सर्वकारः व्यापारस्य सुगमतां प्रावर्धयितुं परिष्कार सूचनातन्त्रं प्रवर्तयति। एसआईआर इति स्वस्तनात् देहल्यां समारप्स्यते। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतीयः क्रीडकः किदंबी श्रीकान्तः यूएस ओपन क्रीडायां पुरुष एकल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने 26,2000 द्वितीय रक्षा अलंकरण समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू वर्या शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। शौर्य पुरस्काराः रक्षा सैन्य बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, राज्य केन्द्र शासित आरक्षकाणां, कार्मिकाणां च कृते प्रदीयन्ते। एते पुरस्काराः सशस्त्र बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षि बलानां, अन्य सुरक्षा अभिकरणानां च कार्मिकाणां असाधारण शौर्य कार्यान् उद्दिश्य प्रदीयन्ते। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षणेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह बंद्रा, लेफ्टिनेंट जनरल मोहेंद्र पाल सिंह च अतिविशिष्ट सेवा पदकं प्राप्तवन्तः। उपराष्ट्रपति सीपी राधा

0: षड्विंशति इत्यस्य माध्यमेन विधिमापन अधिनियमः नवोत्तर द्विसहस्र इत्यस्यान्तर्गतं परिष्कार सूचना व्यवस्था प्रवर्तिता भविष्यति इति। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे एसआईआर इत्युक्ते मतदातॄणां विशेष गहन पुनरीक्षण इति अभियानान्तर्गतं मतदातृभ्यः निर्वाचक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृह वितरणाभियानं स्वस्तनादारभ्यते। देहली नगरस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारी अशोक कुमारः अद्य नवदेहली नगरे प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् एतत् अघोषयत् यत् मतदान केन्द्रस्तरीय बीएलओ इत्याख्याः अधिकारिणः स्वस्तनादारभ्य अग्रिममासस्य नवविंशति दिनाङ्कपर्यन्तं कार्यमिदं सम्पादयिष्यन्ति इति। श्रीकुमारः अवदत् यत् अगस्त मासस्य पञ्चमदिनाङ्कात् सितंबर मासस्य चतुर्थ दिनांक पर्यन्तं अभियोगाः आक्षेपाश्च निवेदयितुं शक्यन्ते। अंतिमा निर्वाचक सूची ही अक्टूबर मासस्य सप्त दिनांके प्रकाशिता भविष्यति।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओ एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनॉग्रेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनॉग्रेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: भारत ऋतु विज्ञान विभागेन स्वस्तनं यावत् उपहिमालयीय पश्चिम बंग क्षेत्रे सिक्किम प्रदेशे च प्रचण्डतः अतिप्रचण्डतरायाः वर्षायाः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। बुधवासरं यावत् अरुणाचल प्रदेशे, असम राज्ये, मेघालये, केरलम राज्ये, माहे प्रदेशे च प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यतीत्यपि ऋतु विभागेन पूर्वानुमानं कृतम्। फीफा विश्वचषक क्रीडायाः नॉकआउट इति चरणे संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य लॉस एंजलिस नगरे प्रथमायाः नॉकआउट इति स्पर्धायां कनाडा देशः दक्षिण अफ्रीका देशं 1-0 पराजयत्। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीयः क्रीडकः किदंबी श्रीकान्तः यूएस ओपन क्रीडायां पुरुष एकल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवान् इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी।

0: नमस्कार समय में हूँ।
1: रंजुला बहन, आपको भी नमस्कार। क्या बात है, बहुत दिन बाद दिखाई पड़ी थी। लगता है कहीं
0: वही देखा, गर्मी की
1: हाँ
0: छुट्टी है लेकिन ना लेकिन
1: हाँ
0: बुतरू सब तंग करे लगे, घूमे चल
1: हाँ
0: बाहर चल। अरे भाई, तो बाहर का बिहार में इतना घूमे के बढ़िया बढ़िया जगह ही, तो बाहर के जाके का जरूरत है।
1: सही बात है।
0: तो हम ले गई पहले तो कि ऐसा जगह ले जाइए जहाँ इतिहास के भी जानकारी हो जाए और घूमे के भी मजा
1: सही
0: आवे।
1: बात है।
0: तो सटले नालंदा से राजगीर चल गए, तो दोनों जगह के बारे में भी हो गई जानकारी और घूमे के आनंद भी
1: ये
0: उठा
1: बात तो
0: ले
1: सही है कि हमारे बिहार में ऐसे ऐसे घूमने
0: ले।
1: की जगह है, ऐसे ऐसे पर्यटन स्थल है जिसका हमारे इतिहास के साथ एक, कहते हैं ना कि उसका एक ऐतिहासिक महत्व है,
0: महत्व है।
1: प्राचीन भी है और ऐतिहासिक महत्व भी है। और कहा भी जाता है कि बिहार जो है भारत का एक प्राचीन और ऐतिहासिक राज्य भी है। और वो किस तरह, क्योंकि बिहार की अपनी जो समृद्ध संस्कृति है, इसकी जो धार्मिक विरासत है, और यहाँ
0: हाँ
1: पर ऐसे ऐसे ऐतिहासिक धरोहर है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो
0: बिल्कुल
1: आपने बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: सही किया भी, या बच्चों से बिल्कुल सही कहा कि हम लोग घूमना ही है तो बिहार से ही शुरुआत करें, कि
0: और का
1: घूमने के साथ साथ कुछ जानकारी भी हो जाए, ज्ञानवर्धन यानी कि ज्ञान का भी लाभ हो जाए।
0: तो अब बहुत पैसा भी खर्च करने की जरूरत ना है। और ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ जन्म लेलथिन है और ऐसे ऐसे ज्ञान लेलथिन है, जैसे कि भगवान बुद्ध। अब उनका ज्ञान मिले पीपल के पेड़ के नीचे गया में, तो भाई

0: गया में तो एगो तो वो भी हो गले,
1: ए
0: अपना
1: बोध गया बिल्कुल।
0: मंदिर
1: हाँ
0: देख लेथिन,
1: हाँ
0: बुद्ध के ज्ञान के बारे में जानकारी हो गई, और साथ ही साथ वहाँ जो विश्व के इतना बड़ा मेला लगा है, पिंडदान हुआ है वहाँ, उस सब के बारे में और विष्णु पद मंदिर में जाके धर्म कर्म भी तो निकाल ले ली।
1: सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीजों का संबंध उनके पढ़ाई लिखाई के साथ भी है। आज जो स्कूल में पढ़ रहे होंगे या फिर
0: हाँ
1: आगे कॉलेज या फिर आगे प्रतियोगिता परीक्षा देंगे, तो
0: हाँ
1: अगर जानकारी रहेगी बिहार से संबंधित, ऐसे तो पूरे भारत से संबंधित जानकारी उनको लेनी होगी, लेकिन बिहार से संबंधित अगर प्रश्न पूछेंगे तो घूमने से जो चीजें हमारे दिमाग में ज्यादा बैठती है वो आप कितना भी किताब में पढ़ लीजिए, किताब से पढ़ लीजिए, तो उतना नहीं होता है। इसलिए जरूरी है कि कोई भी चीज को अगर बच्चों को समझाना हो और उसके बारे में जानकारी देनी हो तो उस जगह अगर आपके आसपास है तो जरूर उस जगह को घुमा
0: बिल्कुल,
1: दें।
0: राजगीर में जाके गर्म कुंड में स्नान कर ले
1: साल
0: ली,
1: के
0: और साथ ही साथ
1: हाँ
0: रास्ता में सिलाव के खाजा पर खाजा भी
1: आहा,
0: खा दे ले
1: क्या
0: ली,
1: बात क्या
0: मजा आ
1: बात
0: गले।
1: क्या बात
0: गया गेली तो वहां भी घूम फिर करके रेवड़ी वहां खा ले ली। तो तरह तरह के खाना खान पकवान और ये संस्कृति के जो आनंद भी उठा ले ली, और शिक्षा के शिक्षा भी हो गले।
1: और अभी तो आप गई होंगी राजगीर में, तो वहां तो नया नया ग्लास ब्रिज बना है, नेचर सफारी
0: कितना
1: तैयार हुआ
0: बढ़िया
1: है,
0: है
1: कितना सुंदर
0: एकदम,
1: है
0: बगले
1: ना।
0: में हम तो गेली थे, बगले में बाघ और ये सब देख के ली है।
1: सोचिए तो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, और फिर कहा भी जाता है कि गर्म कुंड में नहाने से मन को एक अलग ही या शरीर को एक अलग ही शांति मिलती है मन के साथ साथ। लेकिन अभी चूंकि गर्मी का समय है तो गर्म कुंड में आदमी उतना देर नहीं नहा पाता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। और रोप वे से अगर आप गई होंगी ऊपर में, भगवान बुद्ध की जो बड़ी
0: ओकर
1: सी
0: बातें
1: प्रतिमा
0: अलग
1: है,
0: है,
1: हाँ
0: वहां दम दनादन मोबाइल से फोटो क्लिक और करके, और फिर नीचे उतरे में भी उतने आनंद आवे है, और वो ही आनंद लेवे दुगना करे लगी वहां जे टमटम के सवारी
1: हा, अब
0: टक टक
1: कहाँ,
0: टक
1: ये
0: टक
1: सब तो
0: कर।
1: चीजें धीरे धीरे खत्म
0: हाँ
1: होते
0: तो वो
1: जा रही है
0: टमटम की सवारी
1: सवारी।
0: करके
1: हाँ
0: कुंड तक आए थे,
1: हाँ
0: और अभी तो हाल में फिलहाल मलमास मेला लगले तो देखिन तरह तरह के झूला है
1: झूला है।
0: ये है,
1: हाँ
0: और कल जाए सोमाबेन की वो घड़ी 33 कोटि के देवी देवता वहाँ निवास
1: निवास
0: करते हैं,
1: करते
0: और
1: हैं,
0: बहुत
1: बिल्कुल।
0: धार्मिक महत्व है।
1: तो आप वहां तो गई होंगी तो नालंदा भी तो जरूर घूमी होंगी, प्राचीन
0: बिल्कुल
1: विश्वविद्यालय जो है
0: बिल्कुल
1: वहां विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है, उसके अवशेष तो आज भी है, और बिहार की जो गौरवशाली शिक्षा परंपरा की वो कहानी कहता है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: बिल्कुल
1: तो और साथ ही साथ अगर हम लोग अपने वैशाली की बात करें, तो वैशाली जो है विश्व का पहला गणराज्य है।
0: और वहां के पहले नर्तकी आम्रपाली,
1: आली रही है,
0: अगर
1: बिल्कुल।
0: बात करल जाए नृत्य संगीत के, तो बिहार में पर्यटन हम स्थल पे घूम करके हम सब जान सके ही कि किस तरह से गया घराना में और वैशाली में ये नृत्य संगीत के गढ़ रहे,
1: सही
0: और
1: बात है,
0: राज नर्तकी आम्रपाली भी चुनल गई थी, जो
1: बात
0: बहुत गौरव की बात है।
1: है। और वो जो वैशाली जो है भगवान महावीर की जन्मभूमि रही है, और भगवान बुद्ध के जीवन से भी वैशाली का जुड़ाव रहा है।
0: और साथ ही साथ सोमवें बिहार के सासाराम इलाका में शेरशाह सूरी के मकबरा, जे
1: बिल्कुल।
0: कि भारत के सबसे प्रभावशाली मकबरा में से एक मान रहे हैं, और एकरा कहल जाए कि भारत के दूसरा ताजमहल के रूप में एकरा जानल जाए है।
1: सही बात है। और अभी अगर हम लोग पटना शहर की बात करें तो तख्त श्री हरि मंदिर साहब, लोग
0: गोलघर
1: हाँ दूर दूर से आते हैं
0: बिल्कुल
1: कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की
0: जन्म
1: जो है
0: स्थान
1: जन्म स्थान है, यहाँ पे लोग माथा टेकने आते हैं। तो बिहार जो है पर्यटन स्थलों से भरा है,
0: भरल है।
1: और साथ ही साथ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बना है वो तो देखने लायक है। अगली छुट्टी में आप अपने बच्चों को जरूर वहां ले जाइएगा।
0: बिल्कुल
1: फिर
0: बिल्कुल
1: ककोलत का जलप्रपात जो है, और
0: अभी तो ठंडा गर्म के मौसम में
1: मौसम में तो बहुत बढ़िया, और अभी तो
0: ककोलत
1: इतना वहां विकास हुआ है, इतना कुछ वो अच्छे से बन गया है कि हम लोग देख रहे थे कि लोग मतलब लाखों की संख्या में इतनी भीड़ वहां पे ककोलत की, हम लोग कार्यक्रम बनाते हुए भी नहीं बना पाए, कितनी भीड़ है
0: और
1: लोगों
0: अपन
1: की।
0: बगल में बड़ी पटन देवी जी शक्ति पीठ भी है एक तरह से, वहां जाके पूजा पाठ के साथ साथ शक्ति के दर्शन भी कर सके
1: हाँ, और फिर
0: हथिन।
1: मनेर शरीफ में है,
0: मनेर के
1: कैमूर
0: शरीफ जाके मनेर के लड्डू अगर ना खाए तो फिर ओकर बातें कुछ ना हो
1: हाँ, और
0: है।
1: कैमूर में कई ऐसे जलप्रपात है जो पर्यटन के लिए काफी जाने जाते हैं। तो पर्यटन से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत भी होती है, रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं अंजुला बहन, और बिहार की संस्कृति कला परंपराओं का

0: प्रचार प्रसार होता है। इससे
1: बिल्कुल
0: देश विदेश के लोग बिहार की ऐतिहासिक एवं धार्मिक विरासत से परिचित
1: तो
0: भी
1: हम तो
0: होते
1: जो कवि श्रोता लोग से भी
0: हैं।
1: कि भाई भारत के दूसरे कोना में भी जैतिन, लेकिन बिहार में
0: बिहार
1: भी अपने बहुत अच्छा अच्छा जगह
0: जगह
1: देखे
0: है
1: लगी
0: तो
1: है।
0: बिहार जरूर आइए और बिहार घूमिए, तभी आप बिहार को और अच्छे से जान
1: बिल्कुल।
0: पाइएगा। तो इतना हम लोग बिहार के पर्यटन स्थल के बारे में बात कर रहे थे, उसमें हम लोग संस्कृति के बारे में भी बात किए, तो क्यों ना हम अपने यहाँ के लोकगीत अपने श्रोताओं को
1: बिल्कुल
0: सुनवाए।
1: सुनावे के
0: तो
1: चाहिए।
0: कलाकार हैं कुंदन कुमार, सुनते हैं इनसे ये लोक भजन।

0: कितना सुंदर लोक भजन। और लोक भजन पहले सुबह सुबह दादी लोग नानी लोग गावल थीं, और अगला फिर लोकगीत हम सब फिर इनका से सुने कुंदन कुमार से।
1: और ये गीत है सगुन गीत।
0: चलो सुने।

0: वाह, बहुत सुंदर।
1: बहुत सुंदर सगुन गीत हले। और सुमा बहन, अब एगो प्रायोजित कार्यक्रम के समय हो गए हैं, तो सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

बुनियाद। नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से बुनियाद कार्यक्रम लेकर हंसते खेलते आपके घर आंगन में आ गया। हंसना खेलना इसलिए जरूरी है कि उससे आप खुश रहेंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे और इसी सोच के साथ बुनियाद कार्यक्रम को सुनेंगे, जिसमें हम नए नए कोर्सेज की आज चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से, पिछले एपिसोड में हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, जी हाँ, इसके बारे में बताया था। बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बताया था। इसके अलावा एक कोर्स और है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। एक बार फिर से आप लोगों के अनुरोध पर आपने क्वेरीज की, बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए और कहा कि एक बार फिर से सारी जानकारियां दिलवाई जाए, तो आज फिर से हम एक बार उसी पर चर्चा करेंगे। और वो कोर्स है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे। लेकिन उससे पहले दो बातें हम कर लें। बहुत सारे फोन कॉल्स आए जब हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बातचीत की थी। हाँ, डॉक्टर नीरज से हमने बातचीत की थी और जानकारियां दिलवाई थी। पूरे बिहार से फोन आया, वैसे युवा साथी

0: जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था। अच्छा लगा, सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सोमवार के दिन बने रहना होगा इसी समय इसी मीटर पर। एकदम आपके लिए खोज खोज कर हाँ ऐसे कोर्सेज को हम लाएंगे और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में ये कोर्सेज इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं आप युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए। जी हाँ, और तीन कोर्सेज हम बार बार कह रहे हैं, हमने बातचीत कर ली है बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी पर, ढेर सारे फोन आए हैं, सारे सवाल हमने रखे हैं। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एक नया कोर्स है, और आज जिस पर चर्चा करेंगे वो है फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, इस पर आज चर्चा करेंगे, विशेषज्ञ को बुलाएंगे। लेकिन फिर भी हम बार बार कहते हैं, राजेश बार बार कहता है कि भैया छोटे छोटे भाई, बड़े बड़े भाई, बड़े बड़े चाचा, बड़े बड़े दादा, अब आप समझ लीजिए कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। हाँ, टेक्निकल पढ़ाई कर लीजिए, हाँ बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा हम समझते हैं। अगर अच्छे से पढ़ाई की गई ना तो विशेषज्ञता हासिल होगी, और वो विशेषज्ञता आपको जीवन में खड़े होने का आधार, मजबूत बुनियाद देगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर पहले बता रहा हूँ, 1800-121-0051, 1800-121-0051, और एक जो मोबाइल नंबर है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, वो है 9431899002, 9431899002, और एक वेबसाइट भी है www.gnsu.ac.in। ढेर सारे फोन कॉल्स आते हैं कि बहुत सुलभ कर दिया, अब सुनते सुनते जानकारियां मिल जाती हैं, किसी दूसरे माध्यम में तो पढ़ना पड़ता है, काम छोड़ना पड़ता है, और ये तो काम करते करते बाजा बज रहा होता है और जानकारियां मिल जाती हैं। धन्यवाद आपका कि आप इतना कंसर्न हैं इस कार्यक्रम से, क्योंकि हम आपके फायदे की बात करते हैं। बहरहाल चलिए आज बातचीत करते हैं फिजिशियन, हाँ बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, इस विषय में क्या पढ़ाई है, कितने दिन की पढ़ाई है, रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में अगर इसे इंट्रोड्यूस किया गया है तो क्या सिस्टम है, सारी चीजों पर बात करेंगे। चलिए आज के अतिथि से सबसे पहले जानते हैं उनका परिचय।
1: नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार, डायरेक्टर नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुआर।
0: उम्मीद है आप ठीक से होंगे। एक व्यक्तिगत सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, उस जमाने में हाँ ये कोर्स जो है ना कोविड था ना कुछ और चीजें थी, तो इस तरीके के कोर्सेज को चुनने के लिए आपको किसने प्रेरित किया, क्या सोच थी उस समय?
1: नहीं, वो तो जब मैं बचपन में जब क्रिकेट देख रहा होता था या कोई भी स्पोर्ट्स देख रहा होता था, तो जैसे किसी खिलाड़ी को चोट लगी तो मैं देखा कि कोई जना आया, उसने कुछ लगाया, करा एक्सरसाइज, कुछ कराई, नौ खिलाड़ी वो फिर से खेल रहा है, तो उस वक्त मुझे लगा कि ये क्या है, तो पता चला कि ये फिजियो है। तो फिर मेरा उस वक्त से थोड़ा सा इंक्लिनेशन आया कि इस कोर्स के प्रति कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए, और फिर जाके फिर मैंने ये कोर्स।
0: नीरज जी, जमाना बदल गया, बहुत पानी बह गया, हाँ आज टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, और टेक्निकल पढ़ाई के विषय में क्या कहना चाहिएगा आप?
1: क्योंकि अब हर कोई चाह रहा है कि हमें इमीडिएटली पढ़ाई के बाद कुछ ना कुछ तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, और इसके लिए टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन, उसी के बाद ही हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे।
0: टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन फॉर जॉब, फॉर ए बेटर फ्यूचर, है ना? इसीलिए कहते हैं भैया टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, इधर उधर मत तको, इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ अगर आपने किया है तो हेल्थ सेक्टर में टेक्निकल पढ़ाई की भरमार है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, और आज चर्चा करने जा रहे हैं बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, हाँ इस विषय में क्या, कहाँ, कैसे हो सकता है, कुछ भी बताएंगे। बहरहाल नंबर एक बार बताएं, फिर डॉक्टर नीरज से हम पूछेंगे बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के बारे में। नंबर नोट करें, 9431899।

0: 1-800-943-1899-002 और 1-800-121-0051। डॉक्टर नीरज बताइए। हाँ, हमारे सुनने वालों को, युवा साथियों को, उनके माता पिता को बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के विषय में।
1: ये बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज ये 4 साल का कोर्स है और इसमें जिस 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। ये एक बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटिव है MBBS का। जैसे इस कोर्स को करने के बाद जो फिजिशियन एसोसिएट होते हैं वो पेशेंट की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ये दोनों काम करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजिशियन। यानी इनका काम है फिजिशियन को एसोसिएट करना, यानी फिजिशियन को असिस्ट करना। कई दफा ऐसा होता है, बहुत सारे दूर दराज के सेंटर होते हैं जहां पर प्रोफेशनल या हाईली प्रोफेशनल जो फिजिशियन की पहुंच नहीं हो पाती है, तो वैसे दूरदराज के सेंटर में, कम्युनिटी सेंटर्स में, ये फिजिशियन एसोसिएट अपना रोल अदा कर सकते हैं, जहां वो छोटी मोटी बीमारियों के लिए पेशेंट को देख के उनकी डायग्नोसिस कर सकते हैं और कंसल्ट करके जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं, जिस फिजिशियन के अंडर वो काम कर रहे हैं, उनसे कंसल्ट करके उनको वो इलाज भी दे सकते हैं।
0: कितने सीटों के साथ आपने इसकी शुरुआत की है इस यूनिवर्सिटी के अंदर?
1: ये हमने अभी 30 सीटों के साथ स्टार्ट किया है।
0: क्या एलिजिबिलिटी है?
1: हाँ, इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 45% मार्क्स एग्रीगेट।
0: कैसे बच्चे आ सकते हैं?
1: नहीं, जो बिल्कुल जो अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए और पेशेंट वेलफेयर के लिए, जिनका मोटो है कि वो चाहते हैं कि हम समाज का कल्याण करें, हम पेशेंट का कल्याण करें, वो बच्चे इसमें एडमिशन लें, क्योंकि इसका मेन उनका रोल है पेशेंट वेलफेयर, पेशेंट ट्रीटमेंट, पेशेंट केयर।
0: अपॉर्चुनिटीज पढ़ने के बाद?
1: इनकी अपॉर्चुनिटीज इतनी हाई डिमांड बढ़ी हुई है कि भारत में, जैसे आप सबको पता है, आप लोग न्यूज़पेपर में भी, हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं कि डॉक्टरों की कमी है और अस्पतालों में, इसलिए ट्रेंड फिजिशियन एसोसिएट की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक रिसेंट डेटा कहता है कि अभी तक 28% इनकी डिमांड बढ़ी है फिजिशियन एसोसिएट की हमारे अस्पतालों में। साथ ही मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों, इमरजेंसी सेवाओं और डायग्नोस्टिक सेंटरों में भी 90% तक संभावना है प्लेसमेंट की। और साथ ही साथ इनकी विदेशों में भी ऑप्शन है, जैसे इनकी यूके, यूएसए जैसे देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने की बहुत ही अच्छी संभावना है।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूं राजेश और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर नीरज। जानकारियां दी जा रही है, एक नया कोर्स आया है, सिर्फ 30 सीट है, ओनली 30 सीट्स है, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज का, इसके बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। टेक्निकल पढ़ाई बार बार कहते हैं, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बताया था आपको, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, ढेर सारे सवाल आए हैं, आने वाले सोमवार के दिन हम उसका उत्तर देंगे। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के विषय में आने वाले सोमवार को एकदम बताएंगे। फिलहाल आइए जानते हैं डॉक्टर नीरज से, जहां 30 सीट ही आया है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। सबसे पहले नंबर बता दें एक बार, 9431899002 और 1-800-121-0051। हाँ डॉक्टर नीरज, नया कोर्स आया है, हाँ सारा कुछ नया है, बच्चे नए होंगे, सब कुछ नया होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या तैयारी है आपके यहाँ ओवरऑल?
1: फिजिशियन एसोसिएट के लिए हमारे पास ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सारे अवेलेबल, जो हमारे पास क्लासरूम चाहिए वो हमारे पास है, जो लैब चाहिए वो हमारे पास है। इसके अलावा क्लिनिकल पेशेंट प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास अपना हॉस्पिटल NMCH हॉस्पिटल है, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो 1200 बेडेड हॉस्पिटल है लगभग, वहाँ हमारे बच्चों का हैंड्स ऑन एक्सपोजर होने हम कराएंगे हमारे बच्चों का। क्लासेस कराने के लिए, टीचर्स के लिए हमारे पास अपने फिजिशियन एसोसिएट टीचर प्रोफेशनल्स हैं, साथ ही साथ जो मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास मेडिकल फैकल्टी है, मेडिकल टीचर्स हमारे पास। चूंकि आपको पता है कि हमारा गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत ही बड़ा कैंपस है, इस कैंपस के अंदर हमारे पास सारी बेसिक सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, साथ ही साथ स्टाफ टीचर और उनके लिए भी एकोमोडेशन है, फ्लैट्स हैं, क्वार्टर्स हैं, और जो भी बेसिक नीड की जरूरत होती है सब हमारे कैंपस के अंदर मौजूद।
0: डॉक्टर नीरज बहुत बहुत पहले तो बधाई कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं और हमें पता है कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम

0: रोहतास बिहार में जब तक पूरी तैयारी नहीं होती कोई कोर्स शुरू नहीं किया जाता। लेकिन एक सवाल हम बच्चों की तरफ से पूछना चाहते हैं कि बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल पढ़ाई, अंग्रेजी में बातचीत, तो उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी जो लेकर आते हैं और यहाँ आकर, क्या उन बच्चों के झिझक को आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में तोड़ने के लिए कोई व्यवस्था, उनकी अंग्रेजी या कोर्सेज के बारे में जानकारी या उनके ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कोई सिस्टम?
1: नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है सर आपने। नहीं, हमारे यहाँ हम लोग जैसे बच्चे हमारे एडमिशन होता है तो शुरू के एक महीने हम उनका सिर्फ इंडक्शन प्रोग्राम चलाते हैं ताकि उनको हम इस कोर्स के बारे में अवगत कराएं। हम सिलेबस स्टार्ट नहीं करते हैं शुरुआत में, पहले हम कोर्स को अवगत कराते हैं। ब्रिज कोर्स काइंड यू आप कह सकते हैं कि अभी चूंकि जस्ट वो इंटर पास करके इस प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन के कोर्स में आए हैं, तो उसका जो गैप है उसको हम लोग फुलफिल करते हैं। रहा बात इंग्लिश का, तो हमारे यहाँ के जितने भी टीचर हैं वो ड्यूअल मोड में पढ़ाते हैं, दोनों मोड में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश, कम्युनिकेशन इंग्लिश की क्लासेस भी लगाते हैं बच्चों के। और हमारे पास एग्जांपल्स हैं सर, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं जब वो फर्स्ट ईयर में आते हैं तब उनसे आप पूछेंगे जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनका क्या स्टैंडर्ड या क्या लेवल रहता है, और अभी उनका आप देखेंगे लेवल और स्टैंडर्ड, तो पीरियोडिकली दे आर इम्प्रूविंग themselves। और इस पे हमारे टीचर, हम लोग बिल्कुल मिलजुल कर काम करते हैं और हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि हमें बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है।
0: थैंक यू प्रोफेसर नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आप सबों के गाइडलाइन में जो बच्चे आएंगे, 30 बच्चे आएंगे, उनका सही मार्गदर्शन होगा, सही पढ़ाई होगी और करियर की नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी। अभी हमारी बातचीत चल रही थी बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, ये एक नया कोर्स आया है, इस पर सिर्फ 30 सीट है इंटरमीडिएट बायोलॉजी के लिए। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो नंबर डायल करें, टोल फ्री नंबर 1-800-121-0051 और दूसरा नंबर है 9431899002, ये नंबर है। तो ढेर सारी संभावनाएं हैं टेक्निकल पढ़ाई में। युवा साथियों, सोचिए, विचारिए और निर्णय लीजिए, फोन से बात कीजिए। फिलहाल थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, सासाराम, बिहार।
3: हाँ, तो अंजुला बहन, हम लोग सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
4: हाँ।
3: और इसी के साथ हमारा चौपाल कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम लोग थोड़ी देर बाद बातचीत करेंगे खेती गृहस्थी में।
5: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: तो खेती गृहस्थी में,
4: हाँ हाँ,
3: अभी हम लोग सुनेंगे एक प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
4: चलो सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।
6: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हेलो, नमस्कार, मैं एना कर्मा उड़ान कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, हमेशा की तरह आप सबसे पहले हमारा नंबर लिख लें, क्या पता कार्यक्रम सुनने के बाद आप हमसे अपने अनुभवों को या अपने प्रश्नों को साझा करना चाहें। तो श्रोताओं, हमारा नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। श्रोताओं, छोटी छोटी गलत फहमियों से हो रहे हैं रिश्ते खत्म। इन गलत फहमियों को मिटाकर रिश्ते बचा लीजिए। जी हाँ, ऐसे ही रिश्तों की डोर को टूटने से बचाने के लिए पहले सामने वाले की बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। जी हाँ, बिना सुने ही अगर आप अपने विचारों को दूसरों को सुनाने लगे तो यकीन मानिए आप अपनों से दूर हो जाएंगे। श्रोताओं, कभी कभी सामने वाला हमारे फायदे की

बात या फिर हमारे फायदे का काम करता है? जी हाँ, परंतु हम उसकी बात या हम उसके काम के मतलब को सुने व समझे बिना ही अपनी नकारात्मक सोच से उसको गलत समझ लेते हैं और अपने शुभ चिंतक को खो देते हैं और बाद में पछताते हैं। जी हाँ, बाद में पछताने से अच्छा है कि समय रहते ही हम सामने वाले के कहे गए या किए गए कार्यों के बारे में पूछ लें। जी हाँ,

0: समुद्र के किनारे घूमने निकला। वो समुद्र के किनारे घूमकर बहुत ही खुश हो रहा था। जी हाँ, अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसके पैरों के निशान, जो कि गीली रेत पर बने थे, वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये देखकर वो केकड़ा बहुत खुश हो गया। अरे वाह, मेरे पैरों के निशान कितने प्यारे लग रहे हैं। परंतु उसकी ये खुशी ज्यादा समय तक ना रह सकी। जी हाँ, समुद्र की एक लहर आई और उस केकड़े के पैरों के निशान को मिटा गई। अब ये देखकर तो केकड़े को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में समुद्र की लहर से बोला, अरे ओ लहर, तुम तो मेरी सबसे अच्छी और प्यारी मित्र हो, फिर तुमने मेरे इतने सुंदर पैरों के निशान क्यों मिटा दिए? ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से मुझे कितना दुख पहुंचा है? ये सब सुनकर लहर ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, भाई मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी इस हरकत से बहुत गुस्सा आया है और बहुत बुरा भी लगा है, परंतु जरा नजर उठाकर दूर देखो, वहाँ कुछ मछुआरे आ रहे हैं और वो केकड़ों का शिकार करते हैं। तुम्हारे पैरों के निशान देखकर वो यहाँ जरूर आ सकते हैं। वो मछुआरे यहाँ ना आए इसीलिए मैंने तुम्हारे पैरों के निशान को मिटा दिया, जिससे तुम्हारी जान बच सके। जी हाँ, समुद्र की ये बात सुनकर केकड़े को अपनी बात और अपनी सोच पर पछतावा हुआ और अपने मित्र पर बहुत ही गर्व हुआ। जी हाँ, कुछ ऐसे ही घटना पर आधारित है हमारा आज का नाटक।
1: यह एक पारिवारिक नाटक है जिसमें सभी मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। आइए सुनते हैं कि इस नाटक में कब और क्यों एक गलतफहमी ने जन्म ले लिया और उसको कैसे दूर किया गया।

0: अरे अंजलि, देखो तो दरवाजे पर कोई आया है।
1: जी माँ जी। अरे महक दीदी, आप कैसे हो?
2: ठीक हूँ भाभी।
1: आओ दीदी आओ, अंदर आओ, लाओ सामान मुझे दे दो।
2: भाभी, माँ कहाँ है?
1: दीदी वो तो अपने कमरे में है।
2: ठीक है, मैं माँ के कमरे में ही जाती हूँ।
1: ठीक है दीदी, मैं आपके लिए वही चाय और पानी लाती हूँ।
2: ठीक है भाभी। माँ, माँ जी नमस्ते, कैसे हो?
0: अरे महक बेटा, आओ आओ।
2: क्या बात है माँ, बहुत आराम हो रहा है, तबीयत तो ठीक है आपकी?
0: हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू सुना, तेरे सास ससुर और रमेश सब ठीक है ना?
2: हाँ माँ, सब ठीक है।
0: और सुना, कैसे आना हुआ?
2: अरे माँ, रमेश को कहीं कुछ काम था और मेरी ननद सुदेश आई हुई थी। मैंने माँ जी से पूछा कि मैं अपनी मम्मी को मिलने जाऊंगी और कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। तभी मम्मी जी ने बोला, हाँ हाँ चली जाओ, सुदेश तो आ ही गई है, सब काम देख लेगी, तो मैं यहाँ आ गई तुमसे मिलने के लिए।
0: अच्छा किया बेटा।
3: तभी अंजलि चाय और कुछ गरम गरम पकौड़े लेकर आती है, जो महक को बहुत पसंद थे। पकौड़े को देखकर महक बहुत खुश हो गई।
2: अरे वाह भाभी, मजा आ गया पकौड़े खाकर।
0: अरे अंजलि बेटा, तू भी बैठ हमारे साथ, पकौड़े खा।
1: अरे मम्मी जी, किचन में काम पड़ा है बहुत।
0: अरे हो जाएगा काम, दो घड़ी हमारे साथ भी तो बैठ।
1: पर मम्मी जी।
0: पर वर कुछ नहीं।
1: ठीक है माँ जी।
2: भाभी, सच में पकोड़े बहुत स्वाद थे, पेट भर गया पर मन नहीं भरा।
1: कोई बात नहीं, कल फिर बना दूंगी।
2: ओहो भाभी, आप बहुत अच्छी हो।
0: बस बस, अब मेरी बहू को नजर मत लगाओ।
3: ऐसे ही बात करते करते पूरा दिन निकल जाता है और शाम के समय अंजलि डिनर की तैयारी करने लगती है। तभी वहाँ महक आ जाती है।
2: अरे भाभी, क्या बना रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है।
1: तुम्हारे पसंद के राजमा चावल और साथ में आलू का रायता।
2: अरे भाभी, आज तो मजा ही आ जाएगा, मैं भी आपके साथ काम में हाथ बटाती हूँ।
1: अरे अरे नहीं, मैं कर लूँगी।
2: अरे भाभी, जल्दी काम करके आराम से बैठकर बातें करेंगे फिर।
1: ठीक है दीदी।
3: तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है।

0: महक दरवाजा खोलती है तो पास की एक आंटी जी आती है। महक उनको अपनी माँ के कमरे में ले जाती है। तीनों कमरे में खुश होकर बातें करते हैं। आंटी जी बोली,
1: अरे कमला जी, आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं। आपके पास तो इतनी अच्छी बेटी और बहू है।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बेटी तो बहुत मीठी है और बहू नमक है नमक।
0: उनकी ये बातें सुनकर अंजलि चुप रहती है। उसको बहुत बुरा लगता है परंतु कुछ बोलती नहीं और अब पहले की तरह काम में लगी रहती। परंतु अब उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वह सोचती है, मैं सारा काम बहुत अच्छे तरीके से करती और माँ का भी पूरा ध्यान रखती, उन्हें कोई परेशानी नहीं होने देती। फिर महक अपने घर चली गई, पर अंजलि अभी भी चुप ही थी। कमला जी ने उसके बदले व्यवहार को देखकर उससे बात करने की सोची।
2: अंजलि, क्या बात है, आजकल बहुत चुप रहने लगी हो, कोई बात है क्या, तबीयत तो ठीक है?
1: ठीक है मम्मी जी।
2: फिर ऐसे चुप चुप क्यों हो?
1: मम्मी जी, एक बात पूछूं?
2: हाँ हाँ बेटा पूछ।
1: जब सरोज आंटी आई थी तब उनके सामने आपने महक को तो मीठा और मुझे नमक बताया, आखिर मेरी सेवा में क्या कमी रहेगी जो आपने मुझे नमक बताया?
2: हे भगवान, तुम बस इस बात से परेशान हो?
1: हाँ मम्मी जी, आपकी वो बात मुझे चुभ गई, तब से मुझे समझ नहीं आ रही आखिर आपने मुझे ऐसा क्यों बोला।
2: अरे बेटा, तुम मेरी बात को समझी नहीं।
1: क्या मतलब मम्मी जी?
2: सुन बेटा, महक मेरे लिए मीठा है। अब ये बात बता, मीठा क्या मैं रोज खा सकती हूँ? रोज मीठा खाकर मैं रह सकती हूँ क्या?
1: नहीं मम्मी जी।
2: अब ये बात बता, नमक के बिना मेरा एक दिन भी गुजर सकता है क्या?
1: नहीं मम्मी जी।
2: इसलिए तुझे नमक कहा, क्योंकि बेटी तो महीने दो महीने में आ जाए उतना ही बहुत होता है। मेरे लिए तो बेटा तू तो मेरा नमक है नमक, तेरे बिना तो मेरा एक काम भी नहीं हो सकता। तू ही तो है जो मुझ बुढ़िया का सहारा है, तू तो मुझे हर दिन हर पल चाहिए।
1: अरे मम्मी जी सॉरी, अब समझी कि आपने मुझे नमक क्यों कहा।
2: शुक्र है समय रहते तूने मुझसे पूछ लिया, नहीं तो मन ही मन ना जाने क्या क्या सोचकर मन खट्टा करती रहती।
1: अरे मम्मी जी वो मैं बस।
2: बेटा मन में कोई बात आए तो पूछ लिया कर, आखिर हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं।
1: मुझे माफ करना मम्मी जी।
2: बेटा जी माफी नहीं, तुम्हें तो सजा मिलेगी, तुझे मेरे लिए चाय बनाने की सजा मिलेगी।

श्रोताओं, आपने सुना कि कमला जी ने अपनी बहू को नमक क्यों कहा। सच है, सच है। एक सास के लिए उसकी बहू नमक की तरह ही होती है, जो उसके अंतिम समय तक उसकी देखभाल करती है। तो श्रोताओं, सुना आपने किस तरह से कमला जी की कही हुई नमक और मीठे वाली बात का अंजलि ने कुछ और ही मतलब निकाल लिया। इस कारण अंजलि मन ही मन अपनी नकारात्मक सोच में उलझने लगी और अपनी सास से भी इसके विषय में नहीं पूछ पा रही थी। परंतु सास कमला जी ने उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखकर उसकी उदासी का कारण पूछा। पहले तो बहू आनाकानी करने लगी, परंतु सास के बार बार पूछने पर बहू ने सास से पूछ ही लिया, मेरी सेवा में कहाँ कमी रह गई जो आपने मुझे नमक कहा। और सास कमला ने भी बात की नजाकत को समझते हुए उसकी शंकाओं को दूर किया और बहू ने भी उनकी बात को समझा और अपनी गलत फहमी को स्वीकार करते हुए सास से माफी भी मांगी। तो श्रोताओं, बहुत से घरों में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। सामने वाला आपसे कुछ और कहना चाहता है, परंतु आप उसके शब्दों के मूल्यों को ना समझकर उसका अपने विचार अनु

अनुसार मतलब निकाल लेते हैं, या सामने वाला आपकी बात को सही से समझ नहीं पाता, जिससे कि रिश्तों में दरार पड़ जाती है और दो और सालों के रिश्ते एक पल में टूट जाते हैं। तो श्रोताओं, गलतफहमियों को अपने रिश्तों से दूर करें, और इसका एक ही उपाय है। जी हाँ, आपस में बैठें और बातचीत करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के कहे हुए बातों को सुने। आपस में बातचीत करने से बहुत बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। श्रोताओं, ये समय है कि हम अपने कुछ श्रोताओं के नाम कार्यक्रम में साझा करें। जी हाँ, हमारे श्रोता हैं कृपाल सिंह उर्फ मंत्री जी सीतापुर यूपी से, गंगूरदास जी समस्तीपुर से, नसरुद्दीन सिद्दीकी जी यूपी से, डॉक्टर शिव प्रसाद प्रतापगढ़ से। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और श्रोताओं, अब ये समय है कि आप अपने प्रश्नों को या फिर आज की कहानी से संबंधित अनुभवों को हमसे साझा करें। तो वक्त जाया ना करें, अपना फोन उठाएं और हमें कॉल करें। जी हाँ श्रोताओं, हमारा नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। और हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। तो श्रोताओं, मुझे एना कर्मा को दीजिए अनुमति, आपसे हम जल्द मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: हाँ तो सुमा बहन, अभी हमने सब सुनते लिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान और किसान भाई के कुछ फायदा के बात भी करे के चाहिए कि भाई खेती
1: एकदम
0: गृहस्थी तो मुख्य रीढ़ है हम सब लगे,
1: एकदम
0: तो काहे ना हम सब कुछ ऐसा विषय ले ही जैसे कि कुछ क्षेत्र में बाढ़ आ जाए या फिर ओकरा में
1: अभी तो
0: खेती
1: क्या है ना
0: जाए।
1: कि बारिश का मौसम आने ही वाला है और कई कई जगह ऐसे होते हैं कि पानी से भर जाता है या फिर कहीं कहीं ऐसे पानी भरता है कि वो बाढ़ का रूप ले लेता है। ऐसे में जो होते हैं कि किसानों को कृषि कार्य करने में बहुत दिक्कत हो जाती है,
0: तो
1: तो
0: आपदा में भी देखते हैं कि अवसर
1: खोजना।
0: खोजल जाए
1: हाँ
0: और वो अवसर बहुत फायदेमंद हो भाई। तो बाढ़ के पानी के कारण खेत में कितना दिन तक जल भराव रहे, यही से कुछ खास फसल चुन के खेती करना जरूरी हो जाए, जैसे कि धान।
1: हाँ
0: अब बाढ़ के पानी सहे वाला उन्नत धान के किसान भाई के चुनाव करे के चाहिए। जल जल लहरी स्वर्ण सब और एक और NDR 82 जैसन किस्म के धान हो वही, जे कि कितना दिन तक पानी में डूबे रहे के बाद भी खराब ना हो वही। तो इस तरह के धान के चुनाव करे के चाहिए कि पानी में है, कीचड़ है, डूबल रहे तभी वो पानी के सोख ले ले। तो
1: बिल्कुल
0: ऐसे फसल उपजा करके वो अपना आर्थिक जो है वो मुनाफा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और ये जो बाढ़ है ना कहीं हर वर्ष ये बाढ़ आता ही है और किसानों के लिए बहुत कह सकते हैं कि बड़ी प्राकृतिक आपदा के रूप में। तो ये जो बाढ़ का क्षेत्र की बात करें हम लोग, तो हमारे बिहार में तो आता ही है, इसके अलावा असम में, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और जिससे हमारा कृषि कार्य बहुत नुकसान भी होता है इससे। और आपने सही कहा कि ऐसे आपदा में भी आपको अवसर ढूंढना है, तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ऐसी फसलों को बढ़ावा देना चाहिए अर्जुला बहन
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: जो जल भराव सहन कर सके,
0: बिल्कुल
1: समय पर मौसम की जानकारी, साथ ही साथ मजबूत तटबंधों का निर्माण और उचित जल निकासी व्यवस्था तथा फसल बीमा योजना के जो प्रभावी क्रियान्वयन है उससे किसानों को राहत प्रदान कर सकता है।
0: और साथ ही साथ देखते हैं कि कुछ खेती के बाद जैसे धान के बात कह ली तो वैसे ही खस के जो खेती है वो बहुत फायदेमंद है।
1: मंद
0: बिहार
1: होता है।
0: जैसे
1: हाँ
0: क्षेत्र में खस के खेती बाढ़ग्रस्त क्षेत्र लगी वरदान मानल जा है।
1: सही बात है।
0: और एकर पौधा 10 से 15 दिन तक पानी रहे पर भी ना गल है। तो ऐसे ही खेती के चुनाव करे के चाहिए और खेत में जब नमी

0: और पानी ज़्यादा हो तो जूट, गेहूं, चना, मटर और मसूर की खेती भी जीरो टिलेज विधि के प्रयोग से कर सका हथिन।
1: हाँ ज्वेला बहन, बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं कि ये सब वो सब फसलों को आपको बाढ़ के समय लेके मतलब उसकी खेती करनी चाहिए, जिससे उस बाढ़ के समय में भी उससे अधिक मुनाफा मिल सके। तो कई फसलों के नाम हमारी अंजुला बहन बता रही हैं। साथ ही साथ अंजुला बहन, वैज्ञानिक खेती, साथ ही साथ उन्नत बीजों का उपयोग करना भी बहुत जरूरी है।
0: बहुत हाँ
1: और हमारी जो सरकार भी इसके लिए काफी सहायता भी कर रहे हैं कि ताकि हमारे जो कृषक हैं उनको ऐसे समय में, इस आपदा में भी उनको कोई नुकसान ना हो और कृषि कार्य जो है सुरक्षित रूप से की जा सके। और हम सभी जानते हैं कि बाढ़ जो है एक गंभीर प्राकृतिक चुनौती है, लेकिन अगर हम लोग उचित योजना, आधुनिक कृषि तकनीक और सरकार तथा समाज के सहयोग से इस आपदा में भी काफी हद तक हम लोग काम, हमारे किसान भाई काम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और बाढ़ के पानी जैसे थोड़ा सूख जाए तो टमाटर और बैंगन, फूल गोभी और पत्ता गोभी जैसन भी सब्जी उगावल जा सके। और जो बाढ़ के पानी से जो मट्टी के जो कीचड़ हुए वो
1: कीचड़,
0: एक तरह
1: हाँ
0: से कहते हैं
1: हाँ
0: कि ओकरा में उर्वरक के क्षमता माने खाद की क्षमता
1: क्षमता
0: ज्यादा हो
1: ज्यादा
0: जाए
1: होता है।
0: और
1: हाँ
0: वो उपजाऊ भूमि बन जाए। तो ऐसे ने किसान भाई की इस तरह से चुनाव करे के चाहिए और ध्यान में रखे के चाहिए कि कैसे हम आपदा के अवसर बना सके ही।
1: साथ ही साथ वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाए और इन क्षेत्रों में जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कृषि को लाभदायक रूप से टिकाऊ और समृद्ध बनाने के लिए आजकल तो बहुत सारे नए नए तकनीक आ रहे हैं, तो उसका भी हमारे कृषि जो किसान हैं वो तो आजकल काफ़ी जागरूक है और नए
0: बिल्कुल।
1: नए जो अवसर मिल रहे हैं, नए जो तरीके हैं उसके बारे में भी उनके अंदर जानने की एक जिज्ञासा होती है। तो ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से आप ऐसे फसलों को उगा सकते हैं जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के
0: ऐसे
1: लिए
0: कुछ
1: फल
0: तकनीक
1: है।
0: के बात करे थे तो जलहरी, स्वर्ण के उपयोग और टेरा टीले जैसन तकनीक बाढ़ के पानी के उतरे के बाद अच्छा से खेती तकनीक के विधि से कर सका हथिन।
1: बिल्कुल। और बाढ़ को केवल हम लोग, अगर हमारे किसान भाई आपदा ना मानकर अगर उचित प्रबंधन के माध्यम से खेती करे तो इससे कृषि में भी विकास होगा और उसको और अवसर उससे
0: मिल सके
1: मिल
0: और अपना
1: सकता है।
0: आर्थिक जो क्षति से बच सका हथिन।
1: बिल्कुल।
0: तो हम सब ये सब बाढ़ग्रस्त क्षेत्र लगी कौन सा कृषि कैसे करल जाए ये सब चर्चा के लिए।
1: तो
0: और
1: अब
0: किसान
1: थोड़ा सा
0: भाई के वही गीत नाद सुनावे के समय हो गए हैं तो कहे ना सुनने ही लोकगीत कुंदन कुमार के स्वर में।
1: तो सुनते हैं।

0: हम लोग सुन रहे थे कुंदन कुमार से ये पूर्वी लोकगीत। तो सभी गीतों के लिए कुंदन कुमार को बहुत
1: बहुत
0: बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद। और
0: और
1: अब बेरा हो गए है चले के, समय रिया गए है, तो विदा ली श्रोता लोग से भी और अपने से भी।
0: एकदम
1: नमस्कार सोमा बहन।
0: नमस्कार अंजुला बहन।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरव

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से नई दिल्ली में की मुलाकात, विकास परियोजनाओं पर हुई चर्चा। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, निर्धारित समय पर होगा पंचायत चुनाव, आरक्षण का नया रोस्टर भी लागू किया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे राज्यपाल सैयद अता हसनैन। और पूरे राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ी, मौसम विभाग ने मधुबनी और सुपौल समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य में प्रस्तावित विभिन्न राजकीय उच्च पथ योजना, पुल निर्माण समेत विभिन्न परियोजनाओं को लेकर प्रगति की समीक्षा की। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से राज्य में सड़क संपर्कता को नई गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने राज्य की सड़क योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया है। इस दौरान पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौधरी का आज पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2 जुलाई को पटना मेट्रो परियोजना के तहत मलाही पकड़ी स्टेशन तक मेट्रो रेल के परिचालन के लोकार्पण की घोषणा की है। नई दिल्ली रवाना होने से पहले आज पटना मेट्रो परियोजना की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने परियोजना से जुड़े अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ ही प्रत्येक चरण के लिए स्पष्ट समय सीमा तय करने के निर्देश दिए हैं। पंचायती राज्य मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर कराए जाएंगे। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव ईवीएम से होगा और आरक्षण का नया रोस्टर भी लागू किया जाएगा।
1: सारी तैयारी चल रही है राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में, विभाग के स्तर से पूरे सहयोग के साथ निर्वाचन आयोग के निर्देशन में किया जा रहा है। रोस्टर चूंकि 10 साल पूरे हुए हैं रोस्टर को लागू हुए, इस बार आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा। और इसके अलावा बाकी जो चुनाव से संबंधित जो सामान्यतः प्रश्न रहते हैं लोगों के मन में, चुनाव सही समय पर कराए जाएंगे। 2021 में दिसंबर के समय पर जाकर चुनाव का काम पूरा हुआ था, उसी कार्यकाल को देखते हुए इस वर्ष भी चुनाव कराए जाएंगे। मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराए जाने हैं, लोगों को सहूलियत होगी, तेजी भी आएगी।
0: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि खाद्य

0: प्रसंस्करण उद्योग किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। श्री पासवान ने महाराष्ट्र के परभणी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवाओं से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को नौकरी मांगने की बजाय रोजगार देने वाला बनना चाहिए। श्री पासवान ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और भारतीय खाद्य उत्पादों को वैश्विक गुणवत्ता के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में के दौरान आरोग्य सेतु के दूसरे चरण आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक समेत कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इनका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना और देश में डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को लोकप्रिय बनाना है। श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ये कदम स्वस्थ भारत और अधिक डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में देश की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के गठन के 5 वर्ष पूरे होने पर सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि विकसित भारत और समृद्ध बिहार के निर्माण में सहकारिता क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। श्री यादव पटना में सहकारिता सप्ताह समारोह के उद्घाटन और जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय सहकारी नीति के माध्यम से पैक्स और जमीनी स्तर की सहकारी संस्थानों को अधिक सशक्त बनाया जाएगा।
1: सहकारिता मंत्रालय 5 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सहकारिता समारोह मनाने का काम किया है। बिहार के राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2026 के तहत बिहार में भी सहकारिता नीति 2026 जल्द ही लागू है। इसको बड़ा करके 5 करोड़ करना है। इस अभियान में हम सब लोग हैं, चूड़ा का प्रोसेसिंग करना है, पेट्रोल पंप खोलना है, गैस एजेंसी खोलना है, जैसे और भी कई कार्य करने के लिए पैक्स को प्रेरित करने का काम किया है।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा है कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा है कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपितों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन भारत सरकार की ओर से ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होंगे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार 4 से 9 जुलाई तक स्वर्गीय खामेनेई के जनाजे और उन्हें दफनाने की रस्म की जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: आकाशवाणी एट 90। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के विस्तार ने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग बना दिया है। तेलंगाना के मेडचल में विकसित भारत स्टूडेंट कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि तकनीक के इस दौर में राजनेताओं को भी जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए।
1: जब कंप्यूटर आया, अवेयरनेस की दुनिया आगे आई, तो आज हर व्यक्ति अपने राइट के साथ साथ, अपने ड्यूटी के साथ साथ अपने राइट के प्रति बहुत ही संवेदनशील हो गया है। और अवेयरनेस ने निश्चित रूप से लोगों को जागरूक किया है। तो हम जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको अब ये अधिकार नहीं है कि हम कुछ कह दे और जनता भूल जाए। जनता याद रखती है और सही समय पर चोट भी करती है, और ये मुझ पर भी लागू है, यानी भाजपा पर भी, और ये सभी दलों पर लागू है।
0: राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर आज देश प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की क्षेत्रीय इकाई की ओर से पटना के कर्पूरी सदन में आयोजित विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन उप महानिदेशक रोशन लाल साहू ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री साहू ने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य के अधिकतर भागों में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। इसके प्रभाव से विभिन्न स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में अनेक स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान मधुबनी, सुपौल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, सारण, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण समेत कई जिलों में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश की आशंका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के मधुबनी एवं सुपौल जिलों में एक दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं सारण जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी सुबह से बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही में सबसे अधिक 196.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। हमारे अररिया संवाददाता ने बताया है कि जिले में विभिन्न स्थानों पर देर रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई स्थानों पर जल जमाव की भीषण स्थिति बन गई है। साथ ही शहर में BSNL सेवा भी प्रभावित हुई है। रोहतास जिले में आज दोपहर बाद हुई भारी बारिश के कारण सदर अस्पताल समेत कई प्रमुख कार्यालयों में पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इधर मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड अंतर्गत धौरी गांव में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में एक किशोरी की मौत हो गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। विधानसभा अध्यक्ष नगर के ऐतिहासिक लाल चौक भी गए। उन्होंने कहा कि कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सभी को आकर्षित और प्रभावित करती है। केंद्रीय चयन परिषद की कल संपन्न सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान कदाचार के आरोप में मुंगेर पुलिस ने सॉल्वर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जिले के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवागढ़ी उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र में छापेमारी के दौरान ये सफलता प्राप्त की। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पकड़े गए आरोपित राहुल से पूछताछ की जा रही है। बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र अंतर्गत अंग्रेजी ढाला के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 पर आज सुबह 2 चारपहिया वाहनों की आमने सामने की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन सभी का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटाकर यातायात व्यवस्था सुचारू कर दी है।

0: शिवहर जिले के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत छपरा सिरहा टोला में सिलेंडर विस्फोट की घटना में चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए। विस्फोट से लगी आग ने आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इधर पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत करमली चक स्थित एक वेयर हाउस में आज सुबह आगलगी की घटना में 50 लाख रुपये मूल्य से अधिक की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। किशनगंज के बहादुरगंज में पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ हेरोइन की तस्करी में शामिल गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से लगभग 3 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन बरामद की गई है। शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कारे गांव में कल हुई एक युवक की हत्या के मामले में 2 नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। SDPO राकेश कुमार ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। सीवान के कचहरी दुर्गा मंदिर में चोरी के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी किया गया हार बरामद कर लिया गया है। कटिहार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत शरीफगंज में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से नई दिल्ली में की मुलाकात, विकास परियोजनाओं पर हुई चर्चा। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, निर्धारित समय पर होगा पंचायत चुनाव, आरक्षण का नया रोस्टर भी लागू किया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे राज्यपाल सैयद अता हसनैन। और पूरे राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ी, मौसम विभाग ने मधुबनी और सुपौल समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: प्रदीप
2: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है जहानाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आभाष रंजन।
1: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के तहत जहानाबाद जिले के 41,713 किसानों के बैंक खातों में 8,34,26,000 रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात का सीधा प्रसारण जिला मुख्यालय के साथ साथ सभी प्रखंड मुख्यालयों में भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 समान किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि इस राशि से किसानों को खरीफ फसलों की बुआई, बीज, उर्वरक, कीटनाशक तथा अन्य कृषि निवेश की व्यवस्था करने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने किसानों से EKYC और भू सत्यापन जैसी आवश्यक प्रक्रियाएं समय पर पूरी कराने की भी अपील की, ताकि भविष्य में उन्हें योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे। जिले के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित जन सहयोग सह जन कल्याण शिविरों के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा 121 से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया तथा 702 पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया।

0: शिविर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत, श्रम, शिक्षा, कृषि, राजस्व, स्वास्थ्य तथा अन्य विभागों से संबंधित मामलों का भी निस्तारण किया गया। जिला प्रशासन ने बताया कि इन शिविरों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को लोगों के घर के निकट उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने जिलावासियों से अपील की है कि वो आगामी शिविरों में भी अधिक से अधिक संख्या में भाग लें तथा केंद्र तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत संचालित डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की ओर से सखी वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्याओं में महिलाओं और किशोरियों ने भाग लिया। इस दौरान उन्हें महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा, महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वावलंबन और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अन्य अपराधों के प्रति सजग रहने और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभागों से सहायता लेने की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना है। मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण अर्थात संबल योजना के अंतर्गत आयोजित प्रखंड स्तरीय जन सहयोग सह जन कल्याण शिविर में 6 दिव्यांग जनों के बीच निशुल्क बैटरी चलित ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार दिव्यांग जनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सहायक उपकरण उपलब्ध होने से दिव्यांगजन शिक्षा, रोजगार तथा दैनिक जीवन के कार्यों में अधिक सुविधा के साथ भागीदारी कर सकेंगे। लाभार्थियों ने भारत सरकार के इस प्रयास के लिए प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि इससे उनकी आवाजाही पहले की तुलना में अधिक आसान होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला गंगा समिति, नमामि गंगे खेल विभाग, महिला विकास निगम तथा जिला आयुष के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय खेल मैदान में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों, विभिन्न विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। योग प्रशिक्षक अमर कुमार ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम तथा ध्यान की विधियों का अभ्यास कराया। उन्होंने बताया कि नियमित योग करने से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक तनाव भी कम होता है और व्यक्ति स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकता है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने नियमित योग करने का संकल्प भी लिया। जहानाबाद जिले में मुहर्रम शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे के वातावरण में संपन्न हुआ। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के संयुक्त नेतृत्व में नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला गया तथा लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। ड्रोन वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लगातार निगरानी रखी गई। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त चिकित्सा दल, अग्निशमन वाहन तथा जिला नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय रखा गया था। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शांतिपूर्ण आयोजन के लिए जिलेवासियों, विभिन्न अखाड़ा समितियों, जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों के सहयोग की सराहना करते हुए सभी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन भविष्य में भी इसी तरह सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे जहानाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आभाष रंजन।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुनिए गजल नंदिता चक्रवर्ती की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुन रहे थे गज़ल नंदिता चक्रवर्ती की आवाज़ में। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आतिफ असलम की आवाज़ में कलयुग फिल्म के इस गीत को। संगीत निर्देशन गौहर मुमताज का है और गीतकार हैं सईद कादरी।

आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गाना सुनिए राहत फतेह अली खान की आवाज में। फिल्म है पाप। संगीत निर्देशन अनु मलिक का है और गीतकार हैं अमजद इस्लाम अमजद।

कार्यक्रम में अगला गाना सुनिए, अग्नि साक्षी फिल्म से, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। संगीत नदीम श्रवण का है और गीतकार हैं समीर।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश श्रेया घोषाल की आवाज़ में। फिल्म है जिस्म, संगीत MM करीम का है और गीतकार हैं नीलेश मिश्रा।

फिल्म संगीत में अगला गाना सुनिए, कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म है इश्क, संगीत अनु मलिक का है और गीतकार हैं राहत इंदौरी।

फिल्म संगीत में अगला गाना सुनिए, शंघाई फिल्म से नंदिनी श्रीकर और अरिजीत सिंह की आवाज़ में। संगीत विशाल शेखर का है और गीतकार है कुमार।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुनिए भजन चंद्रकांत पाठक के स्वर में।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुन रहे थे भजन चंद्रकांत पाठक की आवाज़ में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा

0: महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बेरा से पश्चिमी यमुना शहर के

0: माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
1: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्या शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद से प्रोत्साहन दिया है, ट्रैकिंग से प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
4: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की में तेजी से आगे बढ़ेगी।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in

0: और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of northeast, sub-Himalayan West Bengal, Bihar.

0: Security. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of Northeast, Sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा दिफाई एजाजात की तकरीब में बहादुरी के एजाजात अता किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स के साथ 50 साल पुरानी शराकत दारी अब जिद्दत तराजी पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के जरिए मजीद मुस्तहकम होगी। वजीर आजम सेशल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। मरकजी काबीना ने मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की में तेजी लाने की खातिर सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF में 30,000 करोड़ रुपए की इजाफी सरमायाकारी की मंजूरी दी है। मगरबी बंगाल असेंबली ने समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए अवामी तहफ्फुज़ और समाज मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक बिल को मंजूरी दी है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल बिहार गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक और केरला में कहीं कहीं शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज शाम मुनाकिदा दिफाई एजाजात की तकरीब के दूसरे मरहले में दिफाई अफवाज और भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते के अहलकारों को बहादुरी एजाजात अता किए। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन वजीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा दीगर मरकजी वजरा और मुसलह अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सदर जमहूरिया ने इस तकरीब में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल्स 30 परम वशिष्ठ सेवा मेडल्स 12 उत्तम युद्ध सेवा मेडल्स और 56 अति वशिष्ठ सेवा मेडल्स अदा किए। अति वशिष्ठ सेवा मेडल पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाशने और वाइस एडमिरल आनंद वाई सार देसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल्स पाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। इसी तरह वाइस एडमिरल संजय वसायन लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को परम विशिष्ट सेवा मेडल अदा किए गए। उत्तम युद्ध सेवा मेडल पाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोबती शामिल हैं। ये एजाजात मस्कुरा अहलकारों को उनकी गैर मामूली और नुमाया खिदमात के एतराफ़ में दिए गए। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनका 3 रोजा सेशल्स का दौरा निहायत कामयाब रहा और इससे दोनों मुल्कों के रिश्तों में इजाफा होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 50 बरसों से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मुश्तरका तरक्की पर उस्तवार रहे हैं, जबकि आइंदा 50 साल जिद्दत पायदार तरक्की और इज्तिमाई खुशहाली से इबारत है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: अपने दौरे के आखिरी दिन जनाब मोदी ने विक्टोरिया के नवाशक्ति विनायागार मंदिर का दौरा किया और वहाँ पूजा की। वहाँ उन्होंने भारतीय बिरादरी के अरकान से भी मुलाकात की। वजीर आजम ने पीस पार्क में नस्ब महात्मा गांधी के मुजस्मे पर फूलों का नजराना भी पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने सेशल्स के 50वें योम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी हुकूमत और आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। सेशल्स की नेशनल असेंबली को खिताब करने वाले वो भारत के पहले वजीर आजम बन गए हैं। दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के माबैन UPI ज़राअत जहाज़रानी खलाई तआवुन मुलज़मान की हवालगी और लाइन ऑफ क्रेडिट समेत मुतअद्दिद शोबों में मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। न्यूज़ डेस्क से उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी

0: फंड NIIF में हुकूमत हिंद की मजमूई सरमायाकारी अब 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये इकदाम मुल्क में बुनियादी ढांचे और कौमी अहमियत के हामिल दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है। पिछले हफ्ते मरकजी काबीना ने मजकूरा फंड में 30,000 करोड़ रुपए की इजाफी सरमायाकारी की मंजूरी दी थी ताकि बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में सरमायाकारी में तेजी लाई जा सके और मुल्क में घरेलू और बैन अलाक़वामी इदारा जाती सरमायाकारों को रागिब किया जा सके। वजारत खजाना के मुताबिक ये इजाफी रकम सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF के बुनियादी ढांचे पर मरकूज दूसरे फंड के क्याम के लिए इस्तेमाल की जाएगी जो साबिका अहम फंड की जगह लेगा। सनअती पैदावार के इशारे IIP के मुताबिक मई 2026 के दौरान भारत की सनअती पैदावार में सालाना बुनियाद पर 5.1% का इजाफा हुआ। इससे कबल अप्रैल में सनअती पैदावार की शरह नमू 4.9% थी। मई के आदादोशुमार अप्रैल के आदादोशुमार के बाद जारी किए गए हैं जो कि नए बुनियादी साल 2022-23 के तहत 8.9 तश्कीलशुदा IIP सीरीज के पहले आदादोशुमार थे जिसमें जदीद तरीन मसनूआत की फहरिस्त वजन और मुख्तलिफ शोबों की ज्यादा जामे शमूलियत शामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली ने आज मगरबी बंगाल अवामी तहफ़ और समाजी मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक बिल 2026 और मगरबी बंगाल में अमन अमान कायम करने के से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दी। मजकूरा बिल की हिमायत में 176 वोट हासिल हुए जबकि मुखालफत में 41 वोट पड़े, वहीं 20 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस बिल के तहत ऐसे अफराद को जिनकी समाज मुखालिफ सरगर्मियों से आवाम की सलामती अमन अमान और नज्म व नस्क को खतरा लाहक हो सकता हो उन्हें एहतियाती तौर पर ज्यादा से ज्यादा 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है। हुकूमत के मुताबिक इस कानून का मकसद समाज दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों पर काबू पाना, उन्हें सख्त सजा देना और उनकी साजिशी मंसूबाबंदी को नाकाम बनाना है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा और राजस्थान की हुकूमत ने आज नई दिल्ली में जमुना आबी प्रोजेक्ट की तामीर और उस पर अमल दरामद के लिए एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए। इस मौके पर बात करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस मफाहमत नामे से हरियाणा और राजस्थान के लोगों को तकरीबन 3 दहाइयों से दरपेश पानी के मसले का हल हो गया है। उन्होंने कहा कि ये मुआहिदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उसूल मुजाकिरात के जरिए हल की एक बेहतरीन मिसाल है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस मुआहिदे के तहत अगले माह से अक्टूबर तक 3 जेर-ए-जमीन पाइपलाइंस के जरिए यमुना कनाल से राजस्थान को तकरीबन 580 मिलियन क्यूबिक पानी मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पाइपलाइन से दोनों रियासतों के आवाम को पीने का पानी मुहैया हो सकेगा। इस दौरान जल शक्ति के वजीर CR पाटिल ने कहा कि इस मुआहिदे के तहत मानसून के मौसम में राजस्थान के हिस्से का पानी हथनी कुंड बैराज से वेस्टर्न यमुना कनाल के निजाम के रास्ते बिछाई गई जेर जमीन पाइपलाइन के जरिए फराहम किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनी कुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा जिससे चूरू सीकर झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: दिल्ली काबीना ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल EV पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अगले महीने की पहली तारीख से शुरू होने वाले 4 साला मरहलेवार रोल आउट के लिए मुकर्रर कसीर जहती फ्रेमवर्क 31 मार्च 2030 तक कौमी दारुल हुकूमत को मुकम्मल तौर पर कार्बन के सिफर इखराज की तरफ मुंतकिल करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के बड़े मालियाती इखराजात का अहद करता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में स्ट्रेटेजिक तहकीक और तरक्याती प्रोजेक्टों की कारकर्दगी जवाबदेही और बरवक्त अमलावरी के लिए DRDO DFP 2026 को मालियाती इख्तियारात का एक वफ जारी किया। इस मौके पर जनाब सिंह ने कहा कि डीएफपी 2026 दिफाई अफवाज में तहकी

तहकीक और तरक्की के एक निज़ाम से निकलने वाले निज़ाम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी की तेज तर पैदावार और शमूलियत में सहूलत फराहम करेगा। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि हुकूमत ने बुनियादी, सानवी और तीसरे दर्जे की तिब्बी सहूलती मराकज में तौसी करके मुल्क के सेहत निज़ाम को नुमाया तौर पर मजबूत किया है। नई दिल्ली में सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी कौंसिल की 16वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि शहरियों और सेहत निज़ाम के दरमियान राबते के पहले मरकज के तौर पर मुल्क भर में 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कायम किए जा चुके हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल बर्तानिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद यूनान के एथेंस में एक आला सतही भारतीय कारोबारी वफ की क्यादत कर रहे हैं। जनाब गोयल ने आज यूनान के तरक्यात के वजीर टाकिस थियोडोरी काकोस से मुलाकात की। जनाब गोयल ने कहा कि उन्होंने वसी तर तजारत, सरमाकारी, सनती तावुन और लचकदार सप्लाई चेन्स के जरिए भारत यूनान इक्तिसादी शराकतदारी को मजबूत करने पर तबादले ख्याल किया। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर फौजी हमले को आर्जी तौर पर रोकने और आबनाए हुरमुस से तजारती बहरी जहाजों की आमदोरफ्त दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुजाकिरात का एक नया दौर कल कतर की राजधानी दोहा में होगा। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि ईरान ने मीटिंग की दरख्वास्त की थी और ये मीटिंग दोहा में होगी, ताहम उन्होंने मुजाकिरात के एजेंडे या दोनों ममालिक की नुमाइंदगी की सतह के बारे में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। ऑपरेशन एमिस्टेड के तहत जलजले के मुतासर वेनेजुएला में तैनात भारतीय फौज का फील्ड अस्पताल मुकम्मल तौर पर फाल हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम कर रहा है। वेनेजुएला में भारतीय सिफारतखाने ने कहा कि तजुर्बेकार डॉक्टरों पर मुश्तमिल भारतीय तिब्बी टीम ने कराकस में इंटरनेशनल ला रिंकोनाडा रेस्ट्रिक पर एक कैंप कायम किया है। उसने कहा कि मेडिकल कैंप अब मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है और खिदमात 24 घंटे खुली रहती हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने मुल्क के शिमाल मशरिकी इलाकों, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और माहे में कल शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अगले दो रोज के दौरान उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली टीमों में शामिल हो गई है। ताहम मर्दों की टीम को बराह रास्त क्वालिफाई करने के लिए रवा साल के अख्ताम तक ICC की मर्दों की T20 की रैंकिंग में एशिया की सबसे आला दर्जे की टीम बनना होगा। बैन अलावा क्रिकेट काउंसिल ने इस बात की तस्दीक की है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और जनूबी अफ्रीका ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों में खवातीन T20 मुकाबलों में अपनी जगह यकीनी बना ली है। US ओपन बैडमिंटन में भारतीय सरकर्दा खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में चीनी ताइपे के सूली यांग से हार गए और उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। इस हार में BWF के खिताब के लिए श्रीकांत के इंतजार को और बढ़ा दिया है, क्योंकि उन्होंने 2017 में BWF सुपर सीरीज के दौरान फ्रेंच ओपन में अपना आखिरी बैन अलावा खिताब जीता था। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा दिफाई एजाजात की तकरीब में बहादुरी के एजाजात अदा किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स के साथ 50 साल पुरानी शराकतदारी अब जिद्दत तराजी, पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के जरिए मजीद मुस्तहकम होगी। वजीर आजम सेशल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं।
मरकजी काबीना ने मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की में तेजी लाने की खातिर सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव होते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और नवाचार में छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 27 जून को विश्व एमएसएमई दिवस मनाया गया। भारत की अगर बात करें तो कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत एमएसएमई क्षेत्र है। एमएसएमई न केवल रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करते हैं, बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज जब हम भारत विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो उसके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की दिशा में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पब्लिक स्पीक में हमने यही विषय चुना है, लघु व्यवसायों का विकास और उद्यमियों के लिए अवसर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश। आपका स्वागत है डॉक्टर रजनीश कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 2331-0481 या 2371-7117, 2371-7106 या 2331-4444। याद रखें, इससे पहले 011 जो दिल्ली का कोड है वो लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और इसके अलावा आप जानते हैं ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पे भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। डॉक्टर रजनीश, भारत जैसे विशाल देश में हम देखते हैं कि शहरों की गलियों से लेकर गांवों तक बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्यम चल रहे हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में इनका कितना महत्व है और एमएसएमई क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है?
1: प्रियंका जी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो हैं, ये हमारी आर्थिकी में 31% से ऊपर योगदान रखते हैं
0: जी।
1: और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 35% से ऊपर इनका योगदान है। एक्सपोर्ट्स में 48% से ऊपर योगदान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का है। सबसे बड़ी बात जो एमएसएमई की है वो जैसा आपने बताया कि एग्रीकल्चर के बाद लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एमएसएमईज हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ एमएसएमईज के माध्यम से 38 करोड़ से ऊपर लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री में कि जो हमारे विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है उसमें एमएसएमई का एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ी भागीदारी है।
0: सही बात है, 38 करोड़ से जितने ज्यादा लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हों तो लाजमी है उस क्षेत्र पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार दे भी रही है। आगे चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं, धर्मवीर जी।
2: जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न क्या है?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ
0: जी।
2: तो एक्सपर्ट को नमस्कार। जैसे हमारे एक्सपर्ट भी जानते हैं कि गांधीनगर दिल्ली की सबसे एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है। यहाँ जो भी आपके लघु उद्योग और छोटे उद्योग सारे चलते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि यहाँ जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई 50-20 स्टाफ काम करता है, कहीं 30 करता है, कहीं 90 स्टाफ काम करता है। इन लोगों को जानकारी नहीं है इसका कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए।

0: जी
1: देखिए, एमएसएमई के अंदर हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंकों से सुगम और कम दर ब्याज के ऊपर ऋण प्राप्त करना। इनफैक्ट हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एलिजिबल हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट जो पहले इनको मिलता था, अब वो बढ़कर 36 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो पिछले 10 साल में 3 गुना से ऊपर की वृद्धि हम देखते हैं। जो एक्सेस टू क्रेडिट है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, वो प्रदान की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम जो हैं, वहाँ उद्यमियों को जब वो बैंक में अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं या उनको कोई अपने व्यवसाय विस्तार के लिए धनराशि चाहिए होती है, तो उस समय नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो कोलेटरल मांगते हैं
0: जी।
1: और कोलेटरल देना एक समस्या रहती है। तो मंत्रालय की तरफ से एक हमारी स्कीम चलती है जिसको हम CGTMSE बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इनको बिना कोलेटरल के ऋण देने की एक व्यवस्था इस योजना के माध्यम से की गई है। बेसिकली क्या होता है कि कोई बैंक अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन दे रहा है, तो उसका डिफॉल्ट रिस्क हम CGTMSE से कवर करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2000 से ये योजना चल रही है, 2000 से लेकर 2020 तक 20 सालों में 3,20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटीज हमने
0: दी है।
1: और 2023 में एडिशनल 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज हमें देनी थी, और 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज का जो टारगेट था, हमने 3.5 साल में ही 10,00,000 करोड़ के ऊपर क्रेडिट गारंटीज और दी हैं। तो हमारा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा पुश ये रहता है कि जितने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, उनको अपने व्यवसाय विस्तार के लिए आसानी से बैंकों से ऋण
0: उपलब्ध हो जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो अक्सर चिंता का सबब रहता है कि गिरवी रखना पड़ेगा कुछ, तो इस केस में जो आप योजना है जो CGTMSE, उसके लिए आपको कोई गिरवी नहीं रखना कुछ, आप निश्चिंत होकर बैंक के पास जा सकते हैं और अगर सही है सारा प्रोजेक्ट तो आपको उस पर लोन मिल सकता है।
1: इसमें दो बातें मैं और बताना चाहूंगा। पहले कोलेटरल फ्री लेंडिंग की जो RBI की लिमिट थी वो 10,00,000 रुपए थी, तो हमने RBI से मैटर टेकअप किया कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए, और इस वर्ष 1 अप्रैल से ये लिमिट दुगनी कर दी गई है। तो 20 लाख तक का लोन अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें वैसे भी कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। और क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटीज हम लोग देते हैं, इसमें 75% से लेकर 85% तक का गारंटी कवर रहता है। तो एक ये योजना है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि MSMEs अपने व्यवसाय विस्तार को आगे बढ़ावा दे रहे हैं।
0: जी, बूस्ट अप मिलता है उनको। हरियाणा से एक और श्रोता जुड़े हैं, राजेंद्र जी।
2: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी, नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में लघु उद्योग तो काफी है, लेकिन कैसे माल बेचने की उनको बड़ी समस्या है। देश में या राज्य में ऐसी कोई मार्केट हो जो अपना माल बेच सके और वो अपना हुनर दिखा सके। दूसरा, जो अभी बैंक लोन आता है तो उसकी बैंक गारंटी होती है तो वो आम आदमी की होती है, तो पता नहीं लगता अभी किस टाइम लोन आएगा, तो पता करने जाए तो ग्रांट कहते हैं खत्म हो चुकी है। तो ये लोगों में कैसे जानकारी फैले कि जो ग्रांट आए लोन का टाइम को तो पता लगे लोगों को। नमस्कार
0: जी।
1: तो आपने जो प्रश्न पूछा इसके दो भाग हैं। पहला, ये जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग में किस तरह से इनकी सहायता की जा सकती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इसके लिए हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑर्डर है, और ये हमारे एक्ट के तहत, MSME डेवलपमेंट एक्ट के तहत है, जिसके अंदर जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको 25% अपनी खरीद जो है वो मैंडेटरली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से करनी है। और दूसरी बात ये है कि जब कभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो 15% की प्राइस प्रेफरेंस भी उन्हें मिलती है।
0: अच्छा।
1: मतलब ये कि मान लीजिए अगर किसी ने टेंडर में जो लोएस्ट कोट किया है वो 100 रुपए है, और माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ने 115 तक का भी अगर कोट किया है, तो वो अगर हम उसे एक मौका देते हैं कि आप 100 रुपीज जो कि मिनिमम

0: प्राइस कोट आया है, अगर आप उसको मैच करते हैं तो 25% वो ऑर्डर आपको मिलेगा। तो एक ये हमारी प्राइस प्रेफरेंस है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। इसके अलावा हम एक हमारी योजना है PMS, जिसके अंदर हम हमारे जो व्यवसायी हैं उनको ट्रेड फेयर्स में और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने में हम मदद करते हैं, तो उस योजना का ये लाभ ले सकते हैं। जो बैंक की इन्होंने बात की कि बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ गारंटीज के बारे में पता
1: पता
0: नहीं
1: नहीं चल।
0: होता, तो ये एक्चुअली क्रेडिट गारंटी जो है इसके लिए आवेदन करने की माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को आवश्यकता नहीं है, ये क्रेडिट गारंटी हम बैंक को ही देते हैं। तो जब लोन इनको दिया जाता है तो उस समय बैंक जो है ये क्रेडिट गारंटी कवर हमारे CGTMSE से लेते हैं, और हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर और अधिक अवेयरनेस क्रिएट करने पे भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो हमारी MSME एसोसिएशंस हैं उसके माध्यम से इस बात का प्रसार कर रहे हैं कि आप जब लोन लेने बैंक में जाएं तो कृपया CGTMSE का जरूर हवाला दें,
1: जी
0: ताकि आपको कोलेटरल जो है वो ना देना पड़े और
1: आपको,
0: कोलेटरल फ्री लेंडिंग
1: जी
0: जो है
1: आपको,
0: आप उसकी सुविधा
1: जी
0: प्राप्त
1: हाँ,
0: कर
1: बिना
0: सकें।
1: गिरवी के ये ऋण प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो CGTMSE जो योजना का नाम है उसका जिक्र जरूर करें जब भी आप इस योजना का लाभ लेने जाते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं विपिन सागर जी। विपिन जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। जहाँ तक अभी हमने बात की कि मार्केटिंग की, तो जैसे एक जेम पोर्टल भी है, उसके थ्रू भी जो छोटे व्यवसायियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वो भी सरकार की ओर से तैयार की गई। क्योंकि ब्रांडिंग की जब बात करती है, जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं या अन्य हम जो कॉरपोरेट कंपनीज की बात करते हैं, तो वो पैसा खर्च करके अपने दम पर अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जो छोटे व्यवसाय हैं उनको कैसे पहचान मिले?
0: देखिए, जेम पोर्टल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है प्रोक्योरमेंट्स में। पहली बात तो ये, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट ये करते हैं इनको जेम से करना है, ये हमारे GFR के अंदर ये चीज़ निहित है। दूसरी बात ये कि जेम पे जो प्रोक्योरमेंट होता है, क्योंकि ये एक फेसलेस प्रोक्योरमेंट है, पोर्टल के ऊपर टेंडर फ्लोट होता है और उसके अंदर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई भी इसके अंदर बिड कर सकता है, तो एक बहुत ही पारदर्शी रूप में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो जेम का फायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें पिछले 5 साल में संख्या MSMEs की जो जेम पे प्रोक्योरमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, और इसके अंदर जो अमाउंट है प्रोक्योरमेंट का और जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को, उसके अंदर भी बहुत विस्तार हुआ है।
1: जी, हम चर्चा जारी रखते हैं। पहले अपने श्रोता को ले लेते हैं। शिमला से जुड़े हैं राकेश जी।
2: जी नमस्कार,
1: नमस्कार
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी
2: जी मेरा ये प्रश्न है कि हम बागवानी क्षेत्र के लिए जो है MSME के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो कितने परसेंट उसमें ब्याज हमें मिलता है बागवानी क्षेत्र के लिए?
1: जी
0: देखिए, जो एग्रीकल्चरल लोन्स हैं आप जानते हैं कि बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके वो खुद स्वयं निर्धारित करते हैं, RBI की गाइडलाइंस हैं, बैंक्स को ये इख्तियार है कि वो ये लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है वो बैंक इसको डिटरमिन करता है। पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं, और अगर आप हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होते हैं तो फिर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की के लाभ मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो ब्याज की दर है वो काफ़ी कम रहती है। ये एक्चुअल क्या एग्जैक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो तो डिपेंड करता है कि लोन अमाउंट आप कितना चाहते हैं, पर नॉर्मली 8 से लेकर 10% के बीच में अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप ये लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और कोटखाई क्योंकि सेब और बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध इलाका है, तो ये आप हमारे CGTMSE का कवर भी इसके अंदर ले सकते हैं, और सबसे पहले आपको अपने जो आप व्यवसाय कर रहे हैं अगर आप प्रोसेसिंग में हैं तो फिर आपको इसके हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होगा।
1: जी, मध्य प्रदेश से एक और श्रोता जुड़े हैं, छतरपुर से राशिद अहमद।

0: हाँ जी
1: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्कार।
1: हाँ, मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान
0: जी।
1: मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न है कि लघु उद्योग की परिभाषा क्या है, इन टर्म ऑफ लागत कितनी लागत होना चाहिए तब वो लघु उद्योग में आता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, तो उसकी सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और ये पूछना चाहता हूँ कि क्या नर्सरी प्लांट की कोई नर्सरी लगाई जाए या फूलों की खेती के लिए कोई प्लांट डाला जाए, तो उसके लिए हमको लोन वगैरह मिल सकता है क्या, प्लीज बता दीजिए। थैंक यू।
2: राशिद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम ये तीन श्रेणियाँ हैं एमएसएमई में, और इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा टर्नओवर पे। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस बेसिकली जिनकी 10 करोड़ तक की टर्नओवर है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं, जिनकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, और जिनकी 500 करोड़ तक की टर्नओवर है वो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी माइक्रो के लिए है, 25 करोड़ स्मॉल के लिए है और 125 करोड़ मीडियम के लिए है। मैं यहाँ पर अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि ये डेफिनेशन एमएसएमई की हमने पिछले साल रिवाइज की थी, और ये लिमिट्स हमने टर्नओवर की लिमिट को हमने दुगना किया है, और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इसको 2.5 गुना बढ़ाया गया। और इसका पर्पज़ ये है कि बहुत से हमारे एमएसएमई इस बात से चिंतित रहते थे कि अगर हम ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी या हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम एमएसएमई का स्टेटस खो देंगे और ये जो बेनिफिट एमएसएमई के मिलते हैं वो हम उनसे वंचित हो जाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए इस डेफिनेशन को हमने बढ़ाया है। और दूसरा सवाल जो आपने बैंक से के रिलेशन में कहा है, तो प्रोसेसिंग यूनिट का अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बैंक को संपर्क करें, आपको लोन मिलेगा।
0: जी, हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से विपिन जी।
3: जी नमस्ते मैम।
0: जी नमस्कार।
3: मैम, मेरा सवाल ये था कि जो लघु उद्योग है जिनमें पहले से मतलब डाउनफॉल चल रहा है, किसी भी प्रकार का लघु उद्योग हो सकता है, तो पहले से ही अगर उनका क्रेडिट सही नहीं है बैंक का, तो क्या ऐसे में फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है जो योजना आप बता रहे हैं, क्योंकि अगर पहले ही वो लोन को ले चुके हैं और सक्सेस नहीं हो पाए हैं, और क्या इसमें सभी प्रकार के लघु उद्योग ही शामिल होते हैं अगर कुछ छोड़ भी दिए गए हैं?
2: देखिए, आपने जो ये बात की कि लघु उद्योगों में या सूक्ष्म उद्योगों में डाउनफॉल है, तो इसमें मैं इस बात से थोड़ा मैं आपको अपना व्यू देना चाहूंगा, शायद जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं है।
0: शायद उन्होंने एक जनरल सवाल भी पूछा है, जैसे कोई उद्योग है अगर वो अच्छा नहीं चल रहा, क्रेडिट ले चुके हैं, नहीं चुका पाए होंगे, तो क्या उनको और दोबारा से फाइनेंस मिल सकता है इस तरह से?
2: जी, मैं इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से देना चाहूंगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अगर हम सिर्फ बात करें, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की, और मीडियम को भी अगर इसमें जोड़ लें, तो हमारा 2023 तक, 1 अप्रैल 2023 तक 1,65,00,000 एमएसएमई हमारे साथ पंजीकृत थे, और ऐसे बहुत से एमएसएमईज थे जो कि काम कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था का पार्ट थे, पर हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर नहीं थे, औपचारिक रूप से नहीं थे। तो एक ड्राइव हमने चलाई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ, आज ये संख्या 1,65,00,000 जो 2023 तक थी, 3 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर 1,65,00,000 से 8,70,00,000 हो गई है। तो बहुत बड़ा एक व्यापक विस्तार फॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में पिछले 3 सालों में हुआ है। दूसरी बात ये हम मानते हैं कि एमएसएमई जो है वो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस का पार्ट है, और काफी जो हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस है, अगर हम 31% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज थ्रू दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न उठाया कि अगर मान लीजिए किसी एंटरप्राइज में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और किसी कारण से वो अगर अपना लोन पे नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनको कोई आगे सुविधा प्राप्त होती है? तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई पेमेंट डिफॉल्ट है, वो पेमेंट डिफॉल्ट 30 दिन तक अगर आपने उस पेमेंट डिफॉल्ट को कवर नहीं किया है, तो आपका अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाता है, इमीडिएटली उसको एनपीए नहीं घोषित किया जाता। फिर अगर एसएमए जीरो स्टेज पे 30 दिन तक

0: नहीं हुआ, 60 दिन तक भी अगर आपने अपने अकाउंट को सेटल नहीं किया है तो वो SMA 1 स्टेज पे जाता है। 60 दिन में भी अगर नहीं हुआ, आपने 60 से 90 दिन तक उस अकाउंट को सेटल नहीं किया तो वो SMA 2 स्टेज पे जाता है। इसमें बैंक्स प्रयास करते हैं कि आपको सहायता प्रदान करके जो है उस वित्तीय संकट से में आपका मदद किया जाए। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन में कोई अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद ही वो NPA करार दिया
1: और
0: जाता है।
1: अगर कुछ थोड़ी सी उसमें इंस्टॉलमेंट में से कुछ अगर रकम चुका दे तो फिर भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है।
0: देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार में वी बिलीव इन प्रूडेंशियल फाइनेंशियल नॉर्म्स। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग जो है वो काफी मजबूत रही है, और उसका एक रीजन ये है कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बैंक्स के ऊपर है
1: जी
0: वो भी काफी सख्त है। तो इनफैक्ट बैंक्स को भी इंश्योर करना होता है कि उनके अकाउंट्स जो है वो क्लीन चले। तो ये 90 दिन का एक रिलीफ पीरियड है जिसके बीच में आप अपने अकाउंट्स को अगर मेंटेन कर पाते हैं तो उसमें आपको सहायता दी जाती
1: जी हरियाणा के करनाल से जुड़े हैं संजीव कुमार जी।
2: है। जी मैडम जी नमस्कार,
1: नमस्कार।
2: और जो एक्सपर्ट साहब हैं उनका भी नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे MSME होती है नहीं, और इनमें जो लोग काम करते हैं तो एक तो के ओवर टाइम काम ना करवाए, 8 घंटे से ज्यादा काम ना करवाए, इसके लिए क्या किया गया अभी तक? और मिनिमम वेजिस इनमें MSME में कितनी निर्धारित करी गई है जी? और वेलफेयर स्कीम के बारे में बताइए, किसके जो मजदूर काम करते हैं इनमें MSME, उनके और वेलफेयर स्कीम्स कैसे होती हैं?
0: देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ तक मिनिमम वेजेस का प्रश्न है तो मिनिमम वेजेस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करती हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स मिनिमम वेजेस को डिक्लेयर करती हैं वो उसमें एरियाज डिफाइंड रहते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, किस नेचर का वो काम है, स्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड वर्क है, तो उस हिसाब से मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं, और हर साल ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी
1: ये
0: होती
1: होते
0: हैं।
1: रहे।
0: तो किसी भी एंटरप्राइज में कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो आपके स्टेट में जो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर्ड है आपकी कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए, जिस श्रेणी में आपका स्किल लेवल आता है, तो उससे नीचे कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको उससे कम वेजेस नहीं दे सकता। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनको जिनके अनुपालना करती करनी होती है, और इसके अंदर ECIS का कवर जो है वो डिपेंडिंग की एक एंटरप्राइजेस एंटरप्राइज में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो उस हिसाब से वो सारे कवर्स जो हैं वो भी प्राप्त रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिमम वेज नोटिफाइड है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी वेज जो है वो मिनिमम वेज पे।
1: और उन्होंने ओवर टाइम का पूछा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है? कोई हेल्पलाइन नंबर है जहां?
0: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जो हर स्टेट के अंदर रहते हैं, वहां पर अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है या दिक्कत है तो आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कई बार हमने ये देखा, मंत्रालय के पास हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो विमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती हैं। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे रूप में आपसे साझा करना चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए कि बहुत कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती थी, और एक रिक्वेस्ट थी विमेन एसोसिएशंस की तरफ से हमारे पास कि नाइट शिफ्ट अलाउ की जाए। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप किया और उसके बाद काफी स्टेट्स ने अब नाइट शिफ्ट जो है उसको भी अलाउ किया है।
1: हाँ, अब एक और श्रोता लेते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी जी। जी
3: नमस्कार।
1: नमस्कार, सवाल पूछें।
3: जो लघु उद्योग ये बड़े धंधों के साथ अटैच होते थे पहले, अब निरंतर बड़े उद्योग धंधे जो है मरणासन्न हो चुके हैं। अब इसके लिए छोटे उद्योगों को क्या जो है सरकार का नजरिया?
0: जो आपने प्रश्न पूछा है मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो काफी संख्या इसकी बढ़ी है, 1 करोड़ 65 लाख से अब 8 करोड़ 70 लाख से ऊपर हुए हैं, और हमारे MSMEs जो हैं वो लार्जर कॉर्पोरेट्स का सप्लाई चेन का पार्ट है. हम ये मानते हैं कि जो सूक्ष्म उद्यम है वो आगे प्रोग्रेस करके लघु उद्योग या उद्यमी

0: बने और लघु जो है वो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस बने, और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रेजुएट करें फॉर द लार्ज एंटरप्राइज। तो ये एक कड़ी है, ये एक चेन है, और मंत्रालय की तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि एमएसएमईज की ग्रोथ और उनके विकास के लिए हमारी 18 से ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं।
1: जी
0: अभी जो हमने मेंशन किया, अभी सिर्फ क्रेडिट और मार्केटिंग की बात हुई है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर्स में हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, और इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। हमारा डिलेड पेमेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है, ट्रेड्स, जो कि आरबीआई रेगुलेटेड है। तो वो ट्रेड्स के अंदर भी पिछले 4 सालों में 40,000 करोड़ से बढ़कर 3 लाख करोड़ से ऊपर के बिल डिस्काउंटिंग जो है वो हुए हैं, जिससे लोगों को डिलेड पेमेंट के अंदर जो एक समस्या आ रही थी उसका समाधान अब हो रहा है।
1: जी
0: और इस तरह की बहुत सी हमारी योजनाएं हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय की जो वेबसाइट है या जो हमारा
1: जी
0: हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई चीज है जिसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं, तो 1800-1806-7-63 के ऊपर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और इसकी आपकी समस्या की जानकारी जो है उसमें हमारी कौन सी योजना आपके काम आ सकती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
1: दिल्ली से जुड़े हमारे साथ कोको मस्ताना जी। कोको जी,
2: हेलो।
1: जी हाँ, अपना सवाल
2: हाँ
1: पूछें।
2: हाँ नमस्ते मैडम।
1: जी
2: हेलो।
1: जी हम सुन पा रहे हैं, जल्दी से सवाल।
2: अच्छा, एक्चुअली हमारा ना बुटीक है
1: जी
2: सिलाई का, तो उसमें हमारे पास दो कारीगर है, क्या हमारे को उसमें लोन मिल सकता है? फ्लैट्स घर का है मकान।
0: बिल्कुल, आपको लोन मिल सकता है। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एक PMEGP हमारी, वैसे तो आपका एक एस्टेब्लिश्ड यूनिट है जो ऑलरेडी चल रहा है, अगर कोई साथी हमारे नया कोई यूनिट लगाना चाहते हैं और नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक हमारी स्कीम है,
1: जी
0: इसके अंदर हम कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं। तो इसमें आपको बैंकों के माध्यम से लोन मिल सकता है, आप इस योजना का लाभ जरूर लें।
1: हमारे पास व्हाट्सएप पे भी एक सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि एमएसएमई को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है क्या?
0: जी बिल्कुल, एमएसएमई को डेफिनेटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 48% कंट्रीब्यूशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की है, तो डेफिनेटली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारे एमएसएमईज को मिलता है। और इसके अंदर मंत्रालय की तरफ से हमारी चेष्टा ये रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर
1: जी
0: सकें, किस तरह से और बेटर एक्सपोर्ट्स हम कर पाए बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी। तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये दो एक पहलू हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं।
1: आपने उद्यम पोर्टल का जिक्र किया डॉक्टर रजनी, उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके क्या फायदे हैं? रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है?
0: देखिए, उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। जब आप उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो आप एमएसएमई में औपचारिक रूप से शामिल हो जाते हैं, आपको एक पहचान मिलती है, आपकी एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। मैंने जैसे बताया कि 20 से ऊपर योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इन योजनाओं का आप लाभ तभी ले पाते हैं अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020 में शुरू किया गया था। ये पोर्टल फुल्ली वॉलेंट्री है, ऑनलाइन है, और ये पोर्टल हमारा, इसमें हमारी एपीआई बैकिंग है, जिसके अंदर हम जीएसटी, इनकम टैक्स और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पोर्टल्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सरल है। इसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर, उसके बेसिस पे बेसिक जानकारी आप फिल करेंगे, बाकी डेटा हम ऑटो फेच करते हैं और उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आपकी यूनिट पे आएगा, वहां पर जाके पहले आपकी यूनिट को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद कोई आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अप्रूवल होगी। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर है, आप अपने आप जो है स्वतः ही इसके अंदर रजिस्टर हो सकते हैं।
1: जाते जाते बहुत जल्दी से विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना
0: जी
1: शुरू की गई थी, उससे क्या लाभ हुआ है जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि 30 लाख लोगों को 5 साल में हमें जोड़ना था। 2023 में ये योजना सितंबर में शुरू की थी, 2028 तक हमारे को 30 लाख लोगों को जोड़ना था। 2.5 साल में ही 30 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 30 लाख में से 24 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण

0: परीक्षण दे चुके हैं। 17 लाख लोगों को 15,000 रुपए का टूल किट प्राप्त हो चुका है। 6 लाख लोगों को 5,000 करोड़ से ऊपर के ऋण मिल चुके हैं। तो एक ब्रॉड मैंने आपको
1: जी
0: जानकारी
1: जी
0: दी।
1: तो बहुत बड़े स्तर पर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं एमएसएमई। डॉक्टर रजनीश, आप आए हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: नमस्कार। आकाश
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सोमवासरीय संगीत सभा। कार्यक्रम में आप सुनिए अनवर हुसैन का सारंगी वादन, राग जोग।

आप सुन रहे थे सोमवासरीय संगीत सभा। कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अनवर हुसैन का सारंगी वादन, राग जोग। इसी के साथ कार्यक्रम सोमवासरीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में कटी पतंग फिल्म के इस गीत को। संगीत आर डी बर्मन का है और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

फिल्म संगीत में अगला गाना सुनिए, गीता दत्त की आवाज में। फिल्म है साहेब बीवी और गुलाम। संगीत निर्देशन हेमंत कुमार का है और गीत के बोल शकील बदायूं ने लिखे हैं।

फिल्म संगीत में अगला गाना सुनिए, रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से, लता मंगेशकर और मुकेश और साथियों की आवाज़ में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीतकार हैं संतोष आनंद।

आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गाना सुनिए आशा भोसले दिलराज कौर और साथियों की आवाज़ में। फिल्म है सत्य पे सता। संगीत आर डी बर्मन का है और गीतकार हैं गुलशन बावरा।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में, फिल्म है बॉबी। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीतकार हैं विट्ठल भाई पटेल।

फिल्म संगीत में पेश है प्रेम रूप फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज़, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और संतोष आनंद के गीत।

0: यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

0: के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu conferred gallant